0: 21 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
1: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
0: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: प्राथमिक विद्यालयों का समरता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
1: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
0: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
1: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े, समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
0: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552। स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेटी के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपिओ जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।
2: भक्ति

0: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
1: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में 8 अरब 66 करोड़ डॉलर से घटकर वर्ष 2025-26 में 7 अरब 95 करोड़ डॉलर रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल है, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख व्यापार समूह मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के

0: सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
3: Given a choice, a judicial officer,
4: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
3: इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर मस्ट डील विद इट।
2: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने

0: समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिनभर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नवभारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की यह खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। UPI payments of up to 2,000 rupees to remain free of bank charges. World Circular Economy Forum 2026 to begin today at Gandhinagar in Gujarat. India and Canada begin next round of talks on proposed

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
7: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
8: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
9: क्या मेरी कसम
8: मिस कर दिया तो रीलोड।
10: चाय चाय चाय
11: बिंदास मॉर्निंग।
8: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

सुप्रभात, नमस्कारम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। श्रोताओं, आप सभी से सबसे पहले तो हम यही आज की सुबह निवेदन करेंगे कि अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि सुबह सुबह जब हम सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं तो यकीन मानिए पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा होता है और हमारे साथ अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं। हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और अभी वक्त हुआ है 8:22। आज दिन मंगलवार का है। आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल हो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं हूँ आपका दोस्त आनंद और अब आपके साथ रहूँगा इसी चैनल पर 10 बजे तक, जहाँ आपसे ढेर सारी बातचीत होंगी, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बातें होंगी, आपके काम से जुड़ी बातें होंगी और तमाम सारा गीत संगीत जो आपको देगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होती हैं श्रोताओं दिल से दिल तक। और दोस्तों, आज के सफर की शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा कि कहते हैं ना, जिंदगी जो होती है ना, वो हमें कभी भी कुछ भी सरप्राइज दे देती है जो हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं ना। तो लाइफ में हर चीज प्लानिंग के साथ हो, ये जरूरी नहीं है, कुछ चीजें बिना प्लानिंग के भी काम कर जाती हैं। हम जिंदगी में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, कल ये करेंगे, आज वो करेंगे, लेकिन कभी कभी उसके अपोजिट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, हर चीज को प्लानिंग के साथ नहीं करना चाहिए, कुछ चीजें ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए। जब उसके हाथ में होगा तो वो डेफिनेटली अच्छा करेगा। और कहते हैं ना, अगर आपके मन का हो तो बहुत अच्छा, और अगर आपके मन का ना हो तो समझ लीजिए ईश्वर के मन का होगा, और जब ईश्वर के मन का होता है तो वो तो ऑफकोर्स अच्छा ही होता है। श्रोताओं, दोस्तों, कहते हैं ना, जिंदगी भी कभी दही की तरह ही होती है। जिंदगी भी एग्जैक्टली बताएं कैसे, जब तक आप उसे अच्छे से मटते नहीं हैं तब तक ये पता नहीं चलता है कि उसमें मक्खन कितना है और छाछ कितना है। जिंदगी में जब हम जिंदगी को जब हम हमारी जिंदगी कभी कभी ऐसा होता है ना, मुश्किल ट्रैक पर आती, तो हम जब लाइफ में कभी फंस जाते हैं, बुरी सिचुएशन में आ जाते हैं, तो लोग जो है रिश्ते बदलने लगते हैं और तभी पता चल जाता है कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। वक्त जो है ना बहुत बलवान है और ये वक्त हमेशा हमें याद दिला देता है कि कौन हमारे लिए कितना अहम और कितना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ज़िंदगी है तो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, अप एंड डाउन होती रहेगी लाइफ, लेकिन बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जीवन है चलने का नाम। चलते रहो, शुभ हो शाम। बहुत ही खूबसूरत बात मैंने आपके साथ साझा कर दी। अब इसी से जुड़ा गीत जो आज की सुबह को और भी बेहतरीन बना देगा। आज की सुबह की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और बेहद ही अच्छे गाने के साथ, जो आपकी सुबह को और भी ताजगी से भर दे और भी पॉजिटिविटी दे आपको। महेंद्र कपूर की आवाज़ है, बहुत ही प्यारा गाना है, और साथ में इनके साथियों की आवाज़ों में खूबसूरत गीत आपके रेडियो सेट पे निकल गया है। एक बहुत ही प्यारा ट्रैक, जीवन चलने का नाम। चलते रहो, सुबह हो शाम, जिंदगी में चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रुकने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सही दिशा में प्रयास करेंगे और पूरी पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे तो यकीन मानिए आप जो भी पाना चाहते हैं वो ज़रूर आपको मिलेगा। चलिए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आरजे आनंद के साथ।

0: You're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

साथियों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो आनंद के साथ आपने ट्यून इन किया है आपका मॉर्निंग मैगजीन शो दिस इज बिंदास मॉर्निंग। अच्छे गानों का डोज आपको मिल रहा है बैक टू बैक। एक और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक किशोर कुमार की आवाज में आप इंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे मेरे यानी आनंद के साथ। लौट कर आएंगे तो आपके मैसेजेस की तरफ आगे बढ़ेंगे और कुछ बातें करेंगे आज के दिन के बारे में, विशेषकर आज के इतिहास के पन्नों के बारे में। तो आप ऐसे ही आनंद के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग।

जी बहुत खूबसूरत गाना भी आपने एंजॉय किया। और देखिए मौसम तो है ही मस्ताना, और मौसम कितनी तेजी से करवट बदल लेता है पता ही नहीं चलता है। श्रोताओं आप आनंद के साथ सुन रहे हैं आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपने ट्यून इन किया है बिंदास मॉर्निंग। सुबह सुबह एक काम करते हैं, आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि सुबह सुबह सबसे पहले हमें उठकर कौन सा ऐसा काम है जो ज़रूर करना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ सके, एक पॉजिटिविटी हमारी हेल्थ पर पॉजिटिविटी का असर पड़े, हम खुद भी बहुत पॉजिटिव फील करें। अपने स्वास्थ्य को लेकर हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो सुबह सुबह हमें ज़रूर करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए सुबह के समय में जब हम उठते हैं, अपने दिन की शुरुआत प्रतिदिन जब हम करते हैं तो किस तरीके से अपने दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए, कुछ मैं भी आपको मदद करूंगा, कुछ आप भी अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में लोग हमें सुनते हैं, आप लोग अपनी सुबह के दिन की शुरुआत, अपनी दिनचर्या की शुरुआत कैसे करते हैं, आप जरूर अपने प्यारे प्यारे संदेश हम तक साझा कर सकते हैं आज की सुबह 9837896896 के माध्यम से 9837896896 के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आप अपनी दिनचर्या की शुरुआत कैसे करते हैं। आप योग करके करते हैं या फिर आप और एक्सरसाइज के साथ करते हैं, ग्रीन टी के साथ करते हैं या सादे पानी के साथ करते हैं, या फिर या आप सच में चाय लवर हैं, अपने दिन की शुरुआत चाय से करते हैं, आप जैसे भी करते हैं वो आप मुझ तक ज़रूर पहुंचाइए। और बाकी और लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और सुबह सुबह उनका जो मन है वो और प्रसन्न हो जाए। मैं अच्छी चीज़ करता हूँ आपके लिए, अच्छा म्यूज़िक प्ले करता हूँ ताकि आपकी सुबह और बेहतर से बेहतरीन हो सके, हर दिन की मॉर्निंग आपकी सुपर डुपर लाउड हो सके। एक और बेहतरीन ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकल गया है, अलका याग्निक उदित नारायण जी की बेहतरीन आवाजों का कॉम्बिनेशन, बहुत ही बेहतरीन नगमा आपके रेडियो सेट पे आ रहा है, आप वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय करिएगा। आज मंगलवार की सुबह है, आप जुड़े हुए हैं आरजे आनंद के साथ अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन पर। श्रोताओं घड़ी वक्त बता रही है 8:41 हुए हैं और चलिए बात करते हैं आज के मौसम के बारे में, आज का मौसम क्या कहता है, आज का वेदर कैसा रहने वाला है। एक बारी मौसम की ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचा देता हूं फटाफट से। कल दोपहर को जो झमाझम बारिश हुई है ना, मतलब मानना पड़ेगा एकदम से मौसम में परिवर्तन हो गया था थोड़ी देर के लिए। तो फिलहाल आज का करंट टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और आगे चल के मतलब ये बढ़ सकता है और ये 32 डिग्री तक पहुँचने की संभावना है। और अगर बात करें घटित की यानी कि लोएस्ट टेम्परेचर की बात करूँ तो 25 डिग्री तक भी आ सकता है। हवाएँ 2 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी और एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, ह्यूमिडिटी 87% है, तो मतलब आपको गर्मी लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, लेकिन आपको पानी पीते रहना है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। और आज हम आपसे यही पूछ रहे हैं आज की सुबह कि आप अपने दिन

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद

0: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

From the movie अंदाज गाना है अलका याग्निक जी की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया अलका मैम ने, और अलका मैम के सारे गाने बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आप मतलब इनके जितने भी गाने सुनोगे आपको आनंद आ जाएगा इनके नगमे सुन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8:53 का समय हो रहा है, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे आनंद के साथ। ये है आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग। श्रोताओं वक्त हो गया है 8:53 और आज की सुबह मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप अपने दिनचर्या की शुरुआत कैसे करते हैं। आज हम आपसे जान रहे हैं आप सुबह उठते ही सबसे पहले कौन सा काम करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, आप क्या चीज़ें जो सवेरे सवेरे उठ के करना पसंद करते हैं, और अपने दिनचर्या की शुरुआत एक आम इंसान को कैसे करनी चाहिए। आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे आज की सुबह, ताकि और लोगों की मॉर्निंग भी थोड़ी सी हेल्दी और फिट एंड फाइन वाली हो। सुबह सुबह ताज़ा तरीन बातें होनी तो बनती आज की सुबह, स्पेशली आपकी हेल्थ से जुड़ी बातें अगर हो जाएं तो और भी ज्यादा आनंद आ जाएगा। तो बस स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि देखिए अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ जीवन में अच्छा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इतिहास के पन्नों की बारे में। आज की तारीख क्यों इतनी महत्वपूर्ण है इतिहास के पन्नों के लिए, क्या कुछ खास रहा है आज इतिहास के पन्नों में, मैं आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात आपको बताते चलें आज के दिन के बारे में। देखिए हर दिन अपने आप में बहुत खास होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और हर दिन का इतिहास कुछ ना कुछ हमें सिखा करके जाता है। वैसे ही आज के दिन का इतिहास से जो हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, और उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपनी हिस्सा बनाए हुए है, अपनी जगह आज भी बनाए हुए है, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं चलिए आपको बताता हूं। आज ही का वो दिन था 15 सितंबर 1959 में जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत श्रोताओं आज ही के दिन हुई थी, 15 सितंबर 1959 को हुई थी। और आपको भी पता है दूरदर्शन से आपकी मेरी हम सभी की कितनी सारी मेमोरी जुड़ी हुई है, एंड बहुत सारी चीजें हैं जब अगर हम DD1 की बात करें तो बहुत कुछ है जो हमें याद दिलाता है। और दर्शकों जो दर्शक हैं देखने वाले DD1 के, वो आज भी बहुत प्यार करते हैं DD1 को। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने रामायण महाभारत और न जाने कितने सारे TV सीरियल्स देख देख के हम बड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूँ शक्तिमान, रामायण, महाभारत, सबका एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता था और देखने के लिए बड़े एक्साइटेड हो जाते थे सारे लोग। और मैंने तो बहुत कलर TV तो खैर बाद में ही आया है, और जो ब्लैक एंड व्हाइट TV था उस पर जो दूरदर्शन के प्रोग्राम थे स्टार्टिंग में सिर्फ 2 घंटे के लिए ही दिखाए जाते थे अगर आपको याद हो तो।

तो साथियों, आज का दिन बहुत खास है इतिहास के पन्नों में। आज के दिन दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में हुई थी। श्रोताओं, आपको बताते चलें, एंड ये तारीख अपने आप में बहुत ही अहम रोल रखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है श्रोताओं। और आपको बताते चलें, 1965 में से नियमित रूप से रोज़ाना प्रसारित किया जाने लगा था, जिसमें 5 मिनट के समाचार बुलेटिन भी शामिल थे। एंड मतलब अलग ही जोश था टेलीविज़न पर, जब हम ये ब्लैक एंड वाइट जमाने में जब दूरदर्शन पे हम कोई भी चीज़ देखते थे तो उसका मज़ा ही कुछ

0: चलिए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और अब आपका कौन सा फेवरेट था सीरियल या आपने क्या दूरदर्शन पे देखा था जो आपको आज भी याद है? एक तो चित्रहार, रंगोली, बहुत बड़ी सारी चीज़ें आती थी, आपको दूरदर्शन पे क्या अच्छा लगता था आप अपनी यादें हमारे साथ साझा कर सकते हैं 9837896896 पर व्हाट्सएप करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप दूरदर्शन लवर हैं, आपने देखा है दूरदर्शन, तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं अपनी मेमोरी हमारे साथ। आपका कौन सा फेवरेट सीरियल या आपकी क्या चीज़ आपकी पसंद की थी जो आप दूरदर्शन पे बहुत देखते थे, जरूर अपने साझा करिएगा विचार। बाकी आगे बढ़ते हैं, और क्या खास है आज 15 सितंबर को इतिहास के पन्नों में? दोस्तों आपको बताते चलें, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जो आज के इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा स्पेशल और थोड़ा सा अलग बना देती हैं। हाँ जी, आपको बता दें सन 1916 में प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार जो है लड़ाई टैंक का इस्तेमाल किया गया है। श्रोताओं, सिम्स की में जो है वो लड़ाई टैंक का इस्तेमाल हुआ था। और आज ही के दिन एक और खास चीज़ हुई थी श्रोताओं, आपको बता दें स्वतंत्र भारत का पहला ध्वजपोत INS दिल्ली, बम्बई और अब बम्बई के बंदरगाह पर पहुंचा था श्रोताओं आज ही के दिन। और आपको एक और चीज़ बताते चलें, हरी भरी और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध ग्रीन पीस की स्थापना हुई थी 1971 में आज ही के दिन श्रोताओं। और सिडनी में आज ही के दिन 27वें ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ था सन 2000 में आज ही के दिन। और अगर बात करें आज के दिन जन्मे कुछ खास लोगों की जिनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है श्रोताओं, तो सबसे पहले आज ही के दिन एक नाम आता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जो प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे। 1927 में इनका जन्म हुआ था। और वहीं बात करें सन 1905 में जन्मे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, जो भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे श्रोताओं, आज ही के दिन इनका भी जन्म हुआ था। इसके अलावा लंस नायक करम सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित भूतपूर्व भारतीय सैनिक थे सन 1915 आज के दिन, इनका भी जन्म हुआ था श्रोताओं। और जोशना जी का भी जन्म हुआ, जो भारत की महिला जो है खिलाड़ी है आज के दिन, इनका 1986 में जन्म हुआ था आज के दिन। और श्रोताओं ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने आज के दिन जन्म लेकर इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम दर्ज करा लिया, कुछ ऐसा किया इतिहास के पन्नों पर उनका नाम अमर हो गया। आप भी उठाइए अपने कर्मों की किताब और कुछ बेहतर से बेहतरीन लिख डालिए श्रोताओं, आज ही का वो दिन है जब आपको कुछ बड़ा करना है। हर दिन का इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो बस हमें सीखना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। चलिए श्रोताओं आपको वक्त बताते चलें, 8:49 यानी कि एक मिनट बचा है 9 बजने में, और अगले घंटे में हम प्रवेश करेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ ट्यून इन रहिए, कुछ अगर कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9837896896 के माध्यम से।
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
6: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
7: कहा मेरी कसम?
6: मिस कर दिया तो रीलोड।
8: चाय चाय चाय।
9: बिंदास मॉर्निंग।
6: बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
10: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
11: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
10: मॉर्निंग। स्किन एलर्जी, मस से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

वेलकम बैक है जी, इट्स ब्यूटीफुल डे, वेरी गुड मॉर्निंग। आज ट्यूजडे की सुबह है, जय श्री राम। 9:02 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। वेलकम बैक है वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। 15 सितंबर की सुबह हो गई है, आप बहुत सारे संदेश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरूर आपके मैसेजेस को शामिल करूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। हमारे पास सबसे पहले संदेश पहुंचा है लोकेश जी का। इन्होंने लिखा है, आनंद जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत बढ़िया हूं। ये लिखते हैं, आनंद जी मैं अपने दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी से करता हूं, और बाकी सभी श्रोताओं को भी यही कहना चाहता हूं कि आप अपने दिन की शुरुआत चाय से नहीं बल्कि पानी से कीजिए। जब आप सुबह सुबह गुनगुना पानी पीकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप यकीन मानिए आपका जो शरीर है वो पूरी तरीके से सही और साफ रहता है, और आपकी बॉडी भी सही रहती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पेट से जुड़ी होती है, तो अगर हमारा पेट सही होगा, साफ होगा, फ्रेश होगा, तो हमें कोई बीमारी भी नहीं छू पाएगी और हम पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल लोकेश जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। हमारे पास एक जनाब का मैसेज आया है, इनका नाम आसिफ है। इन्होंने मुझे मैसेज किया है, ये हरथला से लिखते हैं, आनंद जी सुप्रभात, आपके कार्यक्रम में जुड़कर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं तो अपने दिन की शुरुआत हमेशा गुनगुने पानी से करता हूं, और उसके बाद एक्सरसाइज भी मैं ज़रूर करता हूं, क्योंकि एक्सरसाइज हम सभी को करनी चाहिए, और अपने दिनचर्या की शुरुआत हमें हमेशा हल्की फुल्की एक्सरसाइज से ही करनी चाहिए। बहुत बढ़िया आसिफ भाई। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है। गुड मॉर्निंग श्रुति, ये मुझे पहुंचाती है मानसरोवर कॉलोनी से मैसेज। ये लिखती हैं, आनंद जी मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन के साथ करें। मेडिटेट जब आप सुबह सुबह करते हैं तो यकीन मानिए आपके पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, और आप काम करने में और ज़्यादा अच्छे से अपने 100% एफर्ट्स दे पाते हो। एग्जैक्टली आई एग्री विद यू श्रुति जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हम सुबह सुबह हल्का सा योग व्यायाम या कोई भी एक एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम मेडिटेट ही करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक मैसेज हमारे पास पहुंचा है, यहाँ पर शिखा का, ये लिखती है मुझे, हाय आनंद जी सुप्रभात, व्हाट्सएप ब्रो, आई एम वेरी गुड शिखा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, मुझे अच्छा लगा सुबह सुबह आप लोग हमारे साथ इतने प्यारे प्यारे संदेश साझा कर रहे हैं। शिखा मुझे लगती है, सॉरी आनंद, आई एम अ टी लवर, मेरी दिन की शुरुआत ही चाय से होती है, लेकिन मैं ब्लैक टी लेती हूँ जो हेल्थ के लिए भी अच्छी है और हमारे शरीर के लिए भी। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आज हम बात कर रहे हैं, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, अपने दिनचर्या की शुरुआत कैसे करते हैं, कौन सी चीज़ें जो सुबह सुबह आप करके अपने दिन को और भी खूबसूरत बनाते हैं, आप ज़रूर साझा करें। आप कैसे अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं ये आप मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप करके 9837896896 पे अपने संदेश पहुंचा सकते हैं। फिलहाल आने वाला एक बढ़िया गाना मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, अरिजीत सिंह की आवाज़, मेरी प्यारी बिंदु का ट्रैक, मेरी प्यारी बिंदु से निकल गया है। आयुष्मान खुराना क्या परफॉर्मेंस देते हैं, कल तो उनका बर्थडे भी था, बिलीटेड हैप्पी बर्थडे आयुष्मान भाई, बड़ा टैलेंटेड इंसान है यार, और रेडियो से कैसे इंडस्ट्री में पहुंच गए, सोचो यार क्या करियर स्टैब्लिश किया है इन्होंने, क्या करियर बनाया है। मतलब वही है ना कि जब आप मेहनत करते हो सही डायरेक्शन में तो आपको सफलता मिल ही जाती है। फिलहाल चलिए इसी गाने के साथ करेंगे इस घंटे की एक स्टार्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कुछ कहना चाहते हैं तो इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप पहुंचा सकते हैं, और जरूर बताइए आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस, गुड मॉर्निंग।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: यू आर लिसनिंग टू द बिगेस्ट हिट्स, द बिगेस्ट हिट्स नॉन स्टॉप।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: श्रोताओं, वेलकम बैक है। ढेर सारे संदेश आपके हमारे पास पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत संदेशों के लिए। वंस अगेन वेलकम बैक। 9:15 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में और आज दिन मंगलवार का है। आनंद के साथ आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद। आप जहां भी जा रहे हैं, विश यू ऑल द वे बेस्ट। आई एम श्योर बहुत सारे लोग निकल रहे होंगे अपने मॉर्निंग शिफ्ट पर और बहुत सारे लोग गणपति बप्पा के दर्शन करके आ रहे होंगे। हाँ जी, आए भी क्यों ना, गणपति का जो अभी उत्सव चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है, ये सभी गणेश चतुर्थी शुभारंभ हो चुका है गणपति बप्पा का। कल से उनका जो फेस्टिवल है इसकी शुरुआत हो गई है। तो आप सभी को वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज सेकेंड डे है, दूसरा दिन है गणपति बप्पा का और बहुत सारे लोग मोदक बनाने में बिजी हैं, कुछ लोग मोदक का भोग लगाने में बिजी हैं। और कल मैंने देखा गुरट्टी के पास एक बहुत ही अच्छी शोभा यात्रा हुई, जिसको लेकर पारस अग्रवाल जी ने भी कल हमारे साथ बातें साझा करी थी। और बहुत ही धूमधाम के साथ जो है गली गली में गणपति का उत्सव सेलिब्रेट हो रहा है मुरादाबाद में, और बड़ी खूबसूरती के साथ मुरादाबाद के लोग जो है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मतलब हर जगह पर आपको मूर्ति देखने को मिलेगी। आप मानता मंदिर में जाओ, वहाँ पे आपको गणेश मूर्ति की स्थापना हुई है, बड़ी सुंदर तरीके से वहाँ भी जो है स्थापना की गई है। इसके अलावा और भी अलग अलग जगहों पर आप 84 घंटे मंदिर की तरफ चले जाओ, आप जहाँ देखोगे वहाँ पर गणपति बप्पा आपको मिलने वाले हैं। और गणेश भगवान का जो ये उत्सव है, अब सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं, अब पूरे देश विदेश का पर्व हो गया है। हर जगह पर धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको इसी बात से एक और बात बताते चलूं फटाफट से, आप यकीन नहीं करोगे, 21,000 पानी पूरी से बनाए गए हैं 13 फिट के गणपति पप्पा। ये कहाँ बनाए गए हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और ये एक्चुअली पुणे में जो है एक FC रोड है, जहाँ पर 21,000 पानी पूरी से 13 फिट ऊँचे गणपति पप्पा को जो है विराजमान किया गया है। और ये 2 महीने की मेहनत थी, मतलब 2 महीने से लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। और एक अनोखी मूर्ति, और जिसकी सुरक्षा और देखभाल के लिए 24 घंटे कारीगर जो है तैनात किए गए। और आपको बता दें, इन 21,000 पानी पूरियों को जो है विसर्जित करने की बजाय बताया जा रहा है कि उनमें ऑर्गेनिक कुछ फर्टिलाइजर से उन्हें तैयार किया गया है, एंड उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल और चीज़ें की जाएंगी। और ये जो एक मूर्ति बनाई गई है, बहुत ही स्पेशल प्रतिमा जो है स्थापित की गई है पानी पूरी की। जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था कि हम जितना हो सकता है ना इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो मतलब 21,000 पानी पूरी से 13 फिट की गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करना, ये अपने आप में एक बहुत ही अलग चीज़ है। और जब मैं इस पर स्टडी कर रहा था, मैं इसको रिसर्च कर रहा था, तो मैंने मूर्ति जाके चेक आउट करी, तो मैं भी मतलब हैरान रह गया। मैं कि यार सच में क्या कमाल की चीज़ बनाई गई है, बहुत ही बेहतरीन। और मतलब हर साल कुछ ना कुछ नया और यूनिक जानने को मिलता है, और सब पप्पा की कृपा है। भाई, अगर आपके घर पे भी गणेश उत्सव की तैयारियां चल रही हैं, आपने भी पप्पा को बिठा के रखा है, तो मेरी तरफ से आप सभी को वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी। और अभी फिलहाल थोड़ी देर में आप सुनेंगे एक बेहतरीन गाना। गणेश चतुर्थी की बात हुई है तो
4: सुनो, गणपति बप्पा मोरया परेशान करे मुझे छोरिया,
3: क्या बात है, जुड़वा टू का गाना।
4: सुनो गणपति बप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरिया।
3: नहीं नहीं नहीं, मेरे को कोई परेशान नहीं कर रहा, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, आई एम वेरी ओके यार, थैंक यू सो मच। अभी लौट कर आता हूँ तो आपको बताता हूँ UPI से जुड़ी एक खास बात और मुरादाबाद शहर से जुड़ी भी कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है मुझे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। सो आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए, आनंद के साथ कुछ कहना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, आज के दिन शुरुआत हुई थी दूरदर्शन की 1959 में, भारतीय आज के दिन भारत की राष्ट्रीय प्रसारण दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। श्रोताओं, आप दूरदर्शन पे क्या देखते थे जो आपका बड़ा फेवरेट है, जिसे आज आप मेरे साथ साझा करना चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके। एंड इसके अलावा मैंने आपसे पूछा है आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, अपने दिनचर्या की शुरुआत कैसे करते हैं, किस चीज के साथ करते हैं, पानी के साथ, चाय के साथ, कॉफी के साथ, रेडियो के साथ, कौन सी चीज है जो आपके दिन की शुरुआत को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाती है, एक्सरसाइज के साथ, योगा के साथ, मेडिटेशन के साथ, जो भी आप करते हैं व्हाटएवर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ मुरादाबाद की मॉर्निंग कैसे होती है, गुड मॉर्निंग बताओ मुझे फटाफट से, हो सकता है आपका कोई सजेशन, आपको कोई आइडिया किसी और की मॉर्निंग को बेस्ट बनाने में हेल्प कर दे, है ना। तो आ जाओ मेरे साथ छोपे फटाफट व्हाट्सएप करो। आने वाला गाना मीका सिंह की आवाज में ब्लॉकबस्टर ट्रैक, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। ये ट्यूसडे मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग।

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

भाई मैं कहना चाह रहा हूँ, आप आरजे आनंद को सुन रहे हैं, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। और अगर आप कहीं ट्रैफिक में हैं, कहीं जाम में हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं मिस्ड करके फटाफट 9837896896। आप दिल्ली रोड है, कार्ट रोड है, स्टेशन रोड है, आप कहीं पर भी आप मुझे फटाफट मैसेज करके बताओ यार कहीं ट्रैफिक तो नहीं है ना, अगर है तो प्लीज बताओ, हो सकता है किसी और की हेल्प हो जाए, तो फटाफट इमीडिएटली व्हाट्सएप कर दो, एक फोटो खींच के मुझे मैसेज करो यार।

0: What a song. अजब गजब लव से गाना एंजॉय करें आप मीगा सिंह की आवाज. Boom boom boom boom, boom boom boom, everybody sing along. सच में यार बहुत अच्छा गाना था और मेरे को बड़ा मजा आया ऐसे गाने सुन के ना. सच में एनर्जी का बूस्टर अंदर से आ जाता है. मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, एक तो इतने फैबुलस म्यूजिक, इतना फैबुलस सॉन्ग यार. एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे मैसेज किए हैं यार. आप लोगों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. थैंक यू सो मच. देखो अमित वर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं आनंद भाई वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो. गुड मॉर्निंग अमित जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ यार. थैंक यू सो मच, आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है यार. आगे बढ़ते हैं. अमित जी मुझे लिखते हैं, आनंद भाई दूरदर्शन का जो टाइम था ना वो अपने आप में बड़ा लाजवाब और बेमिसाल टाइम था. उसकी वैल्यू 80 और 90s के लोगों ही जानते हैं. एग्जैक्टली आई एग्री विद यू. एंड साथ में लिखते हैं चंद्रकांता, शक्तिमान, अलिफ लैला एंड साथ में चित्रहार, कुछ ऐसे शानदार प्रोग्राम हुआ करते थे जो मतलब हमारी मॉर्निंग से लेकर शाम तक बहुत ही बिंदास बना देते थे. आई एग्री यार, मेरे को शक्तिमान भी बहुत पसंद था यार. I don't know कब आया लेकिन मैंने बहुत देखा है. अच्छा आगे बढ़ते हैं. और मैं रंगोली वगैरह भी देखता था पहले, मुझे याद है. अच्छा एक टाइम तो रामायण देखने का इतना क्रेज था ना दूरदर्शन पे, मतलब सारे लोग मतलब एक पड़ोसी के घर में जाके बैठते थे. पहले तो बैटरी से टीवी चलता था. आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं उस चीज़ के बारे में. दो चुटकियाँ होती थी बैटरी में लगाया और टेलीविजन चलता था, मतलब ब्लैक एंड वाइट टीवी. हम लोग तो ऐसे कॉन्ट्री करके बैटरी लेकर आते थे क्योंकि उसमें एक मूवी भी आती थी ना, हर संडे एक फिल्म आती थी तो उसे देखने के लिए यू नो हम लोग फिर बैटरी ला के बड़े जुगाड़ छुगाड़ करके हम लोग टेलीविजन देखते थे. बड़ा मजा आता था यार. पहले की बात ही अलग थी. आई डोंट नो आज की जिंदगी क्या एंजॉय कर रही है, बट यार हमने अपने टाइम में बहुत एंजॉय किया. बट इसका ये मतलब नहीं बहुत पुराना लड़का हूँ यार. बट हाँ कि जो चीज़ मेरे सामने हुई है वो चीज़ मेरे को पता है. एंड आई फील कि यार वाओ क्या क्या टाइम था. यू नो मैंने वो टाइम देखा है एंड आई फील कि यार सच्ची में मजा तो उसी टाइम पे था यार बॉस. 9:30 हो गए, आनंद के साथ हैं आप. और आज मैंने आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं. मेरे साथ जुड़ चुकी हैं अफरोज फातिमा, लिखती हैं गुड मॉर्निंग सर आप कैसे हो. और अफरोज फातिमा लिखती हैं सर आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है. और ये लिखती हैं सुबह सुबह मैं तो उठकर पहले काम करती हूँ, उसके बाद खाली पेट पानी पीती हूँ एंड उसके बाद फिर चाय पीती हूँ और माई फेवरेट. ऑल राइट, क्या बात है, थैंक यू फातिमा, बहुत अच्छी दिन की शुरुआत करती हूँ. लेकिन पानी के साथ एकदम चाय मत पी लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. थोड़ा सा ब्रेक देखिए, चाय लेना. आगे बढ़ते हैं, लोकल न्यूज चलती है क्या आरजे भाई. ऑफ कोर्स यार मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे. एंड थैंक यू सो मच. और आपके फरमाइश प्रोग्राम कब देखिए, फरमाइश प्रोग्राम हमारा 3 से 5 होता है. दिस इज लाइव फोन इन प्रोग्राम. सो 3 से 5 आप डेफिनेटली सुन सकते हैं कॉल करके, अपनी पसंद का कोई भी गाना आप अपनी रिक्वेस्ट पूरी करा सकते हैं. 3 से 5 मंडे टू सैटरडे आपके लिए आता है. आगे बढ़ते हैं. जय श्री राम, गुड मॉर्निंग दुर्गेश जी आप मेरे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच. विकी सागर लिखते हैं रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग, आपका दोस्त विकी भाई आपके साथ जुड़ गया है. कैसे हालचाल है आनंद जी, सारी बढ़िया चल रही चीजें. एब्सोल्युटली भाई, बस आप लोगों का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं तो सब एवरीथिंग इज ओके. कुछ और आप लोगों ने हेल्थ से रिलेटेड मैसेजेस किए हैं वो मैं डेफिनेटली शामिल करूंगा. बस एक छोटा सा ब्रेक लेके आता हूं.
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
0: हाँ जी, तो एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे. बाकी आप लोग भी अपने संदेश हम तक पहुँचा सकते हैं 9837896896 पर.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहाँ हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहाँ बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम, स्पा एंड मच मोर.
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081.
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग.
0: एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, आप बिंदास मॉर्निंग सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. और अभी मेरे पास यहाँ पर शगुन का मैसेज पहुंचा है, ये लिखती है हाय आनंद, मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है. थैंक यू सो मच, आपका रेडियो इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पर हर तरह की बातें आप लोग करते हैं, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो या फिर अपने लोकल कम्युनिटी की बात हो, आप हर एक बात को बहुत अच्छे से जो है शामिल करते हो अपने प्रोग्राम में. बहुत अच्छा लगता है, तरह तरह की चीज़ें आपके प्रोग्राम से जानने को मिलती है. ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच, कितनी तारीफ करोगे भाई. पूजा जी मेरे साथ जुड़ी हैं लाइन पर रामलीला ग्राउंड से, लिखती हैं मैं तो अपने दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी से करती हूँ आनंद जी, उसके थोड़ी देर के बाद पूजा करती हूँ, फ्रेश होती हूँ आराम से, उसके बाद चाय पीती हूँ और फिर आपका रेडियो सुनती हूँ. क्या बात है यार, अमन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं रामगंगा बिहार से। लिखते हैं आनंद जी, मेरे दिन की शुरुआत तो ब्लैक कॉफी से होती है। ब्लैक कॉफी पीते ही लगता है कि अब दिन जो है आज मैं पक्का जीत लूंगा पूरा। क्या बात है यार, यही जोश और अपने अंदर जो एक जज्बा है वो डेफिनेटली रखना चाहिए। मेरे पास एक मैसेज पहुंचा है नेहा जी का सिविल लाइन से। ये लिखती हैं, आनंद जी मैं सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद मेरी चाय होती है और ऐसे मेरे दिन की शुरुआत होती है। और बाकी मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज डेफिनेटली करती हूँ। और सभी को आपके रेडियो से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने पूरे दिन में एक्सरसाइज जरूर शामिल करें। थैंक यू सो मच। दिल्ली रोड से विकास जी मेरे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं सुप्रभात आनंद भाई, कैसे हालचाल हैं? गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह की शुरुआत चाय से होती है और अगर मैं चाय थोड़ी देर से पीता हूं तो यकीन मानना मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आज कुछ गड़बड़ है। मतलब मैं चाय का बहुत बड़ा क्रेजी फैन हूं। अरे वाह क्या बात है भाई, लेकिन इतना क्रेज भी सही नहीं है, ध्यान रखना बॉस। वेल अपनी अपनी सोच है यार, कोई इशू नहीं है, अपने अपने दिन की शुरुआत अपने अपने तरीके से करते हैं। मनीषा मेरे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं आनंद जी मैं सुबह उठकर गुनगुना पानी पीती हूँ, उसके बाद आपका रेडियो चलाती हूँ, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करती रहती हूँ, भजन सुनती रहती हूँ और ऐसे ही मेरी स्पिरिचुअल मॉर्निंग की शुरुआत होती है। दैट्स वेरी अमेजिंग। और मैसेज यार ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच रितु, थैंक यू सो मच अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। और बाकी बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। नेहा जी आपने भी बहुत अच्छी बात करी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू विकास जी, थैंक यू नेहा, रितु, मनीष एंड साथ में हमारे साथ सुमन जी भी जुड़े, अमन, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू ईशिका मेरे साथ जुड़ी, थैंक यू सो मच। आप लोगों के इतने वंडरफुल मैसेज आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और चलिए इसी थैंक यू के साथ आगे बढ़ते हैं, एक खूबसूरत नगमा, उसके बाद लौट कर आता हूँ। मुरादाबाद में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे अभी फटाक से। यस, अभी मुरादाबाद की बातें भी तो करनी है ना, अपने लोकल शहर के बारे में बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना? तो अभी लौट कर आते हैं, उसके बाद बात करते हैं अपने लोकल शहर में क्या स्पेशल हो रहा है इस पर बात करेंगे। अभी मैं आ रहा हूँ वापस इसी स्टेशन पर, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी हमारे कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पर। सुखविंदर सिंह की आवाज बहुत ही बेहतरीन गाना आज की सुबह की जो एनर्जी को है सुपर डुपर अमेजिंग करेगा, दिलहारा बहुत प्यारा सॉन्ग है, एंजॉय करते हैं। विशाल शिखर का म्यूजिक है, पीयूष मिश्रा ने लिखा है इस गाने को, इसी को सुनेंगे। आप भी वॉल्यूम बढ़ाइए और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। कुछ कहना चाहते हैं, कोई अपडेट देना चाहते हैं तो इमीडिएटली व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896 पर। गुड मॉर्निंग।

बेहतरीन गाना सच बता रहा हूँ, टशन फिल्म का ट्रैक। सच में यार बहुत ही एनर्जेटिक गाना और सुखविंदर पाजी की आवाज़ तो बड़ी कमाल की। मैंने तो लाइव परफॉर्मेंस देखी है उनकी अपने मुरादाबाद में ही जब उदिशा हुआ था, तो क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी थी सुखविंदर साहब ने। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलहाल मैं अभी आपको बता देता हूँ यूपीआई से जुड़ी एक खास और महत्वपूर्ण जानकारी। तो आपको बता दें भैया, यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले देश के करोड़ों यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है। भारत सरकार ने 2000 रुपए तक के सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह की फीस चार्ज लेने से पूरी तरीके से रोक लगा दी है। मतलब अब ये इस पर कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा, और ये खबर देश के तमाम छोटे दुकानदारों के लिए भी काफ़ी राहत लेकर आई है। इतना ही नहीं, सरकार ने कहा है कि रुपये डेबिट कार्ड से किए जाने वाले 2000 रुपए तक कि सभी ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से फ्री रहेंगे, और इन पर किसी भी प्रकार की कोई भी फीस जो है आपको नहीं देनी होगी और ना ही कोई वसूली जा सकती है। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, सरकार ने यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड से किए जाने वाले 2000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन पर फीस की वसूली को रोकने के लिए सोमवार को एक गेजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बताते चलें कि भैया गेजेट नोटिफिकेशन में एक आधारिक सरकारी सूचना है, कि इसके साथ ही ये भी आपको बताते चलें कि भैया देखिए, अब आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देनी होगी। अगर आप 2000 रुपए तक की यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं तो ये ऑफकोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। थैंक यू सो मच यार, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे भी अच्छी लगी। एंड थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आप लोग हमारे साथ जुड़े, पार्टिसिपेट किया आपने, उसके लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। और बहुत ही अच्छा लगा, और आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस

0: सेलिब्रेशन का मौका है, बिल्कुल छोड़िए मत।
1: बॉयफ्रेंड,
0: मैं आपके नाम फटाफट शामिल करता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। बाबू अंसारी साहब मेरे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं हम अपनी सुबह की शुरुआत गर्म पानी पी के करते हैं और फिर साथ में लिख रहे हैं, फिर ये अपने पौधों के लिए पानी रखते हैं उसके बाद ही चाय पीते हैं। ऑलराइट, मतलब ये अपने पेड़ पौधों में भी पानी देते हैं शायद। और ये जो ऊपर परिंदे हैं ना, परिंदे जो आते जाते हैं, जैसे खुले में जो पक्षी आते हैं, उनके लिए भी पानी रखते हैं। बहुत ज़रूरी है यार अपने आसपास की चीज़ों का, नेचुरल चीज़ों का भी ख्याल रखें। और मैं भी कहना चाहूंगा कि पेड़ पौधों में प्लांटेशन से प्यार करो, प्लांट्स को पानी देते रहो, बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़े हैं बबली अंजान, ललिता, गीता, ये सारे लोग, लक्ष्मी, कर्शप, भाभी जी जुड़ चुकी हैं, संतोष भाभी गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं, थैंक यू सो मच। हमारे रेगुलर लिसनर सहारनपुर से जोन, रोजी, पलविलीज मेरे साथ जुड़े हैं। हैव अ वंडरफुल डे, लिखते हैं जीवन की गलती होती है, जीवन है तो गलती होती रहती है, बस इसी इरादे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। इसका जो इरादा है, इसकी जो मतलब जो गलती होती है ना, बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे सिखाना चाह रहे हो और मेरे साथ साथ आप सभी को बताना चाह रहे हैं कि जब इंसान से गलती होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ है तो गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन बस इरादा आपका गलत नहीं होना चाहिए। अनुज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं चक बेगमपुर से, गुड मॉर्निंग जी। चलिए हमारे पास एक मैसेज और पहुंचा है राकेश वर्मा, मुमताज आलम का, गुड मॉर्निंग, ये हमें पहुंचाते हैं मुरादाबाद। असलतपुरा मुरादाबाद से हमारे साथ प्यारे मित्र जुड़े हैं,
2: शिकारियों ने खुली जही बट्टी मेरी लत गई, सारी मैं का डांस करेंगी, ना ना ना ना मार दमेंगी ना।
0: चलिए श्रोताओं, फिर होगी आपसे मुलाकात, मतलब मैं भी कहीं जा नहीं रहा हूँ, 9:44 हो गए हैं स्टेशन क्लॉक में, तो कुछ एड ब्रेक, उसके बाद ये बढ़िया गाना मेरी गल आपने सुनी, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड अभी फिलहाल कुछ एड ब्रेक, उसके बाद आते हैं।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
5: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
4: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, मोबिक किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
6: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
7: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
6: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
7: अरे नहीं,
8: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
7: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
6: अच्छा?
7: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
9: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

क्या बात है, गाना बहुत अच्छा है। 9:46 हो गए हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं आपको यहीं पर बोलूंगा बाय। खुशी के साथ एंजॉय कीजिए नेक्स्ट कंपनी, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, होगी टुमारो मेरी आपकी मुलाकात, और अपना बहुत स्पेशल ख्याल रखिए आप जहां भी जा रहे हैं। विश यू लवली डे, हैव अ वंडरफुल डे, अच्छे से एंजॉय करते रहिए। एक बार फिर से हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा मोरया। कुछ चीजें भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उस ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए जिसने मुझे और आपको जन्म दिया है ना। हर चीज हमें करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ चीजें लाइफ में नहीं संभलती है तो उसके ऊपर एक बार विश्वास करके छोड़ देना चाहिए। यकीन मानिए सब कुछ अच्छा होगा। आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, कल मिलता हूँ आपको इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। खूब सारा मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ लव एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। अभी के लिए हैव अ वंडरफुल डे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
4: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: कोई मिल गया
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे कृषि और स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 10:01 राइट नाउ। ट्यूजडे मॉर्निंग है, अपने आप में ब्यूटीफुल दिन है और दोस्तों एक खूबसूरत सा ट्यूजडे मॉर्निंग आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्यारा सा थॉट। एंड कहते हैं ना कि जब शुरुआत सच्चे मन और पॉजिटिव सोच के साथ हो ना, तो रास्ते अपने आप खूबसूरत होते चले जाते हैं। और आज तो दिन और भी खास है क्योंकि आज गणपति पापा के आगमन का दूसरा दिन है, तो क्यों ना आज अपने दिन की शुरुआत पापा के नाम और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ करें। पापा से बस इतनी सी प्रार्थना, आपके घर में हैप्पीनेस रहे, मन में पीस रहे और हर काम में पापा का आशीर्वाद बना रहे। सो दोस्तों, कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव और अपने इस ट्यूसडे को बनाइए सुपर स्पेशल। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और आप ही आज ट्यूसडे मॉर्निंग में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। इस पर आप भी अपने खूबसूरत ब्यूटीफुल थॉट पहुंचा सकते हैं, पर देर किस बात की, जल्दी से मैसेज पहुंचाइएगा। और हाँ, अगर आप ऑन द वे कार में हैं तो बस मैं आपसे कहना चाहूंगी, केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा सर। और कुछ अमेजिंग ट्रैक आज की सुबह मैंने आपके लिए यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं जो आपकी सुबह को बनाएंगे और भी ज्यादा खूबसूरत।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

पर, और अभी आपने सुना अमेजिंग ट्रैक अभिजीत सावंत जी की आवाज में। और दोस्तों कहते हैं ना कि जब सफर खूबसूरत होता है ना तो मंजिल भी खूबसूरत ही मिलती है, और हमारे पास यहाँ पर बैक टू बैक आप सभी के मैसेज भी आ गए आज की सुबह। थैंक यू सो मच एवरीवन। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अनुज कुमार जी मैसेज पहुँचाते हैं चक बेगमपुर मुरादाबाद से। और इन्होंने एक लाइन लिखी है कि हम भी फूलों की तरह कितने बेबस हैं ना, किस्मत से टूट जाते हैं, कभी लोग तोड़ जाते हैं। थैंक यू सो अपने मैसेज पहुंचाने के लिए आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहां पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में शेद शारी करी जी भी हैं। गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से सना एंड नाजिया तुर्क मैसेज पहुँचाती हैं। और उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है दुर्गेश सैनी जी का, गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अफरोज फातिमा जी आज की सुबह मैसेज पहुँचाती हैं, और साथ में इनकी फ्रेंड भी है लाइबा। और अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल जी, आपने जिस यू नो ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजी ये भी हम पूरा यहाँ पर करेंगे। एंड उसके अलावा दोस्तों अभी बातचीत भी कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं ये भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और अपने मुरादाबाद शहर में क्या चल रहा है वो भी सब आपको खुशी यहाँ पर बताने वाली है। दोस्तों आज है 15 सितंबर, और आज का दिन हमें उस दौर की याद दिलाता है जब घर में मनोरंजन का मतलब था एक छोटा सा टीवी और पूरे परिवार का साथ बैठकर कार्यक्रम देखने की खुशी। वो समय जब टीवी के सामने बैठने के लिए घर के सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते थे, कोई आवाज़ लगाता था टीवी शुरू हो गया है, और फिर शुरू हो जाता था परिवार के साथ यादों का एक खूबसूरत सा सिलसिला। आज हमारे हाथ में पूरी दुनिया है, लेकिन उस दौर की वो सादगी, वो साथ बैठकर टीवी देखने की खुशी शायद कुछ और ही थी, है ना एवरीवन? तो आज की इस खूबसूरत तारीख पर मेरी आपसे ना एक बड़ी प्यारी सी, मतलब क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन है। एंड आपको अपने बचपन की कौन सी टीवी वाली याद सबसे ज़्यादा याद आती है मुझे बताइएगा। कोई पुराना कार्यक्रम जो आपको, पुराना शोज़ बहुत पसंद आते थे, जैसे हम अगर अपने बात करें तो मुझे रामायण देखना बहुत अच्छा लगता था और कार्टून्स देखना बहुत अच्छा लगता था, शक्तिमान। बाकी आप भी बता सकते हैं आपको दूरदर्शन पर कौन से कार्यक्रम, कौन से शोज़ आपको ज़्यादा पसंद आते थे, बताइए बताइए। आज कुछ पुरानी यादों में चलते हैं। मैं अभी लौट कर आती हूँ और बताऊंगी अपनी मुरादाबाद शहर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। दोस्तों ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अपने खूबसूरत संदेश खुशी को पहुंचाती रहिए।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 10:26। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपसे ना एक मेरे मन में आया है कि चलिए खुशी आज सुबह ही अपने श्रोताओं से एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप सब तैयार है ना? देखिए, एंटरटेनमेंट के साथ ना कुछ क्वेश्चंस भी होने चाहिए, कुछ सवाल जवाब भी होने चाहिए, तभी तो मजा भी आता है ना। तो चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना वो बहुत इजी क्वेश्चन है और मैं आपको बता देती हूँ। आपने डायमंड सिटी नाम तो जरूर सुना होगा ना एवरीवन? हाँ, आपने डायमंड सिटी नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में डायमंड सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों बताइएगा, आज की सुबह बस यही क्वेश्चन हमारा है। आपने डायमंड सिटी नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में डायमंड सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? चलो ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, ठीक है? तो दोस्तों बताइए, ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी गुजरात जयपुर, ऑप्शन डी राजकोट। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी राजकोट। बताइएगा डायमंड सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? अपना सही जवाब अपने नाम के साथ पहुंचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और हमारे पास यहाँ पर कुछ खूबसूरत मैसेज आए हैं आज की सुबह, उनको भी हम शामिल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मधुबनी बिहार से मोहम्मद शाबर परवाना जी का, आज की सुबह हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है सहारनपुर से सैयद मंसूर जी का। अगला मैसेज हमें यहाँ पर पहुँचाया है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी ने गुड मॉर्निंग आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, इतने प्यार से गुड मॉर्निंग विश करते हैं आप। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जी का, जमुना देवी साहू जी का। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी का। ये भी अपने पूरे परिवार के साथ इस समय कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम का। और हमारे पास एक वॉइस नोट भी आया है, मैं उसको भी इमीडिएटली प्ले करती हूँ। आज की सुबह हमारे पास क्या पहुँचाती है हमारे लिसनर, तो चलिए बिना किसी देरी के सुन लेते हैं उनकी वॉइस आज मॉर्निंग में क्या पहुँचाती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी के संदेशों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है और सभी सब्री से इंतज़ार करते हैं।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसी हो आप? मेरा नाम सुहानी है, मैं सिपरी जिला मुरादाबाद से हूँ एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। सॉरी मैम, मैं डेली वेज मैसेज नहीं कर पाती, उसके लिए सॉरी मैम। मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है, इसलिए मैं एक गाना गाना चाहती हूँ।

पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। रहते

0: तो सोचो मैं तब जाए पली पास मेरे जब हो तुम। थैंक
1: यू सो मच मैम। मैम एक गाना सुना देना,
2: मोस्ट
1: सेम टाइम
2: वेलकम
1: सेम जगह।
2: सुहानी,
1: यस
2: एंड
1: मैम।
2: आपकी वॉइस सच में बहुत प्यारी है और आप हमें याद करें, हम आपको आपके पास ना रहें कैसे हो सकता है यहाँ। बहुत प्यारा सा आपका वॉइस नोट था, थैंक यू सो मच। एंड गाना भी बहुत प्यारा था, अमेजिंग, फ्रॉम द मूवी रमैया वस्तावैया से था। और हमारे पास नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आया है राइट नाउ। रानी नांगल से रिहाना जी हमें मैसेज पहुंचाती है आज की सुबह। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। और हमारे पास बहुत सारे जवाब आ रहे हैं आज मॉर्निंग में, जो अभी हमने आज आपसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए अभी लौट कर आते हैं तो शामिल करते हैं। आप कहीं मचाइए, बस बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब तो आपने पहुंचाया है, लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आज की सुबह मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, और उसका जवाब हम दोनों से पूछने वाले हैं, मेल फीमेल दोनों से। इंटरेस्टिंग है और बहुत प्यारा सा भी है। क्या है वो आकर बताऊंगी, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, पेशेंस बहुत जरूरी है ना, धैर्य रखना चाहिए।

एब्सोल्युटली राइट सो यू नो एवरीवन गुड मॉर्निंग. देखिए मॉर्निंग बनकर तो हमारी प्यारी प्यारी सी गर्ल्स रहती हैं, नो डाउट. इतने खूबसूरत तरीके से सुबह सज संवर कर वो तैयार होकर मंदिर जाती हैं और गणेश चतुर्थी का इतना प्यारा सा पर्व चल रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो सब सुबह ही तैयार हो जाती हैं, नजर ना लग जाए आपको. इसलिए कहती हूँ बार बार काला टीका लगा के रखा करो. इतनी प्यारी सी हूँ आप, इतना क्यूट सा चेहरा है आपका और इतनी प्यारी स्माइल. हाय रब्बा, मैं तो वारी जावा. और आज की सुबह मैंने आपसे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा था, याद है आपको या भूल गए? अच्छा याद है, वेरी गुड. हाँ लगता है कि बादाम खाते हैं आप, लगता नहीं है खाते हो, है ना? तो दोस्तों आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था बहुत प्यारा सा सवाल. आपने डायमंड सिटी नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में डायमंड सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? और इसी का सही जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं जिन्होंने सही जवाब पहुंचाए हैं. और सबसे पहले हमारे पास राइट आंसर कहाँ से आए हैं और किसने पहुँचा है ये हम ऑन एयर अभी बता देते हैं आपको. एंड हमारे पास यहाँ पर बैक टू बैक सभी के मैसेज आ रहे हैं और सबसे पहले हमें सही जवाब पहुँचाती हैं आज की सुबह, बता दें. अच्छा चलिए बता देते हैं, बहुत इंतजार करा दिए, अब आपको बिल्कुल भी इंतजार आरजी खुशी नहीं करवाएगी और बता देती है कि आज की सुबह की हमारी ब्यूटीफुल क्वीन कौन बनती है शो की स्टार. एंड क्वीन तो बोलेंगे उनको क्योंकि वो बहुत प्यारी हैं, बहुत स्वीट भी हैं और उनसे जब मैंने मुलाकात की थी तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा ना कि मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिल रही हूँ. अब इतनी मैंने तारीफ ही कर दी है तो नाम भी ऑनियर कर दे रहे हैं, है ना, है ना, है ना, इंतजार नहीं करवाते. चलो चलो चलो हमारे पास यहाँ पर सही जवाब पहुँचाती हैं दीप्ति सूर्यवंश.

और आपको मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशन। आज की सुबह आप हमारी बनती हैं शो की सुपर क्वीन। एंड मैम ने सही जवाब पहुंचाया है, सूरत। एग्जैक्टली राइट, डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है सूरत। और ये जोरदार तालियां आपके लिए मैम। नेक्स्ट हमारे पास सही जवाब यहाँ पर पहुंचाया है। सही जवाब के साथ जुड़े हैं हमारे साथ नेक्स्ट अफरोज सैफी जी। सही जवाब के साथ जुड़े हैं, बट इनका जवाब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन कोशिश तो पूरी की है आपने। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। सही जवाब के साथ जुड़े हैं डॉक्टर नौशिंद्र सिंह जी। गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच, आप भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं, बट आपका आंसर थोड़ा सा लेट हो गया है, वरना आज हमारे शो के आप ही बनते सुपरस्टार। कोई बात नहीं, आप कल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। ये मैसेज हमें पूजा जी पहुंचाती हैं विकास नगर लाइन पार से। विकास नगर से गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। सही जवाब है सूरत। इसके अलावा अफरोज जी ने सही जवाब पहुंचाया है, डायमंड सिटी है सूरत। एग्जैक्टली राइट। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है राधे राधे खुशी जी। आपको भी राधे राधे। डायमंड सिटी सूरत को कहा जाता है। एग्जैक्टली ये मैसेज हमें पहुंचाती है अलका वर्मा जी बुद्धि बिहार से। और बाकी तो बहुत सारे जवाब हमारे पास आ रहे हैं, सही से आंसर आ रहे हैं। लगता है कि हमारे जो लिसनर है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान से रेडियो को सुनते हैं। मतलब काम में तो ध्यान रहता ही है, लेकिन इधर कान इधर होते हैं, काम में ध्यान उधर होता है ना। दोनों चीज़ें आप बड़ी नो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना, तो वो मिल ही जाती है ना। और आप भी पूरी शिद्दत के साथ सही जवाब पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लौट कर आती हूँ तो बताती हूँ कि अपने मुरादाबाद शहर में क्या कुछ स्पेशल चल रहा है। बस आप सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हाँ, एक अमेजिंग सा ट्रैक आज की सुबह मैं प्ले कर रही हूँ फ्रॉम द मूवी गुड न्यूज से। एंड लाल घगरा, आप भी डांस कर लीजिएगा मैम। मुझे पता है आप सुबह से काम में थक गए हो, थोड़ा सा डांस वांस करोगे ना तो आलस जो आ रहा है ना वो दूर हो जाएगा।

0: पर
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
0: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
4: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी खुशी। और अभी आपने सुना ये अमेजिंग सा ट्रैक डायमंड द छल्ला। भाई मेरे पास डायमंड का तो नहीं है, लेकिन हाँ गोल्ड का तो जरूर है। डायमंड का खरीदने के लिए अभी मुझे बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारा पैसे कमाना है, उसके बाद डायमंड भी खरीद लेंगे, है ना। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है, और जब मेहनत करते हैं ना तो हर चीज हम हासिल कर पाते हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने मुरादाबाद शहर के बारे में। मुरादाबाद के विकास से जुड़ी एक अच्छी खबर दोस्तों, शहर और आसपास के यात्रियों के लिए रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर किया है। रामनगर और देहरादून के बीच पहली सीधी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है, जो मुरादाबाद से होकर गुजरती है। यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार चलती है। इससे मुरादाबाद समेत आसपास के यात्रियों को देहरादून, हरिद्वार और रामनगर की यात्रा में सुविधा मिलेगी, और पर्यटन, व्यापार और स्थायी आगमन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो अगर आप भी चाहते हैं उत्तराखंड जाना, रामनगर जाना, तो बिल्कुल जा सकते हैं। ये ट्रेन वीक में 2 बार चलाई जाएगी, बुधवार एंड शुक्रवार। और आज मुरादाबाद का मौसम कैसे रहने वाला है ये भी खुशी आपको बताएगी। और यहाँ पर आपके जो संदेश आए मैं उनको भी शामिल करती हूँ। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, उसे भी हम आपसे पूछने वाले हैं। इजी सा है, और ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी ना, ये आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको भी मुरादाबाद से मैसेज पहुंचाते हैं ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी, साथ में रईस दुल्ला अंसारी जी। हाउ आर यू खुशी मैम? आई एम गुड। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए, हाय, हेलो, हेलो खुशी मैम, देहरादून से दीपक सिंह, श्रवण सिंह एंड और ये कहते हैं कि मैम सबसे ज्यादा डायमंड का काम सूरत में होता है। एग्जैक्टली राइट। और सर हमें मैसेज पहुंचाते हैं देहरादून से, एंड एक ट्रैक की रिक्वेस्ट भी भेजिए, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको सर, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। ललिता कश्यप जी अपना मैसेज पहुंचाती हैं आज की सुबह नवीन नगर मुरादाबाद से। अगला मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आपने नाम नहीं लिखा बस गुड मॉर्निंग विश किया है हमें। शैलेंद्र सक्सेना जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर आपको भी। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, सीताराम आपको भी जय श्री राम। अजीत कसाना जी आज की सुबह मैसेज पहुंचाते हैं, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं लदावली जिला मुरादाबाद से अपने मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। तो चलिए दोस्तों अभी मैं लौट कर आती हूँ कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक के उस पार, आप कहीं मचाइएगा, यूं ही मुस्कुराइए और अपनी संदेश खुशी को पहुंचाइए। हम भी सभी से आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके संदेशों का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी से पहुंचाइए, कंजूसी बिल्कुल भी मत दिखाइए। माना कि आप थोड़ा सा बिजी हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा टाइम तो निकाल सकते हैं ना। चलिए अभी गाना सुनिएगा।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और साथियों, समय मैं आपको बता देती हूँ, वक्त हुआ है 11:16। और मैंने आपसे कहा था ना कि जब मैं लौट कर आऊंगी तो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ। आप सब तैयार है ना? अरे वाह, वेरी गुड, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। हमारे जितने भी लिसनर हमें सुन रहे हैं ना राइट नाउ, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। और मैंने कहा था ना कि आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो अब आपको हम इंतजार नहीं करवाते और पूछ लेते हैं ये प्यारा सा क्वेश्चन।

हाँ, लेकिन क्वेश्चन से पहले ना मैं यहाँ पर कुछ और संदेश आए हैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे जो लिसनर है ना वो इंतजार कर रहे हैं और कुछ हमारे जो लिसनर हैं वो बोल रहे हैं कि मैम हमने आपको मैसेज किया है, अभी तक हमारा मैसेज शामिल नहीं हुआ। तो बिना किसी शिकायत के हम नहीं चाहते कि हमारे जितने भी लिसनर हैं वो नाराज हो। हाँ, चलिए शामिल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, क्या हाल है आपके, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगी। मैं आपका शो रोज सुनता हूँ लेकिन आज पहली दफा आपके शो में संदेश भेज रहा हूँ। आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जिससे प्यारे प्यारे आप प्यारे प्यारे अंदाज में बातें करती हैं ना वो भी दिल को बहुत ही अच्छा लगता है। शुक्रिया, आपकी आवाज़ और आपकी बात करने का अंदाज पूरे शो को और भी खूबसूरत बना देता है। और आज मैंने पहली बार आपके शो में मैसेज किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं अब्दुल रहमान जी, लेकिन कहाँ से पहुंचाते हैं ये उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया है। तो सर आप बताइएगा आपने कौन सी सिटी से अपना मैसेज पहुंचाया है आज की सुबह। अगला मैसेज हमारे पास आया है, नमस्ते खुशी जी, आपको भी नमस्ते। समस्तीपुर बिहार से हमें मैसेज पहुंचाती है मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास सिंह जी और साथ में सोनम सिंह है, अनामिका सिंह जी है। अगला मैसेज हमें पहुंचाते हैं नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहां पर आया है पूजा शर्मा जी का और ये विकास नगर से अपना मैसेज पहुंचाती हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो दोस्तों आज की सुबह मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो हमारी गर्ल्स हमें सुन रही हैं, जो फीमेल्स हमें सुन रही हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जब आप घर से बाहर निकलते हैं और अपने पर्स में आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप रखना बिल्कुल भी मिस नहीं करती हैं, मतलब आप चाहे फंक्शन में जाएं या मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाएं या फिर किसी इवेंट में जाएं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपने पर्स में रखना बिल्कुल भी नहीं भूलती हैं, बताइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। उस चमचमाते पर्स में आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो रखना मिस नहीं करती हैं, फटाफट से अपने जवाब हमें पहुंचाइएगा। तब तक हम सुनवाते हैं आपको एक खूबसूरत सा गीत, उसके बाद लौट कर आएंगे, करेंगे आपसे ढेर सारी बातें एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आज मुरादाबाद शहर का मौसम कैसे रहने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगी। बस आप यूं ही मुस्कुराते रहिए और अपने संदेश पहुंचाते रहिए।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuning to FM Murababa 89.6 FM.

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजी खुशी, और वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 11:34 राइट नाउ। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने मुरादाबाद शहर के। आज हमारे मुरादाबाद शहर का मौसम कैसा रहने वाला है, मुरादाबाद वेदर अपडेट भी बतानी बहुत जरूरी है ना। आज मुरादाबाद का मौसम का मिजाज थोड़ा बदलता हुआ नजर आ सकता है। सुबह जैसे आपने देखी है कि सुबह के मौसम में हल्के बादल भी हैं और बादलों के बीच धूप देखने को मिल रही है। वहीं बाद में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारों की भी संभावना बनी हुई है। आज अधिकतम तापमान करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। यानी आज मौसम रहेगा थोड़ा गर्म, तो बाहर निकलते समय मौसम का ध्यान जरूर रखें। तो दोस्तों मौसम चाहे जैसा भी हो, आप अपने स्माइल और पॉजिटिव वाइब बिल्कुल कम मत होने दीजिएगा। मैं आपके साथ आपकी अपनी आरजी खुशी। आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और मैंने आपसे आज की सुबह पूछा था कि जब आप मार्केट जाते हैं या फिर कहीं इवेंट में जाना होता है या कोई फंक्शन में अगर आप जा रहे हैं, तो आप अपने पास पर्स रखते हैं, और पर्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं उसको रखना। तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं संदीप जी नवीन नगर मुरादाबाद से। कहते हैं मैम हम अपने वॉलेट में कभी भी पैसे रखना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। अरे वाह, वो तो बहुत ज़रूरी है सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अलका वर्मा जी का बुद्धि विहार से। कहती हैं मैम मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो मोबाइल अपने पर्स में रखना बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। हाँ वो बहुत ज़रूरी भी है मैम, उसके बिना तो सारे काम अधूरे हैं। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, हाय गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बुलंदसारी जी का मैसेज हमारे पास आज की सुबह हमारे पास आया है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अफरोज फातिमा जी का, और ये कहती है मैम जब भी हम बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो अक्सर अपने पर्स में मेकअप का सामान और मोबाइल और पैसे रखना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं, और लिपस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं। अरे वाह वाह वाह, लड़कियों के लिए तो लिपस्टिक उनकी फेवरेट होती है, और कहीं भी जाती है ना तो

कुछ चीज़ें जो मोस्ट होती हैं हमारी, तो हम उसको रखना भूल जाते हैं ना, लेकिन मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तैयार होने से पहले मैं अपनी काम की चीज़ें अपने पर्स में रखती हूँ और उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया है ललित कश्यप जी का नवीन नगर मुरादाबाद से। और ये कहती हैं मनी, ओ हो हो हो हो क्या बात है भाई, मनी के बिना तो पर्स भी अधूरा लगता है ना। मनी और पर्स हो और मनी ना हो ऐसे कैसे हो सकता है मैम, है ना, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या फिर वो पैसा हो। अच्छा ये बताओ मैम, आप पर्स में 100 का नोट रखती हैं या 500 का नोट रखती हैं? ये वो पुराने वाला 2000 का नोट देखा है ना आपने? ओहो हो याद आ गया वो नोट, ओहो उसको देखकर अभी भी याद आ जाती, काश ये चल पाता है ना, लेकिन आपने उसको संभाल के रखा हुआ है। वैसे मैं बताऊँ मेरे पास भी 2000 का नोट है, पर अफसोस है कि मैं उसे खर्च नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ उसे देखकर खुश तो होती हूँ। चलो पैसे तो है, फाइनली काम नहीं आते, लेकिन दीदार तो हो जाता है। मैं भी प्राउडली बोलती हूँ कि मेरे पास भी भाई पैसा है। और इन्होंने बड़ी प्यारी सी कुछ बातें भी लिखी हैं कि पैसों की कीमत अपनी जगह, खुशियों की बातें निराली हैं, खुशी मैम की मुस्कान तो सबसे प्यारी और मतवाली है। रखिए पैसे संभाल कर, खुशियां दिल में सजाइए, हर दिन हंसते हंसते अपनी दुनिया महकाइए। अरे वाह क्या बात है मैम। और ये कहते हैं कि मैम मेरे पास भी 1000 का नोट है। अच्छा जी, 1000 का नोट आपके पास है, 2000 के नोट मेरे पास है, 3000 रुपए हो गए हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए खुशी मैम, प्यार भरा नमस्कार आदा, आपको भी आदाब। एफ एम मुरादाबाद 89.6 से हम जुड़े हुए हैं। मोहम्मद रिहान जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं, मिलक ताज खां जिला रामपुर से, रामपुर तहसील से अपना मैसेज आज की सुबह में पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन आज की सुबह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी लौट कर आते हैं तो बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फिट है वो हिट है। तो अभी लौट कर आते हैं और एक ऐसी चीज़ आपको बताएंगे जो आपको एनर्जी भी देगी एंड आपकी हेल्थ भी एकदम फिट एंड फाइन रहेगी। किस चीज़ की बात करने वाले हैं हम, वो अभी लौट कर आऊँगी तो बताऊँगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए एवरीवन। और सुनवाते हैं हम आपको एक बहुत ही शानदार सा ट्रैक, बस आप कहीं मचाइएगा, दिल से मुस्कुराइएगा और ऐसे ही बने रहिए खुशी के साथ।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे कृषि आपके साथ है। और दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ कैसी सब्जी की जो स्वाद के साथ साथ पोषण से भी भरपूर मानी जाती है, मोरिंगा यानी हमारा सहजन। सहजन की फली और इसकी पत्तियों में कई जरूरी पोषण तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट। अगर इसे संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जाए ना, तो ये हमारे शरीर को ज़रूरी पोषण देने में मदद कर सकती है। तो आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें इम्यूनिटी की, सहजन में मौजूदगी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट करते हैं। वहीं इसमें मौजूद फाइबर पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है और संतुलन खान पान के साथ दिल को भी ये काफ़ी मतलब सपोर्ट करने में मदद करता है। और अगर बात करें आयरन की, तो ये शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी मिनरल है, इसीलिए पौष्टिक और संतुलित डाइट में सहजन को शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आप इसको अपनी डाइट में ले सकते हैं एवरीवन। तो मोरिंगा की सब्जी अगर आपने नहीं खाई है ना, तो आप जरूर खाइएगा, बहुत टेस्टी होती है और बहुत हेल्दी भी होती है। ठीक है, तो आप उसको जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। अगर हेल्दी रहना है ना, तो ग्रीन सब्जियों को आपको इस्तेमाल करना होगा। हमारी जो फैमिली में होते हैं ना, हम सबको नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ बॉय ऐसे होते हैं, गर्ल्स तो इतने नखरे नहीं करती हैं, लेकिन बॉय नखरे करते हैं, नहीं नहीं नहीं हमें हरी सब्जी नहीं खानी है, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। लेकिन बेचारी लड़कियाँ चुपचाप जो बनता है घर में वही खा लेती हैं कि ठीक है मम्मा, हम आपने जो बनाया हम वही खा लेंगे। तो हरी सब्जियाँ खाइए, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, अभी सुने एक शानदार गाना, उसकी बात करेंगे आपसे बातचीत। आप सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और बहुत सारी फीमेल्स इस समय क्या कर रही हैं, हाँ लंच बनाने की तैयारी भी कर रही हैं और हमें सुन भी रही हैं, मुस्कुरा भी रही हैं कि मैम हम तो खाना बना रहे हैं और आप खाने पीने की बातें भी कर रहे हो। अरे वाह, चलिए अच्छी बात है, तभी तो मैंने याद दिलाया, अगर खाना नहीं बना रहे हैं तो बनाना शुरू कर दीजिएगा। और कुछ फैमिली में तो अभी डिसाइड ही हो रहा है कि आज खाने में बनाएं क्या, ये सबसे बड़ा सवाल होता है ना सभी के घर में, मेरे घर में भी होता है। चलिए सुनवाती हूँ मैं एक अमेजिंग ट्रैक, उसकी बात करेंगे बातचीत, लौट कर आती हूँ मैं ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, अब हमारे जाने का भी वक्त हो गया है, लेकिन जाते जाते कुछ और संदेश आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर देती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है संजू का, और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाती है। वेरी गुड मॉर्निंग। ये कहती है कि मैम, हमने ना खाना बना लिया है और आज हमने खाने में बनाई है भिंडी की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे। अरे वाह, क्या बात है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशाद हुसैन अंसारी जी का। साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है। आज थोड़ा बिजी थे, इस वजह से थोड़ा लेट मैसेज कर पाए। कोई बात नहीं सर, हो जाता है कभी कभी। तो दोस्तों, हम आपसे मुलाकात करेंगे, सी यू सून 3 से 5। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गन गनाते रहिए और नई नई जानकारियां पाते रहिए अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। हम मिलेंगे नई बातों के साथ, नई एनर्जी के साथ एंड बहुत प्यारी प्यारी बातों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना ख्याल और यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों के साथ रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब ने इतना प्यार दिया एफएम मुरादाबाद को, इतनी शिद्दत के साथ आप सुनते हैं। बाय बाय दोस्तों।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM। सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
6: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
6: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
7: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, और ऑफ कोर्स जब आप मुरादाबाद रेडियो सुनते हो तो यहां एंटरटेनमेंट के साथ साथ होती है ढेर सारी जानकारी। और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है, आप सुन रहे हैं किसान भाइयों आपका फेवरेट प्रोग्राम खेती किसानी, और आज इस प्रोग्राम में एक खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं।
8: आज के किसान ज्ञान वार्ता के इस ताजा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के कृषि विशेषज्ञ और वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत श्री अनिल कुमार सिंह जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत
9: के लिए।

0: बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: सर, सबसे पहले तो हमारे किसान साथियों को पीएम के एस के बारे में बताओ।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल। पीएम के एस के हमारे जो भारतवर्ष में एक ऐसी श्रृंखला है जहाँ पे हमें खेती के सारे आदान उपलब्ध होते हैं। अब पीएम के एस के कोई सुने तो कहेगा कि यार ये क्या, सबने देखा है पर शायद ध्यान न दिया हो। ज्यादातर लोगों ने ध्यान दिया, लोग समझने भी लगे। बहुत सारे कार्यक्रम, जब भी प्रधानमंत्री जी का कोई खेती से संबंधित कार्यक्रम होता है, किसानों से संबंधित कार्यक्रम होता है, तो हर पीएम के एस के पे वो लाइव होता है। वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं और उसको ध्यान से सुनते हैं। टीवी लगे हुए हैं, टीवी नहीं तो बहुत सी जगह मैंने देखा है जो छोटी दुकान है वहाँ तो लोग अपने फोन से भी दिखाने का प्रयास करते हैं। कहीं लैपटॉप पे है, कहीं कैसे है, कहीं कंप्यूटर पे है, तो सभी लोगों ने जाना है। तो ये वही खाद की दुकान है जो कि लंबे समय से हमारे यहाँ पर कार्यरत है। खाद की दुकान हम इसलिए कह देते हैं क्यों, खाद हमें मोटा मोटा दिखता है लेकिन खेती के जितने भी आदान हैं वो वहाँ पर मिलते हैं। बीज मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं, खरपतवार नाशी मिलते हैं, फफूंद नाशक मिलते हैं, कीटनाशक मिलते हैं, यहाँ तक कि खेती के यंत्र भी वहाँ पर मिलते हैं। जैसे स्प्रे पंप आपको चाहिए वो वहाँ मिल जाएगी, कोई और चीज चाहिए वो आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो वो ये उनका प्रयास होता है पीएम की एस पे के जो किसान हमारे यहाँ आ रहे हैं, अगर वो एक चीज ले रहे हैं तो उसके साथ उनको और दूसरी चीज के लिए कहीं किसी और दुकान पे न जाना पड़े। सबका ये प्रयास होता है, कोई भी जो अपनी दुकान चला रहा है, व्यवसाय होता है। जैसे आप किसी भोजनालय पे जाते हैं तो बोले साहब मेरे यहाँ तो रोटी दाल है, दही आपको चाहिए तो मैं दूसरी जगह से लाता हूँ, ऐसा नहीं होता। वो लेके रखता है, वहाँ रायता भी बना के रखता है, कोई कोई तो मिठाइयाँ भी रखते हैं भाई। खाने के बाद कुछ लोगों का शौक होता है मिठाई खाने, बोले साहब कुछ है मिठाई में, बोले हाँ साहब लड्डू भी है और खीर भी है, क्या पसंद है आपको, क्या खिला दो। इसी तरह से हमारे जो पीएम के एस के हैं उन पर खेती के उपयोग में आने वाली जितनी भी चीजें हैं वह सारी चीजें उपलब्ध है। भारत सरकार ने इसी को समझा और जाना और उर्वरक मंत्रालय को ये निर्देश दिए कि जब यहाँ पर हमें खेती के उपयोग में आने वाली सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो क्यों न हम यहाँ से खेती की सलाह और खेती में होने वाले नए जो अच्छे जो चेंज है, जो कि जो मतलब जो किसानों के लिए हितकारी है, उनको भी आगे प्रसारित करना चाहिए, उनकी भी व्यवस्था यहाँ पर की जानी चाहिए। यहाँ पर खेती का साहित्य मिले, खेती की सलाह मिले, खेती में क्या नया होने वाला है वो मिले। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, खेती के जो विश्वविद्यालय हैं या विद्यालय उनको जोड़ा गया है। दूसरा, जो कृषि विज्ञान केंद्र है जो हर क्षेत्र में होते हैं वहाँ के वैज्ञानिकों को जोड़ा गया। एग्रीकल्चर में जो एक तरह से आपके जो मतलब एडवाइजर होते हैं उनको जोड़ा गया। खाद कंपनियों के लोग जो कि खेती की सलाह देते हैं उनको जोड़ा गया, उनके नंबर बताए गए वहाँ पर। तो ये सलाहकार के रूप में दुकानदार भी जो अपना अनुभव रखते हैं उनके पास भी पूरा, आजकल तो अगर देखे जाए तो लाइसेंस ही उन्हीं को दिया जाता है जो कि एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट होते हैं। और खेती का साहित्य, खेती का साहित्य जैसे कि सपोज कोई नया बीज आया है, मक्का का बीज आया है, धान का बीज आ रहा है, तो उसकी पूरी जानकारी उसमें लिखी हो कि ये जो मतलब बीज है ये इसका नाम है, इसका उत्पादन इतना होता है, इतने दिन की फसल है, इस कंपनी ने बनाया है और इसके ये लाभ है, और इसमें जो उर्वरक का इस्तेमाल होना है वो इस तरह होना है, इसी समय पे करना है आपको, सारी व्यवस्थाओं के बारे में उसमें लगभग थोड़ी बहुत जानकारी दी होती है, जिससे कि किसान को ये आश्वस्त हो जाते हैं कि ये जो बीज मैं लगाने जा रहा हूँ इससे मुझे ये मिलने वाला है। इसी तरह से कोई कीटनाशक है, कीटनाशक का नाम होगा, कौन सी फसल में उसको इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, कितना पानी उसके लिए प्रयोग करना है, कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, वो पूरी जानकारी दे। तो ये खेती का साहित्य हो गया। तो ये सारी जानकारियां अगर खेती के आधे ये पीएम केस के पे अब जो उपलब्ध हो रही है उससे सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जागरूकता हो रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया में भी बहुत सारे, जैसे कि आज हम यहाँ पे हमारी आपकी वार्ता हो रही है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी सलाह देते हैं और बड़ी उपयोगी सलाहें होती हैं वो भी उपलब्ध होती हैं। बहुत से दुकानदार उनको भी दिखाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, अपने यहाँ पर सेव कर लेते हैं, फिर वो फार्मर को दिखाते हैं। इन्हीं सलाह केंद्र पर मीटिंगें भी हो जाती हैं, किसानों की संगोष्ठियां हो जाती हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कर लेता है, कृषि विज्ञान केंद्र भी कर लेते हैं, खाद कंपनियां जो हमारी जैसी उर्वरक की या खेती के आदान वाली जो कंपनियां वो भी मीटिंग कर लेती है। किसान इकट्ठे होते हैं, उनके सवाल होते हैं वो पूछते हैं, उनका समाधान किया जाता है। तो एक तरह से विक्रय का, सलाह का, समाधान का, ज्ञान का एक ही स्थान पर पूरा केंद्र स्थापित करने का ये प्रयास भारत सरकार का है, जिसे कि हम पीएम केस बोलते हैं।
1: सर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है
0: जी,
1: और उर्वरकों के लिए हम बहुत हद तक आयात पर निर्भर करते हैं
0: जी जी।
1: तो प्रधानमंत्री का जो संदेश है
0: जी,
1: उनका उद्बोधन है उर्वरकों के उपयोग के बारे में, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो बड़ी सार्थक बात है कि अगर पूरी खेती पे हम समग्र रूप में उदाहरण के रूप में ले लें कि हम एक रुपया खर्च कर रहे हैं तो उसी एक रुपये में से ही सारी चीजों में हमें खर्चा करना पड़ता है। अगर किसी चीज में हमारा खर्चा जो है मतलब जो कम हो रहा है तो हम उसे किसी और खेती के काम में लगा सकते, उदाहरण के रूप में ये हम इसको मोटा मोटा समझ लें। तो जब ऐसा होता है तो हमें ये देखना चाहिए कि जो खेती पे हम खर्चा करने जा रहे हैं वो पैसा क्या हमारा हम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जबकि वो खर्चा हमारे देश से बाहर ही जा रहा तो बहुत अहम हो जाता है। तो आयातित जो उर्वरक है उनमें हमारे देश का पैसा बाहर ही जा रहा है और हम उनको लेके आ रहे हैं। अब आज के समय में जैसे युद्धकालीन स्थिति आ जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, भाड़ा बढ़ जाता है, इंश्योरेंस के जो जो आपके खर्चे होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, तो इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सरकार आपको उसी रेट पर उपलब्ध करा रही है जो पहले रेट, तो बीच का जो सरकार बहन करती है। तो सरकार का यही कहना है कि अगर आवश्यक है तो डालिए, उसमें कोई रोक नहीं है, जितना आवश्यक है उतना डालिए, लेकिन अगर आप ज्यादा डाल के उसको एक तरह से जो खराब कर रहे हैं या उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है वो रोकें। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो किसानों को जरूर सुनाए।
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है।
1: सर, आज का हमारा विषय भी कुछ इसी से संबंधित है
0: जी,
1: कि टिकाऊ खेती क्या है और क्यों जरूरी है, इस बारे में सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि टिकाऊ खेती है क्या, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है क्या?
0: टिकाऊ हम अक्सर बोलते हैं यार ये आदमी टिकाऊ नहीं है, मतलब एक तरह से भरोसे का नहीं है, कभी कुछ कह देता है कभी कुछ कह, और अगर टिकाऊ है तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो खेती एक तरह से भरोसे का नाम, हमें पता है कि कहीं से मिले न मिले मैं बीज डालूंगा और इसमें से मुझे मिलेगा, तो ये जो खेती का भरोसा है और इसी को हम टिकाऊपन कहते हैं। जब ये टूटने लगे तो कहीं टिकाऊपन पे खतरा आता, तो ये न टूटे, ये अगर नहीं टूटेगा तो हमें लगातार जैसी हम फसलें लेते आ रहे हैं और उनके अंदर जो पोषण हमें उपलब्ध है वो सही मात्रा में हमें मिलता रहेगा टिकाऊ खेती में, तो इसी को हम टिकाऊ खेती कहेंगे कि जो हम चाहते हैं वह हमें होता रहे, और अगर वह होने में कोई भी रुकावट आ रही है तो वह खेती के टिकाऊपन पर एक खतरा है। टिकाऊपन से अर्थ ये हो गया कि कम खर्चे में और कम रोग बीमारियों के साथ अच्छी जो उत्पादन हो, अच्छा हमें उससे लाभ मिल सके, और जो भी पोषण या जो भी फसल हम ले रहे हैं, फल हम ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और जो उसका उपयोग करे उसको पूरा उससे स्वास्थ्य लाभ मिले। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कहा जाता है कि भाई खाया तो है ये मैंने, लेकिन इसमें वो स्वाद भी नहीं था और इससे मेरे को उतनी स्फूर्ति भी नहीं आई, तो कहीं ना कहीं जो चीज उत्पादन होके आ गई सब कुछ सही है, देखने में भी ठीक सी लग रही है, लेकिन उसमें वो न्यूट्रिएंट नहीं है, उसमें वो पोषण नहीं है। तो ये कहीं न कहीं टिकाऊ खेती के ऊपर एक जो क्वेश्चन मार्क बनता है कि वहाँ हमें कहीं न कहीं इसमें रुकावट आ रही है, तो इसको हमें सुधारना होगा। तो टिकाऊ खेती को हम अगर एक रूप में कहें तो एक समग्र ऐसी स्थिति जहाँ एक स्वस्थ फसल समरसता के साथ एक अच्छे पोषण के साथ हम उपज लेकर अपना जीवन यापन अच्छे से आराम से हो सके, ऐसी व्यवस्था को हम टिकाऊ खेती कहते हैं, जिसमें कम खर्चे में हम अच्छे से खेती कर सके।
1: सर, आज के समय में टिकाऊ खेती आवश्यक क्यों है और इसका महत्व क्या है?
0: हाँ, देखिए अभी क्या है, हमारे देश की आबादी हमने काफी क्षेत्रफल उतना सीमित ही है, क्षेत्रफल के साथ साथ क्या है कि बहुत सारा क्षेत्रफल हमारा शहरीकरण में भी जा रहा है, मकान बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, यातायात के साधन है, तो वहाँ कहीं न कहीं जमीन का इस्तेमाल होता है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हमारे औद्योगिक क्षेत्र है वो बन रहे हैं, तो इन सब में अगर हम देखें तो जो खेत की मात्रा है वो धीरे धीरे या ऐसे जो क्षेत्रफल है वो कम हो रहा है, क्षेत्रफल कम हो रहा है तो हमें छोटे क्षेत्रफल पर ज्यादा उत्पादन लेने की आवश्यकता। और आप देखिए कि इतनी आबादी के बाद क्षेत्रफल कम होने के बाद भी हमारे यहाँ इतना उत्पादन हो रहा है कि हम अच्छे से खा पी रहे और लोगों को भी खिलाएं जो बाहर के देश है जहाँ उत्पादन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है। ये क्रांति क्यों संभव हुई? अच्छे बीज हमें मिले, सघन खेती हम कर रहे हैं, पोषण के हमारे पास साधन है, तो ये सारी चीजें इसकी वजह से ये संभव हो रही है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक हमने टिकाऊ खेती की ओर ध्यान नहीं दिया, टिकाऊ खेती मतलब खेती का अच्छा स्वास्थ्य हो, जो अंदर जो जीव है, जो उसका आसपास खेत की मिट्टी या खेत के बाहर का पर्यावरण है वो अनुकूलता उसकी जो खत्म होने लगे, तो ये चीज भी ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करेंगी। और एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि हम इन साधनों का भी उपयोग करें तो भी हम अच्छा उत्पादन न ले पाए। तो इसलिए टिकाऊ खेती के जो पैरामीटर हैं, उसमें पैरामीटर में खास तौर से खेत का स्वास्थ्य, उसके अंदर जो होने वाली जीव क्रियाएं हैं वो सामान्य रहे, खेत के आसपास की जो आबोहवा है वो अच्छी रहे, और पोषक तत्वों का जो संतुलन है वो उसमें रहा आए, उसमें कोई कमी न आए, और ऐसा जो उसमें संतुलन रहे कि जो उर्वरक हम ऊपर से दे रहे हैं उनका समुचित प्रयोग हो सके, शत प्रतिशत नहीं लेकिन समुचित प्रयोग हो सके। जैसे कि सपोज आपने अगर 20 किलो नाइट्रोजन दिया है तो 20 किलो अगर नहीं भी मिले तो कम से कम 18 किलो तो मिले, 17 किलो तो मिले, कहीं ऐसा ना हो कि हम 20 किलो दें और 5 किलो ही मिल रही हमारी फसल पे, तो फसल को भी फायदा नहीं हुआ और आर्थिक नुकसान भी हुआ। टिकाऊ खेती मतलब ये मान के चले कि अगर कोई एक व्यक्ति स्वस्थ है और उसको जो भी पोषण दिया जा रहा है तो वो उसके शरीर को लग रहा है, उसका वो शरीर स्ट्रांग बन रहा है, तो उससे आप कोई भी काम लेना चाहो तो ले पाओगे ना, है ना, आराम से ले पाओगे। और अगर वह स्वस्थ नहीं है, है ना, स्वास्थ्य में खराबी आई है उसके, तो आप उसको पोषण भी देंगे तो भी वो अच्छे से उसको हजम करके अपने शरीर में नहीं लगा पाएगा, और उससे जो आशातीत काम आप लेना चाहते हैं वो आप नहीं ले पाएंगे। तो टिकाऊ खेती से मतलब अगर हम पूर्ण संपूर्ण देते एक स्वस्थ आबोहवा, स्वस्थ खेत की मिट्टी, स्वस्थ जीव जंतु, सारी चीजें अगर हम इसमें समाहित करें तो ये एक टिकाऊ खेती का रूप बनता है। और आज के समय में अगर इस क्रम को हम तोड़ते हैं तो कहीं न कहीं दीर्घकालिक तो उत्पादन में कमी आएगी, और क्षणिकालिक में अगर हम देखें जो हमें पोषण अनाज से फल से मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। अब जैसे मान के चले कि हमने चारा उगाया, चारा किसने खाया? गाय ने खाया या भैंस ने खाया? भैंस से हमने क्या लिया? दूध लिया, दूध हमने पिया, मक्खन बनाया या उसके पकवान बनाए। अगर चारे में ही पूरा पोषण नहीं मिला, जो उसको कहाँ से आना चाहिए था? खेत से आना चाहिए था, आबोहवा से आना चाहिए था, पर्यावरण से आना चाहिए था, तो वो जो गाय से दूध मिलेगा उसमें भी वो उतना पोषण नहीं होगा। जब उसमें नहीं होगा तो आपकी सारी चीजों, तो एक जो भोजन की या पोषण की जो श्रृंखला है वो टूटने लगेगी, वो कमजोर होने लगेगी, और अगर टिकाऊ खेती है तो वो नहीं टूटेगी। इसीलिए आज के समय में जबकि हमारे पास क्षेत्रफल जो मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है, आबादी हमारी ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में हमें और ज्यादा आवश्यक है कि हम टिकाऊ खेती के ऊपर अपना ध्यान रखें, और सारे प्रयास हमारे यही रहने चाहिए कि ठीक है हम और संसाधन बाहर से ला के देंगे लेकिन टिकाऊ खेती पे हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, तो ही हम एक अच्छे खेती की या उत्पादन की या पोषण की एक तरह से कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर बोलते हैं लोग कि यार पहले केला आता था उसका स्वाद ऐसा था, बहुत बढ़िया लगता था, महक आती थी, अब उतना नहीं है, कहीं न कहीं ये उसका फायदा उत्पादन हो रहा है, लेकिन वो एरोमा वो चीजें उनमें कहीं न कहीं कोई कमी है। तो हमें क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पे भी ध्यान, मतलब जो मात्रा है, मात्रा ठीक है हमारी मेंटेन हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर जो ताकत होनी चाहिए, पोषण होना चाहिए, उस पे भी हमें ध्यान देना होगा।
1: टिकाऊ खेती वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए आवश्यक है।
0: हाँ, वर्तमान भविष्य और भूत तो चलो निकल गया, उसके बारे में कुछ क्या है।
1: तो सर हमारे श्रोताओं को बताइए कि टिकाऊ खेती के प्रमुख घटक कौन कौन।
0: हाँ बिल्कुल, टिकाऊ खेती के लिए एक सबसे पहला घटक है कि एकल खेती न करें, अदल बदल के फसलों को बोएं। दूसरा, जितने भी आपके खेत के संसाधन हैं, जो कि खेत की मिट्टी में डालें और वो उसमें घुल जाते हैं, उनको आप इधर उधर न करें, उनको वहीं इस्तेमाल करें। कभी कभी ये होता है कि कोई फसल हमने ली और फसल अवशेषों की बिक्री हो जाती है और हमें पैसा नहीं मिलता। आपने पैसा लिया, आप हिसाब लगा लेते हैं कि चलो कटाई का खर्चा निकल गया, बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन अगर वही जो अवशेष थे वही आप अगर खेत की मिट्टी में ऐड कर देते, तो जैसा मैं बताता हूँ कि 75% पोषण जो उस फसल ने लिया था वो आपके खेत को दोबारा लौट के मिलते। उसकी अगर आप कॉस्ट निकालेंगे तो वो कहीं ज्यादा है। कॉस्ट छोड़ दो, उसके लगाने से क्या सबसे बड़ा जो लाभ हो रहा है वो ये है कि जो खेत के अंदर आपके मित्र जीव हैं वो काफी प्रफुल्लित रहते हैं, क्योंकि उनका वो भोजन है और वो आपके लिए फिर दिन रात और अच्छे से काम करते हैं और आपके खेत के स्वास्थ्य को या टिकाऊपन के लिए एक आधार खड़ा करते हैं। तो नंबर एक तो ये हो गया। दूसरा, खेती ऐसी करें जिसमें सभी चीजों का समावेश हो। जैसे गेहूं किया तो गेहूं के बाद आप चना भी ले सकते हैं, मूंग भी ले सकते हैं, हरी खाद भी ले सकते हैं। एक जैसे मतलब आवश्यकता वाली या एक जैसी आबहवा वाली फसलों को न ले, अदल बदल के फसलों को लेते रहे। अदल बदल उसको बोलते हैं फसल चक्र बोलते हैं। फसलों का चक्र इस तरह से बनाए कि फसल को अदल बदल के बोते रहे। उसमें क्या रहता है कि एक तरह के हानिकारक जीव वहाँ पर इकट्ठे नहीं हो पाते, उनका क्रम टूट जाता है, और लाभदायक जीव है उनको, जब हानिकारक जीवों का जो क्रम टूटता है तो लाभदायक जो जीव है उनको एक अच्छा माहौल मिलता है अपनी संख्या को अधिक करने के लिए। जब उनकी संख्या ज्यादा होती है तो वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जैसे कि मान के चलो केंचुआ है, केंचुआ बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया, पहले बहुत होते थे। जब ये मानसून का समय आता था तो खेत से निकलना दूभर हो जाता था, इतने केंचुए होते थे। एक और होती थी, छोटा सा एक जीव होता, गिजाई बोलते थे उसको, एक के ऊपर एक चढ़ जाती है। तो ऐसा बोलते थे, ऐसी ट्रेन है कि इसमें नीचे भी डब्बे ऊपर भी डब्बे है, आजकल ट्रेनें भी चलती है ना। तो वो बहुत कम हुए है? और जब पहली रेंज होती थी तो आपने देखा तो एक जो है मतलब जो लाल रंग का अपने आप खेत में कीड़ा आ जाता था, लोग बोलते थे ऊपर से गिरा, ऊपर से नहीं तो वो नीचे से ही निकलता था, आसपास से ही आता था। तो वो जो चीज थी इनमें कमी आ गई है। तो ये मित्र जो जीव है हमारे, इसके अलावा एक और जो है जो नुकसान है वो ये है कि अब हमारे खेतों के आसपास जो पेड़ होते थे ना, उन पेड़ों पे अनेक तरह के जो पंछी रहते थे, पंछी शाकाहारी भी होते हैं मांसाहारी भी होते हैं, सब चीजें खाते हैं, जीव जीवस से भोजनम एक कहावत है। तो वो जो खेत के अंदर, जैसे कि आजकल हम बोलते हैं ना कि भाई सुंडी आ गई, ये कीड़ा आ गया, हॉपर आ गया, वो उनका भोजन हुआ करता था, उनको पता होता था कि इस टाइम पे आएगा और वो सक्रिय होके पूरा उसको खाते थे, साल भर के लिए प्रोटीन उनकी इकट्ठी होती। आपको फायदा क्या होता था, आपके जो खेत में जो कीड़े आ रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते थे, वो उनको जो खाके उनकी संख्या इतनी कम कर देते थे कि उसका कोई आर्थिक नुकसान आपको नहीं होता था। दूसरा फायदा एक और था कि जब कोई आर्थिक नुकसान उनसे नहीं हो रहा, आपको मारने की जरूरत नहीं, तो आप कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते थे, तो उससे मित्र जीव आपके नहीं मरते थे। आप देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था थी। तो पेड़ जरूर लगाए है ना, तो पेड़ के लिए पेड़ एक जो मतलब जो मुख्य घटक है कि आपके खेतों के आसपास अगर पेड़ है तो वो टिकाऊ जो आपकी जो मतलब टिकाऊ खेती उसमें सहायक हो सकते हैं। दूसरा, जानवरों को जरूर रखें, गाय भैंस रखें, आसान नहीं होता है सुबह उठ के चारा डालना, 4 बजे गोबर उठाना, ये थोड़ा कठिन सा काम है, लेकिन कुछ तकनीकियां हैं आजकल, उनसे आप अपना के थोड़ा इसको सुगम कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। जानवर जरूर रखें, उसका गोबर होगा, उसके जो खेती के बहुत सारी हरी चीजें आती है, अनाज होता है, घर का खाना होता है, वो आप खिला सकते हैं। और उसका जो मतलब जो एक तरह से जो आपकी प्राकृतिक जो है उससे आपको फिर अच्छा चीज दूध मिलती है, ये सब चीजें। और फिर गोबर जो मिलता है उसके अंदर वो सारे पोषण जो वो हजम नहीं कर पाता है, वो सारे पोषण एक तरह से प्रोसेस होकर वो आपके जो खेत के लिए तैयार उर्वरक के रूप में या मतलब खाद के रूप में हो जाते हैं, जैविक खाद के रूप में। तो जानवर जरूर रखिए, ठीक है। और ज्यादातर ऐसी चीजें आप करिए जो कि आपकी प्रकृति को सहायक है, असहायक चीजों को आप थोड़ा रोकें। जब ही कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करें जब बिल्कुल संक्रमण की ऐसी स्थिति हो कि वो नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा था कि कोई अगर रोग आया है तो रोग को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि खेत के आसपास बाड़ करें। बाड़ काएगी करेंगे, कोई दीवार थोड़ी लगाओगे ईंटों की, फसल की लगा दो, फसल से चारा मिल जाएगा आपको, एक अलग तरह का अनाज मिल जाएगा और रोग को रोकने के लिए बाड़ का भी काम कर जाएगा। ये एक टिकाऊ खेती का है। इसके अलावा एक टाइम हुआ करता था कि एक जैसे गेहूं लगाए, गेहूं के बीच में चना हो गया और सरसों भी हो गई, ये एक ही समय पे एक ही खेत में अलग अलग तरह की फसलें आपने कर ली। जौ हो गया, जौ के साथ अटल मटर लगा दी या आपने जो कुछ ऐसी फसल लगाई, तो उसमें क्या है कि हर फसल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। कॉम्प्लीमेंट ये करती है कि वो कहीं से भोजन ले रही है, वो कहीं से भोजन ले रही है, और उस खेत में जितने भी मित्र जीव है उनको अलग अलग तरह का एक इन्वायरमेंट आपके खेत में उपलब्ध हो गया। तो कोई यहाँ अपने आपको रेस्ट कर रहा है, कोई यहाँ रेस्ट कर रहा है, तो उनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है और उनकी संख्या में कमी नहीं आती है। तो ये कुछ मूल घटक है, इनको अपना के हम टिकाऊ खेती की ओर ध्यान दे सकते हैं। दूसरा, जो आपके क्षेत्र के हिसाब से फसलें अनुकूल है उनको ही उगाने का प्रयोग करें। हम कभी कभी ऐसी फसलें भी ले आते हैं जो हमारे क्षेत्र के लिए अनुकूल, हम उनको फोर्स नहीं करने का प्रयास करते और उसकी वजह से हम अनेक तरह के रासायनिक प्रयोग वगैरह ये सब करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा बचाव करें। आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, कहीं की चीजें कहीं पहुंच जाती हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज यहाँ नहीं होती। अब जैसे मैं देख रहा था यहाँ आपके यहाँ पे सेब नहीं होता है, लेकिन इतना सेब है कि शायद मैंने कहीं और जगह भी नहीं देखा। तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये हिमाचल से आ रहा होगा या कश्मीर से आ रहा होगा, दो ही जगह से आएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके यहाँ नहीं उग रही तो आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आ जाए। जैसे कि नारियल है, नारियल नहीं होता, साउथ से आता है, खूब बिक रहा है आपके यहाँ, तो इस तरह से है। तो ये टिकाऊ खेती के कुछ मुख्य अवयव हैं, इनको अगर हम करेंगे और प्रयास करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करते रहें इनको, करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जानवरों से तो आजकल देखो आपकी PNG मिल जाती है जिससे खाना पका सकते हैं, गैस है, और आजकल तो PNG के बहुत सारे ये CNG के स्टेशन बन रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां इसमें आ रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं इससे आज की तारीख में, CNG से ये गोबर से बन जाती है, फसल अवशेषों से बन जाती है और खाने की जो आपकी गैस है वो सब हो जाती है। तो जो जितनी भी प्रकृति में चीज़ें होती हैं सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक चेन है, तो इस चेन को अगर हम रखेंगे जागृत तो ज्यादा बेहतर।
1: सर, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि टिकाऊ खेती के लिए उन्हें करना क्या चाहिए।
0: हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको उत्तर दिया है, तो जो मैंने कहा है कि जो इसके अवयव है जैसे कि एकल खेती से हम हटे, ठीक है, दूसरा जो फसल चक्र अपनाए, तीसरा जानवरों का प्रयोग करें, अपने घर पर कुछ जानवर जरूर रखें, दूसरा पेड़ पौधे जरूर लगाएं अपने खेत के आसपास, उन पे पंछी रहते हैं, वो आपने आपके खेत में जो हानिकारक कीट है, जो नुकसान है उसको जो रोकने का काम करते हैं, खेत में जो फसल लगा रहे हैं अगर उसमें रोग बीमारी ज़्यादा आती है तो उसके आसपास कोई कोई आप जो है बाड़ लगाएं, वो आपके लिए लाभकारी है, और फसलों को हेर फेर से बोएं, और कभी कभी खेत को खाली भी रखें, एक आध सीजन आराम दें। जैसे हम बोलते हैं हम बहुत थक जाते हैं, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये करिए, जिम चले गए, वो कर लिए, फिटनेस वगैरह से, फिर भी बोलते हैं कि नींद बहुत जरूरी है। आजकल डॉक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रेस पता है काय पे करते हैं, नींद पे, 8 घंटे की नींद। कितना भी सामान्य आदमी के लिए आवश्यक नहीं, वो संभव ही नहीं कि वो 4 घंटे की नींद में अपना स्वास्थ्य अच्छा रखता है। तो नींद है, तो जैसे हम नींद लेते हैं वैसे खेत में भी थोड़ी सी उसको नींद दे दें,
1: खेतों को भी ब्रेक चाहिए,
0: आराम चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उस ब्रेक में जब आप कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं उसमें, वो एक तरह से अपने आप को रिजुविनेट करता है, ऊर्जावान बन रहा है, हाँ रिस्टोर करता है, रिकलेक्ट करता है मेमोरी। तो ये सारी चीजें होगी। फिर उस समय पर क्या है कि आप भी ध्यान नहीं देते, बहुत सारे पंछी वगैरह घूमते रहते हैं, जानवर भी घूमते रहते हैं, वो अपनी जो क्रियाएं करते हैं उससे भी हमारे खेत की मिट्टी समृद्ध होती है।
1: पर टिकाऊ खेती के हम लोगों के लिए क्या लाभ?
0: लाभ ही लाभ है जी, बट ये कि हाँ शुरू में आपको लगेगा कि कोई लाभ नहीं है, जैसे कि आपकी हो सकता है आपकी उपज थोड़ी सी कम हो जाए, आपको लगे यार ये पेड़ हो गए इनका, इससे इसके नीचे थोड़ी जो हमारी फसल कमजोर होती है, ऐसा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं आपको बताऊं राजस्थान में बहुत सारे पेड़ होते हैं, खिजड़ी होती है
1: जी।
0: और एक ये आपके देसी बबूल होता है, नीम के भी पेड़ होते हैं, खेत में होते हैं, कोई उनको समग्र रूप से नहीं काटता, उन्हीं के नीचे फसल लेते हैं, क्योंकि उनसे उनको बहुत सारे अनेक लाभ हैं, उनके जानवर पलते हैं और नुकसान थोड़ा बहुत होता है, सह लेते हैं उसको, लेकिन फसल उन्हीं खेतों में होती है, पेड़ों को वो नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नुकसान सिर्फ कभी कभी हम बोलते हैं कि हमें असुविधा है कि मेड़ पे ये हो गया, ये इसके यहाँ नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है, छटाई करें, लेकिन पेड़ जरूर खेत के आसपास आप लगाएंगे, उससे आपको ईंधन मिलेगा, रोग बीमारियां जो मतलब कीट है वो आपके खेत के रुकेंगे। दूसरा ये जो टिकाऊ खेती के लाभ है, लंबे समय तक आपको खेती के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खेत के आपके खर्चे आपके कम होंगे। दूसरा टिकाऊ खेती जब हम करते हैं तो उसमें हम अलग अलग तरह की फसलें लेते हैं, तो कभी कभी देखने में आता है कि कोई एक ही फसल आपने ली और उसके रेट गिर गए या उसमें सारे क्षेत्र में बीमारी आ गई तो आप खाली हाथ हो जाते हैं, उनको ठंडन को पाल। अगर आप टिकाऊ खेती की तरह से कर रहे हैं तो उसमें अनेक फसलें आप उगाई है, कोई होगी कोई नहीं होगी तो आप खाली हाथ नहीं रहेंगे। आप जानवर रखेंगे तो आपके पास अतिरिक्त आय के साधन होंगे, आप सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे कि भाई वो खेत में होगा उसी से मेरे को आर्थिक लाभ होगा। जानवर है, दूध है, आजकल दूध की बहुत अच्छी डिमांड है, घी की बहुत डिमांड। मैं बता रहा हूँ कि अगर शुद्ध घी की जानकारी हो तो गांव से आके लोग 2 से 2500 रुपए का 1 किलो घी खरीदने के लिए तैयार है, ये मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, पर वो आप श्योर कर दीजिए कि सही है। अगर उनको ये जो आपके खतरा है शहर के लोगों को कि नहीं भाई इसमें मिलावट है तो बात अलग है। तो जानवरों से भी लाभ है, थोड़ा श्रम आपको करना पड़ेगा, कभी कभी होता है कि आने जाने में आपको असुविधा होती है कि भाई जानवर है तो हमारे पीछे कौन संभालेगा, हम तो घूमने जा रहे हैं, तो कुछ आपस में ऐसा तालमेल बिठाए कि ऐसा चले। तो हमें जो है अपने आमदनी के अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो जाते हैं, कष्ट कम होते हैं और हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है वो स्वास्थ्यवर्धक है, हम खाएं हमारे लिए अच्छा, जिसको दें उसके लिए अच्छा। आजकल आप देखते होंगे भाई ऑर्गेनिक है, पानी भी हमने आजकल अपने हैंडपंप का पीना बंद कर दिया, दुकान से ले आते हैं, ये कितने बड़ी दुख की बात है। कुएं का पानी हम सीधे नहीं पीते, बोले हिमाचल से पानी ले आओ, बोले वो भाई जी तो आपके जो उसके पहाड़ों का, मैं हिमाचल के उन्हीं बात कर रहा, मैं कहता हूँ कि अपने संसाधनों को जागृत अगर आप करना चाहते हैं तो टिकाऊ खेती की तरफ आपको
1: बढ़ना ही पड़ेगा,
0: जाना होगा। जब आप जाएंगे तो सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे करेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी और आपके लिए बहुत सारी चीजें फ्री। अब आप देखिए हवा के लिए अभी हम 1 रुपया नहीं देते, हो सकता है कि हम इसी तरह चलते रहे तो सिलेंडर हमें लेना पड़े, आप सोचिए ना। तो हर चीज की कॉस्ट अगर आपको जो मतलब धीरे धीरे कम करनी है तो टिकाऊ खेती की तरफ हमें जाना होगा।
1: सर वर्तमान समय आर्थिक रूप से बड़ा चुनौतीपूर्ण है
0: जी,
1: और अभी आपने बताया कि शुरू में टिकाऊ खेती करने पर थोड़ी उपज कम हो सकती है, तो क्या टिकाऊ खेती वर्तमान समय में संभव है और व्यवहारिक है?
0: बिल्कुल है। अगर आप देखें कि आपको ये कहा जाए कि ये गाड़ी आप 125 की स्पीड से चलाओ लेकिन 300 किलोमीटर चलेगी, और अगर आप इसको 80 की स्पीड से चलाते हो तो ये कितनी भी चलाओ तो आप क्या करोगे?
1: 80 की स्पीड से चलाएंगे।
0: हाँ तो फिर वही है, एवरेज भी अच्छा आएगा, टेंशन भी नहीं रहेगा, खतरा भी नहीं है, है? और व्हीकल भी आपका सुरक्षित रहेगा, रिपेयर मेंटेनेंस भी कम आएगी, सब कुछ आसपास का आप देख भी सकते हो कि भाई चलो इस समय हम गोरखपुर से निकल रहे तो यहाँ माहौल कैसा है, यहाँ के लोग कैसे, कैसी दुकान है, 125 में तो क्या देखोगे आप
1: जी।
0: तो टिकाऊ खेती आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक होती चली जा रही है, जबकि हम बहुत ज्यादा कॉमर्शियल एज की तरफ जा रहे हैं। जब हम अर्थ की तरफ ज्यादा जा रहे हैं तो वो अर्थ हमारे लिए प्रासंगिक हो, हमारे लिए सुखद हो, वो बहुत जरूरी है। अर्थ है लेकिन वो सुखद नहीं है आपके लिए, तो क्या मतलब है ऐसे अर्थ का? तो अर्थ सुखद हो और सब कुछ अच्छा हो तो उसके लिए टिकाऊ खेती आज के समय में तो और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि उसका क्रम टूट रहा है टिकाऊ खेती का, जो कि हमारे जीवन के लिए या हमारे सामाजिक जो ताने वाने के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो इस समय पर टिकाऊ खेती संभव भी है। संभव तो सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है और कोई रीजन नहीं है, कोई और कारण नहीं है जिसकी वजह से संभव न हो, इच्छा शक्ति करनी होगी। लेकिन इसके लाभ अनेक है, इसलिए इच्छा शक्ति करना ही उचित है कि हम टिकाऊ खेती की तरफ जाएं और धीरे धीरे इसकी ओर बढ़े तो हमें उसके परिणाम दिखेंगे और हम हमारा उत्साह और ज्यादा बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी उसको और ज्यादा आगे लेके आने की। बहुत सारे युवा हैं जो इस तरह के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और वो सफल हुए हैं, वो तो खेती की लाइन से भी नहीं थे, सफल हुए हैं और खुश है वो, उनकी तरफ से मार्गदर्शन मिल रहा है लोगों को। लेकिन उनमें भी लोग खामियां ढूंढने का प्रयास करते हैं, खामियां ना ढूंढे, खूबी ढूंढने का प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा।
1: तो श्रोताओं, आपने अभी टिकाऊ खेती, उसके घटक, उसके महत्व और उसमें जानवरों की भूमिका, इन सभी के बारे में श्री अनिल कुमार सिंह जी के विचार सुने, जो चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर हैं। उम्मीद है कि आप उपयोगी सुझावों जानकारियों से लाभान्वित होंगे और इनका लाभ उठा करके, खेती में इनका प्रयोग करके अधिक आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे।
3: आपको भी श्रोताओं नमस्कार, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: सभी श्रोताओं का हमारी सेहत की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। सेहत सही लाभ कई के एक नए एपिसोड में स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। और आजकल हर जगह पोषण माह की चर्चा हो रही है, लेकिन सच बताऊँ पोषण शब्द सुनते तो हैं, हम समझते कम हैं। हम सोचते हैं पेट भर गया है मतलब पोषण पूरा हो गया है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया भैया और साथ में एक पोषण विशेषज्ञ भी हैं, जो हमें बताएंगे कि सेहत भोजन कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। सेहतिया भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आरजे खुशी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी अस्पताल में नहीं रसोई में शुरू होती है और स्वास्थ्य भी वहीं से बनता है।
1: वाह क्या बात कही आपने। लेकिन सच बताऊं, कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हमारे देश में 6 महीने से 5 साल तक के 67.1% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये कैसे हो सकता है?
2: यही तो पोषण की असली तस्वीर है, और यह समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में भी 59% से ज्यादा एनीमिया है, और गर्भवती महिलाओं में लगभग 52%। इसका मतलब यह है कि हमारे भोजन में कहीं ना कहीं बहुत कमी है।
1: तो क्या इसका मतलब यह है कि हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन सही पोषण नहीं मिल पा रहा है?
2: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे। पोषण सिर्फ खाना नहीं, सही संतुलित भोजन है। शरीर को ऊर्जा, ताकत, दिमागी विकास, बीमारी से बचाव सब भोजन से ही मिलता है। भोजन हम खाते हैं वही हमारे खून, हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग को बनाता है।
1: तो सबसे आसान भाषा में बताइए पोषण आखिर होता क्या है?
2: पोषण का मतलब यह है कि पोषण का सही मतलब है संतुलित भोजन जो शरीर की जरूरत पूरा करे। भोजन से मिलने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
1: ये थोड़ा कठिन लग रहा है, जरा आसान करके समझाइए।
2: देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी बड़े पोषण तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट।

0: ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर का ढांचा बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन, खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी होते हैं।
1: मतलब अगर भोजन में विविधता नहीं होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। स्वास्थ्य आहार चार सिद्धांतों पर आधारित होता है, पर्याप्तता, संतुलन, संयम और विविधता। यानी भोजन इतना हो कि जरूरत पूरी हो, ऊर्जा संतुलित हो, हानिकारक चीजें सीमित हो और खाने में विविधता हो।
1: गांव में लोग कहते हैं कि पोषण वाला खाना महंगा होता है।
0: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे गांव की दाल, बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, ये सब सबसे अच्छे पोषण देते हैं। महंगा पैकेट वाला खाना पोषण नहीं देता बल्कि कई बार बीमारी दे जाता है।
1: तो शरीर को ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है?
0: कार्बोहाइड्रेट से। साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कुछ ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं से तो आता है।
1: और प्रोटीन?
0: प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, मांसपेशियां बनाता है। दाल, चना, दूध, अंडा, ये सब अच्छे स्रोत है। शाकाहारी भोजन से भी पूरी प्रोटीन मिल सकता है।
1: बसा यानी फैट को लोग अक्सर बुरा मानते हैं।
0: जरूरी नहीं है, शरीर को कुछ वसा चाहिए लेकिन सही वसा सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल बेहतर है। ज्यादा घी, तला भोजन और ट्रांस फैट नुकसान कर सकते हैं।
1: आजकल गांव में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ रही है, क्या इसका संबंध भोजन से है?
0: बिल्कुल, इसका बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि ज्यादा नमक, चीनी, प्रोसेस फूड, प्रोसेस भोजन कहा जाता है, ये इनकी बड़ी वजह है। नमक दिन में 5 ग्राम से कम होना चाहिए। ज्यादा नमक दिल की बीमारियां बढ़ा सकता है।
1: फल और सब्जियों का कितना सेवन जरूरी है?
0: वैसे तो आमतौर पर हर व्यक्ति को रोज लगभग कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां लेनी चाहिए। इससे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं।
1: बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है?
0: जीवन के पहले 1000 दिन, गर्भ अवस्था से लेकर बच्चों के 2 साल तक सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही समय दिमाग और शरीर का विकास करने के लिए सबसे फायदेमंद और सबसे तेज बनाता है दिमाग।
1: तो शिशु को क्या खिलाना चाहिए?
0: पहले कुछ महीने केवल माँ का दूध, इसके बाद घर का बना अर्ध ठोस भोजन जैसे कि खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल। नमक और चीनी नहीं डालनी चाहिए इसमें।
1: गांव में एक धारणा है कि कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है।
0: असल में अधिकतर मामलों में ऊर्जा की कमी होती है, यानी बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं खा रहा होता है। दाल रोटी भी सही मात्रा में अगर बच्चे को मिले तो वह स्वस्थ रह सकता है।
1: और गर्भवती महिलाओं को पपीता या केला नहीं खिलाना चाहिए, ये बात सही है?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। ये फल सुरक्षित है और विटामिन से भरपूर है। ऐसी मिथक महिलाओं को पोषण से दूर कर।
1: सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?
0: जैसे कि आपने सुना होगा, 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों में हिग्नापन, कुपोषण, अनीमिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में हर महीने पोषण गतिविधियां होती हैं, पोषण बैठक, स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम, ये सब चलते रहते हैं।
1: सुना है तकनीकी भी इस्तेमाल हो रही है?
0: जी बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे पोषण ट्रैकर ऐप से बच्चों और माताओं की जानकारी रियल टाइम में दर्ज की होती है, इससे सेवाएं सही लोगों तक पहुंच पाती है।
1: महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए?
0: अनाज, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल रोजाना भोजन का हिस्सा होना चाहिए। तेल सीमित मात्रा में लें, तला हुआ ज्यादा मीठा और पैकेट स्नैक्स कम करें।
1: आजकल बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं।
0: जी हाँ, यही तो भविष्य की बीमारी का कारण बनेंगे। बच्ची आदतें पूरी जिंदगी चलती हैं, इसलिए घर का खाना सबसे बड़ा निवेश है।
1: सेहतिया भैया, क्या भोजन से गंभीर बीमारियां भी रोकी जा सकती हैं?
0: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। स्वस्थ आहार मधुमेह, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर तक के खतरे को कम कर सकता है। यानी सही भोजन दवा से भी बड़ा बचाव है।
1: सेहतिया भैया, आपने अभी कहा कि सही पोषण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है जिससे हमारे श्रोता जुड़ सके?
0: हाँ आरजे खुशी जी, मैं आपको हमारे ही इलाके की एक लड़की आरती की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सिर्फ आरती की ही नहीं बल्कि हमारे देश की हजारों बेटियों की कहानी है।
1: जरूर सुनाइए, मुझे लगता है श्रोता भी बहुत ध्यान से सुनना चाहेंगे।
0: जी बिल्कुल। आरती एक छोटे से गांव में रहती थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, काम में तो मन कितनी तेज थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में अक्सर यही सोच रहती थी कि

0: सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस फूलती थी, अक्सर चक्कर आते थे, लेकिन घर वाले कहते कमजोरी तो लड़कियों में होती ही है।
1: ये बात तो आज भी कई जगह सुनने को मिलती है।
0: हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ साल बाद आरती को शादी हो गई, शादी के बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन उसके शरीर में पहले से ही खून की कमी थी, जिससे किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं।
1: क्या उसने जांच नहीं करवाई?
0: पहले तो नहीं करवाई, उसे लगता था कि सब ठीक है, लेकिन गर्भ व्यवस्था के चौथे महीने में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन खेत में काम करते करते वे बेहोश तक हो गई थी। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, गंभीर एनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने परिवार से कहा अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो माँ और बच्चे को खतरा हो सकता है।
1: यह सुनकर तो परिवार घबरा गया होगा ना?
0: हाँ, पहली बार में उन्हें समझ ही नहीं आया कि पोषण कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ने आयरन की गोलियाँ दी, पोषण आहार समझाया, हरी सब्जियाँ, दाल, गुड़, चना, मूंगफली, दूध और नियमित जांच भी बताई।
1: क्या आरती ने सलाह मानी?
0: शुरू में मुश्किल हुई, उसे गोलियों से हल्की मिचली होती थी, लेकिन आशा दीदी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने समझाया कि यह सामान्य है और दवा जारी रखना जरूरी है। परिवार ने भी धीरे धीरे भोजन में बदलाव किया।
1: मतलब पूरा परिवार सीखने लगा?
0: जी हाँ, घर में पहली बार रोज हरी सब्जी बनने लगी, गुड़ और चना नाश्ते में शामिल हुआ, आरती को आराम करने दिया जाने लगा।
1: फिर प्रसव के समय क्या हुआ?
0: नियमित देखभाल और बेहतर पोषण की वजह से स्थिति संभल गई। कुछ महीने बाद आरती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा अगर समय पर सुधार नहीं होता तो परिणाम बहुत गंभीर भी हो सकते थे।
1: यानी सही समय पर पोषण ने दो जिंदगियां बचा दी।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आरती खुद अब गांव में महिलाओं को समझाती है। वो कहती है मैंने कमजोरी को सामान्य समझकर गलती की, अब कोई और ये गलती ना करे।
1: वाह, ये तो सच में प्रेरणादायक कहानी है।
0: हाँ, आज आरती अपने बच्चों को समय पे स्तनपान कराती है, पूरक आहार देती है और गर्भवती महिलाओं को जांच और पोषण की सलाह भी देती है।
1: तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है?
0: सीख तो बहुत साफ है, कमजोरी किस्मत नहीं होती, अक्सर पोषण की कमी होती है। सही भोजन, समय पर जांच, सरकारी सेवाओं का उपयोग जीवन बचा सकता है।
1: दोस्तों, आरती की कहानी हमें बताती है कि पोषण कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं है, ये छोटी छोटी रोज आदतों से बनता है।
0: और याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी की नींव है।
1: धन्यवाद सिहतिया भैया, सच में ये कहानी दिल को छू गई और बहुत बड़ी सीख दी गई।
0: बिल्कुल, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ पीढ़ी।
1: तो अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
0: विविध भोजन खाइए, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त भोजन दीजिए, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं, बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन दीजिए, नमक चीनी कम कीजिए और रोज सक्रिय रहिए।
1: दोस्तों, हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, साफ सफाई अपनाएंगे, नियमित जाँच करवाएंगे और संतुलित आहार अपनाएंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी देश मजबूत होगा।
1: इसी संदेश के साथ आपकी आरजे आपसे अलविदा लेती है, पर जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वस्थ को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
0: व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सके,
1: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही
1: लाभ कई, धन्यवाद। सेहत सही तो लाभ कई, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना। क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत हैं? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
2: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं

0: कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये बन सकता है।
0: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे शुरुआती स्तर पर कैसे पहचान सकते हैं।
1: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं एनीमिया के कुछ लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करती है ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि इंसान जल्दी जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, सांस भी फूल सकती है, चेहरे पे होंठ पे पीलापन आ जाता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है और स्पेशली महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहे तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे, या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
0: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों में जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है।
0: क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं?
1: ये एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है। जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज्यादा होती है, किशोरियों में ज्यादा होती है, कारण बच्चों में ज्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की जरूरत उनके शरीर को ज्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशन अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
0: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है।
1: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
0: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
1: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
0: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
1: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं या हिडन हंगर जैसी, अगर जैसे कुपोषण, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण, ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि जरूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है, इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
0: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
1: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो PHCs हो, CHCs हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो जरूरी चीजें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है। इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जैसे कहना चाहिए गुड़ और चना, जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, दाल, अंडा, मांस मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
0: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है?
1: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है और ये ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब 1 या 2 घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं, गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
0: अच्छा हमें ये भी बताएं डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
1: अब बहुत हद तक ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो दो केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने की गति ये कम हो सकती है और उनका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है अगर उनमें आयरन की कमी हो। इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत जरूरी है।
0: अच्छा डॉक्टर ये भी बताइए कि अगर एक श्रोता आज से ही एनीमिया से बचाव शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: मैं इसमें दो बातें आपको बताऊंगी कि बचाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि अपनी आदतें जो कि खाने से संबंधित है उनमें सुधार करें, और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराएं, जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सकें, तो उसका भी सेवन 6 महीने पे अगर करें तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो खत्म हो सकता है, जिस जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो है वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली जरूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच कराना।
0: हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से?
1: देखिए एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। और इसीलिए बहुत और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीजें आप इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे।
0: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है?
1: हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है और ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहां जाकर आप ये जांच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
0: अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करें?
1: देखिए ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो जाएगी, बच्चे भी काले हो जाएंगे, शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है तो आप इसे घबराएं नहीं, ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं, इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के एक दो घंटे बाद लें, नींबू के रस के मैंने बताया

0: नींबू पानी के साथ लें, या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय कॉफी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें, क्योंकि ये आपके साइड इफेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं। ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप को कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, जैसे कहते हैं ना कभी कभी कोई दवा किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत तरह के आयरन की दवाएं उपलब्ध हैं, और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन, जो कि पहले आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन FCM एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता, ये तभी दिया जाता है जब सीवियर एनीमिया हो, मॉडरेट एनीमिया हो, तो ज़रूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा।
1: अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है कि या सिर्फ गर्भवती महिलाओं को, ये किस एज के सीवियर एनीमिया को दिया जा सकता है?
0: देखिए, अभी आयरन का जो हमारा फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो FCM का इंजेक्शन है, ये अभी हमने गर्भवती महिलाओं को और साथ में धात्री महिलाओं के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब आयरन की जो हमारा लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना माइल्ड मॉडरेट सीवियर, तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम लोगों को, और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विकल्प है। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम जो FCM का है, ये इसमें अभी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझिए ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोग गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत जरूरत हो तो, मैंने बताया ना ब्लड के विकल्प की वजह से, लेकिन बच्चों के लिए हमारा आयरन सिरप आता है, वो उन्हें दिया जाता है।
1: तो क्या वो हर CSC PSC पर उपलब्ध?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने, अगर आपको जाने में भी अगर परेशानी हो, तो आपके घर के आसपास जो आशा या आंगनवाड़ी सेंटर हो, या ANMs हो, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाके ये शीशी खुद घर पे भी दे सकती है, दे भी देती है, और आप वो तरीका बता देगी कि किस तरह से आपको उसे देना है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस जानकारी के जरिए बहुत लोगों को या कुछ लोगों को इसका लाभ मिले और इस बीमारी से उन्हें निजात मिले। थैंक यू।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किस से पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना ही होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसों वालों तक सीमित ना रहे, गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहाँ और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहाँ लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ न आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए, छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है, ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षात करें।
1: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहाँ बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दो गुना हो जाता है।
0: और यही एक भी सीख है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
2: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुपी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें।
1: यही तो हुआ मेरे साथ, एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहाँ सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहाँ किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा, किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है, अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता, कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो। जैसे राशन की सूची लगती है, वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपने पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वे हमेशा कहती हैं, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है, महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है, बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
0: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ कई, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा।

0: अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो यूविन पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। 3, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। 4, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। 5, परिवार की राय सुनिए पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। 6, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। 7, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। 7, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है। इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
1: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है, व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
2: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है। आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
0: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
2: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
1: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
0: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
2: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
0: और
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: प्राथमिक विद्यालयों का संवरता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
6: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
5: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
6: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े। समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
5: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
7: है नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, हमारी जो सोच है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जिंदगी को, लाइफ को मस्त और झकास बनाने के लिए, है ना रीना। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो सब कुछ हम अच्छे
8: अच्छा
7: से कर पाएंगे, अच्छा ही होगा और अच्छा भी कर पाएंगे, है ना। तो देखिए, ये जो प्रोग्राम है ना, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। और चाहे आप विमेन्स हैं या फिर आप मेन्स हैं या आप बच्चे हैं या आप युवा हैं, ये जो कार्यक्रम है वो आप सभी के लिए है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप भी अपनी राय, अपने विचार रख सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। बिल्कुल, हम आपके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो रीना, तुम कैसी हो पहले ये बताओ।
1: आनंद, मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ। आई होप कि तुम बहुत अच्छे हो।
7: अच्छा हूँ यार मैं। और देखो दोस्तों, मैं और रीना आए हैं चटपटी बातें लेकर। तो रीना, हमारे शो का नाम है सोच बदलो, ये डेली हम प्रसारित करते हैं।
1: बिल्कुल,
7: क्या मानना है, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा या नहीं?
1: अरे बिल्कुल, अगर हम सोच बदलेंगे तो हमारा समाज भी बदलेगा और हमें जो आसपास सुन रहे हैं उनकी भी सोच बदलेगी। फिर वो एक दूसरे तक बताएंगे कि हमें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए।
7: बिल्कुल, तो आज सोच बदलो का जो टॉपिक है वो है भैया ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे बचें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक पे बात करना। तो जितने भी हमारे इस वक्त दोस्त, हमारे प्रिय मित्र रेडियो से जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद में रीना वापस आएंगे। उसके बाद हम इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड से, धोखाधड़ी से आप कैसे बच सकते हैं। तमाम जानकारियां हैं आज आपके लिए इस प्रोग्राम में। तो आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहिए।
7: श्रोताओं,
8: आई लव यू।

0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तो श्रोताओं, आज हम मुद्दा लेकर आए हैं आपके लिए कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। रीना, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आ गया है, हर इंसान जो है डिजिटली आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को जो है अब डिजिटली ग्रो करना है, मतलब सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आजकल तो लेने देने का सीन भी ऑनलाइन हो गया। और इसी बीच तमाम सारे जो हैकर्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, उनकी भी कतार मार्केट में, आजकल तो लेने देने का सीन भी ऑनलाइन हो गया। और इसी बीच तमाम सारे जो हैकर्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, उनकी भी कतार मार्केट में बढ़ती जा रही है, मतलब
1: बहुत ज्यादा बढ़ रही है
0: जी। जो फ्रॉड के मामले रही ना, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कोई सीन या कोई कहानी या किस्सा है तुम्हारे साथ या कभी हुआ हो? हाँ तो रीना, वही मैं आपसे पूछ रहा था, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो?
1: देखो, मैं किसी और की कहानी बताने से पहले मैं अपनी बता देती हूँ।
0: बता, बिल्कुल बताया।
1: एक्चुअली ये हुआ ना कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ, कपड़े बहुत खरीदती हूँ।
0: सभी करते हैं।
1: हाँ, तो मेरे को ना, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा बहुत अच्छे से सूट के, जो उन्होंने अपना खुद का पेजेस बना रखा था कि यहाँ से सूट ऑर्डर करो और कम दाम में आपको अच्छे सूट मिलेंगे। तो उन्होंने ऑफर डाला था कि 500 में आपको 2 सूट मिलेंगे, अगर आप 1000 डालते हो तो आपको 5 सूट मिलेंगे। तो मैंने सोचा वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने उन्हें मैसेज वगैरह किया, तो मैंने जो भी सूट लेने थे मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा उनको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको इतने इतने पेमेंट करने पड़ेंगे। मैंने पेमेंट कर दिया 1000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद के मैंने बोला कि मेरा ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम चेक करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपने जो ये 1000 रुपए पेमेंट कराया ना, तो ये हमारा डिस्काउंट में चला जाएगा, आपको 8000 और करने हैं।
0: अच्छा।
1: तो मैं वही समझ गई, मैं क्या, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ पर।
0: तो मतलब तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो गया ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: दोस्तों, अब देखिए, रीना के साथ तो जो है धोखाधड़ी वाला सीन हो गया, आपके साथ ना हो आप क्या कर सकते हैं? और अगर आप इस चीज का शिकार होते हैं तो आप कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कहाँ पर जाकर आप जो है इसकी सुनवाई करा सकते हैं, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। श्रोताओं, सबसे मजे की बात पता है क्या है कि आजकल ना जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉड करते हैं लोग, जो स्कैम करते हैं मार्केट में, इतने इनके जो तरीके हैं ना, बहुत सारे बदल गए, एकदम आपको जेन्युइन लगता है ना। जैसे केवाईसी अपडेट के नाम पर आपको कॉल आ जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: कभी
1: बिल्कुल।
0: आपको व्हाट्सएप पे कोई अचानक से लिंक आ जाएगा,
1: कभी बोलेंगे बैंक वाले, हाँ, बोल रहे हैं,
0: कॉल्स आ जाती हैं। और आजकल तो शादी के कार्ड भी आ रहे हैं, ऐसा लगेगा किसी ने भेजा है, क्लिक करोगी तो पैसा
1: कट जाते हैं,
0: ऐसा वाला सीन भी चल रहा है। तो दोस्तों, आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और इसी बात को जो है हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक अंतराल का समय है, म्यूजिकल ब्रेक भी लेंगे, अंतराल का समय है, और उसके बाद आपको सुनवाएंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, और बचने के लिए आपको कहां कैसे शिकायत दर्ज करानी है, सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे,
0: ये है आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। चलिए एक छोटा सा अंतराल, फिर मिलते हैं।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: श्रोताओं, एक बार फिर से पुनः आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रीना और मैं प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं सोच बदलो, और इस प्रोग्राम का नाम ही इतना प्यारा है, तो ये सोचिए प्रोग्राम कितना प्यारा होगा। वेल, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। और आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, मैं और रीना, आपसे ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक खास जानकारी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ एक छोटा सा आपके साथ एक प्रोग्राम साझा कर रहे हैं। आप इसको भी सुनिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम थोड़ी देर में मिलेंगे, मैं और रीना। क्यों रीना, दोस्तों बहुत जरूरी है, देखिए सही सोच के साथ साथ सही जानकारी का होना भी जरूरी
1: है।
0: तो आइए सोच बदले प्रोग्राम के अंतर्गत सुनते हैं ये खास और महत्वपूर्ण

0: जानकारी।
1: आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है उससे, पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं, आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले हैं राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है, अरे वाह, ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रुपए में दे रही है,
2: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रुपए का है।
1: अब राज कहता है, इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं? फिर राहुल कहता है, नहीं नहीं, वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो, कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है, क्योंकि 5 दिन हो गए ना तो डिलीवरी आई है ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं, ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें, ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा। श्रोताओं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले, छात्र और गृहणियाँ होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें, ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें
2: 1930
1: पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर रेडियो स्टेशन, जो आपको एंटरटेन तो करता ही है, साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इसरो से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहाँ पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना, वो जितने शातिर है ना, आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
0: तो श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये जानकारियां कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएंगी। और इसी तरह के प्रोग्राम हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं ताकि भैया हमारा जो ये समुदाय है, हमारा जो ये कम्युनिटी है, हमारी जो मुरादाबाद की जनता है, उसको अवेयरनेस मिले और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी सोच भी बदले। जब हम सोच बदलेंगे तो हमारी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी, क्यों रीना?
3: बिल्कुल, और जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो भी आज से बंद कर देंगे।
0: बिल्कुल, ऑनलाइन शॉपिंग तो बंद मत करो यार रीना, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचना है ना। शॉपिंग तो मतलब आप कर सकते हो, लेकिन हाँ कोशिश करो लोकल

0: दोस्तों जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत ही अच्छा है गीत और आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम, जिसे लेकर आज हाजिर हूँ मैं आनंद और साथ में आरजे रीना। तो रीना, फाइनली दोस्तों के साथ बातचीत करते करते कैसे हमारा समय बीत गया हमें पता ही नहीं चला है ना।
1: बिल्कुल भी नहीं पता चलता
0: जी
1: है।
0: हाँ, तो अब बस जाने का समय है, लेकिन बस छोड़ के जाएंगे कुछ खास बातें आपके लिए। देखिये दोस्तों, याद रखिये सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो कोई भी फ्रॉड आपका नुकसान नहीं कर सकता है ना, और ना ही कोई आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। तो बस आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, किसी भी अनजान लिंक पर आप क्लिक मत कीजिए। कोई भी दोस्त अगर आपको फेक आईडी या फ्रॉड आईडी बनाकर आपसे पैसे मांगता है, कोई लिंक आपको भेजता है, तो आप उन चीजों से जरा बचकर रहिए। कुछ भी इस तरह की आपके साथ बातचीत होती है या कोई भी ऐसी हरकत होती है, तो आप जो है पहले

0: अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके जरूर शिकायत दर्ज कराएं, क्यों रीना?
1: और जिसके नाम से आईडी बनाकर आपको मैसेज किया जा रहा है उस आदमी को भी जरूर सूचित करें इसके बारे में कि आपके नाम से आईडी बनाकर पैसे मांगा जा रहा है,
0: पता चल सके ना बिल्कुल साथ क्या हो रहा है। हाँ। तो दोस्तों आज के सोच बदलो में बस इतना ही। अपनी सोच बदलिए, सतर्क रहिए और सेफ रहिए और ऐसे ही सुनते रहिए
1: FM मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो,
1: बजाते रहे गुनगुनाते रहे।
0: चलिए जी, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय
1: बाय गाइस।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके साथ मैं हूं आशीष और
3: मैं हूं भावना और आज चर्चा होगी हमारे बीच में आभा घाट को लेकर। आज आपको बताएंगे आशीष आभा के बारे में। आशीष बताइए।
2: बिल्कुल भावना, अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज मैं और मेरी सहयोगी भावना हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि भारत सरकार की तरफ से जो जो स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है आभा की। आखिर ये आभा है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे और कौन कर सकता है? भावना, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
3: जी बोलिए।
2: अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप कभी किसी डॉक्टर के पास अपने बीमार होने के बाद में जाती हैं तो डॉक्टर का सबसे पहला सवाल आपसे क्या होता है?
3: पहला सवाल आशीष तो यही होता है कि ये बीमारी आपको कब से है और क्या इसके पहले कहीं ये बीमारी का इलाज कहीं करवाया है कि नहीं करवाया है। तो अगर हमने इलाज करवाया होता है तो हम पर्चा दिखा देते हैं उनको, प्रेस्क्रिप्शन, और अगर नहीं कराया होता है तो बता देते हैं कि नहीं कराया है।
2: कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास शायद पर्चा खो गया हो, फट गया हो या नहीं मिल रहा हो और वो अपने स्वास्थ्य के बारे में या अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पुरानी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।
3: हमारे साथ भी ऐसा हुआ है एक दो बार कि मान लीजिए कभी हम इलाज कराने गए और 2-3 साल पुराना पर्चा, कहाँ कभी कभी ध्यान नहीं रहता है तो पता ही नहीं चलता है, तो डॉक्टर से बस ऐसे ही बता देते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब कभी करवाया था लेकिन हमारे पास उसका कोई
2: प्रमाण नहीं हो पाता है, प्रूफ नहीं हो पाता या ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते कि हाँ हमारा इलाज चला तो ऐसे ही चला था। दरअसल मैं ये बातें इसलिए भी पूछ रहा हूँ भावना क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय ही इस बात से जुड़ा हुआ है क्योंकि बहुत सारे हमारे ग्रामीण अंचल के भाई जो हमारे या बहने हैं जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे उन्होंने भी अपने जीवन में कई बार ऐसी परेशानियों को फेस किया होगा जब कहीं ना कहीं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनसे पूछते हैं लेकिन वो समुचित जवाब नहीं दे पाते हैं। तो उसी के निराकरण के लिए हमारे पास है आभा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आभा क्या है।
3: बिल्कुल आशीष,
2: तो आभा मैं सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताऊं कि दरअसल ये 2021 में सरकार की तरफ से लागू किया गया एक ऐसा सिस्टम था जिसके जरिए आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री और बाकी स्वास्थ्य सेवाओं के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं या अगर आप उसमें शामिल हैं या अपना इलाज करा रहे हैं तो सबको आप उसमें दर्ज कर सकते हैं। अच्छा। जैसे हम किसी अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो वो पैसा हमारी जरूरत पर हमको काम आ सकता है जब भी उसकी जरूरत पड़े, ठीक ऐसे ही आभा है। जानती हैं कैसे?
3: कैसे?
2: दरअसल आभा का मतलब होता है ABHA, आभा। ये एक तरीके की हेल्थ आईडी है। आभा का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है
3: जी।
2: तो ये हेल्थ आईडी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत लॉन्च की गई थी और ये एक हेल्थ केयर सॉल्यूशन है।
3: तो अकाउंट क्या आशीष, ये कोई खाता है?
2: हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे ये एक यूनिक आईडी है, जैसे हमें आधार कार्ड हमारा होता है तो आधार हमारी एक यूनिक आईडी है।
3: अच्छा।
2: जिससे हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ठीक ऐसे ही आपकी एक हेल्थ आईडी बना दी जाती है, एक हेल्थ खाता बनाया जाता है जिसमें बहुत सारी आपकी जुड़ी हुई जानकारियाँ जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं वो उस खाते में आप दर्ज कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जो ग्रामीण श्रोता हैं उनके लिए बहुत काम की जानकारी होगी?
3: आशीष, ये बहुत काम की चीज है लेकिन आप इसके विषय में और भी बताएं जिससे हमारे श्रोता इसको सुने और समझें।
2: बिल्कुल, हम इस पर जरूर बताएंगे कि आखिर ये क्या है, ये कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले थोड़ी एक आम जानकारी जो आभा से जुड़ी है वो मैं ये जरूर बता दूं कि ये एक यूनिक हेल्थ आईडी है जिसमें आपके आधार कार्ड या आपके ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके इसे जनरेट किया जाता है। 14 अंकों का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आभा का
3: जी।
2: और आभा कार्ड की जैसा आपने कहा और पूछा भी है तो कई सारी विशेषताएं हैं और इसके कई सारे लाभ भी हैं जो लोगों को बिना किसी परेशानी के भावना हेल्थ केयर सेवाओं को एक्सेस करने में मदद करता है।
3: मतलब
2: ये कि जैसे आपको कोई भी स्वास्थ्य सेवा चाहिए या आप किसी भी स्वास्थ्य सेवा का इस्तेमाल कर रही हैं, तो सारी चीजों की जानकारी कहीं ना कहीं आभा आईडी में दर्ज हो सकती है। अब मैं थोड़ा आपको खुलकर बताता हूँ, खुलकर यानी विस्तार से बताता हूँ। दरअसल आभा कार्ड, जिसे मैंने पहले बताया कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है लोगों की, जो एक यूनिक 14 अंकों का नंबर है, जिसे भारत में हेल्थ केयर एक्सेस को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल आयुष्मान भारत स्कीम के हिस्से के रूप में ही आभा हेल्थ कार्ड आपको देश भर के हेल्थ केयर प्रदाताओं के साथ अपने मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर करने और उसको शेयर करने की अनुमति देता है।
3: मतलब अब आप समझ पाए? हमारे पास पर्चा नहीं भी है तो भी अगर कहीं गुम हो गया हमारा पर्चा, तो ये जो आभा कार्ड है उसका प्रयोग करके हम इसको अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं,
2: बिल्कुल
3: जानकारी हासिल कर सकते हैं।
2: तो आभा कार्ड के मोटे तौर पर जो लाभ हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ।
3: हाँ बताइए।
2: पहला, आसान हेल्थ केयर एक्सेस है आपको। दूसरा, सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके में उन कार्यक्रमों में भी कहीं नामांकन करना है तो वहां भी आपको ये हेल्प करता है। स्वास्थ्य बीमा रिकॉर्ड, यानी कि अगर आपने स्वास्थ्य बीमा कहीं से कराया है, हेल्थ इंश्योरेंस कहीं से कराया है, तो आप अपने आभा कार्ड में अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी दर्ज करा सकते हैं, ताकि आपकी एक ये भी जानकारी आपके पास रहेगी कंबाइंड तौर पर। और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड आपका लगातार बन रहा है, जिसको आप किसी भी डॉक्टर से अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो उससे शेयर कर सकती है।
3: तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है आशीष, कि जैसे कि आपने बताया कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमने कहीं कराई है, स्वास्थ्य बीमा कराई है, उसको इसमें ऐड कर लेंगे तो इसका पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा?
2: पैसे से मतलब अभी नहीं है। देखिए, वो तो जाहिर है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो उस समय आप अपनी सारी बैंकिंग डिटेल्स देते ही हैं पॉलिसी लेते समय, ठीक है। और पॉलिसी की जब मैच्योरिटी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसी भी हैं हेल्थ सेक्टर की जिसमें मैच्योरिटी के बाद तो कुछ नहीं मिलता, उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, बल्कि वो एक तरह का ऐसा इंश्योरेंस है कि अगर आपको कहीं ना कहीं कोई बीमारी लगती है तो उस समय आपका इलाज उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हो जाता है, यानी कि आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, जो पैसा खर्चा आता है वो सारा बेयर होता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो बहुत सारी ऐसी मेडिक्लेम पॉलिसीज होती हैं, हेल्थ पॉलिसीज होती हैं, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज भी हैं अलग अलग जो पॉलिसी सेक्टर में हैं कंपनियां, जिसमें मैच्योरिटी के बाद भी आपको अमाउंट मिल जाता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कुल मिलाकर आप अपनी हेल्थ पॉलिसी जो है, स्वास्थ्य बीमा जो है, उसके विवरण को आभा आईडी से अगर लिंक करते हैं तो अपने मेडिकल कवरेज को आप एक ही जगह पर ट्रैक कर सकते हैं।
3: एक ही जगह पर?
2: हाँ, एक ही जगह पर अपने मेडिकल कवरेज को आप ट्रैक कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। ये बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि भावना, आप मुझसे पूछ तो रही हैं लेकिन आपको भी इस बारे में बहुत सारी जानकारी है, तो मैं चाहूंगा कि अपने श्रोताओं को कुछ आप भी जानकारी
3: मेरे मन में मेरे प्रश्न का एक जवाब दे दीजिए आशीष आप पहले
2: जी।
3: कि अकाउंट आपने जिसे आभा आईडी के बारे में बताया, आभा कार्ड के बारे में बताया, आभा एक अकाउंट है, और ये अकाउंट में क्या कुछ हमें पैसे जमा करने हैं या सरकार देगी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप जानकारी?
2: नहीं, इसमें कोई ऐसा पैसा वाला हिसाब किताब नहीं है भावना। दरअसल ये एक तरीके का मेडिकल या हेल्थ अकाउंट है, स्वास्थ्य खाता है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा और विस्तार से आपको समझाता हूँ कि आभा का अर्थ क्या है, पहले इसको समझ लें। दरअसल आभा या आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जैसा मैंने अभी बताया, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसके तहत बनाई गई एक यूनिक हेल्थ आईडी है। आभा कार्ड एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के रूप में काम करता है, जो किसी भी व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री को समेकित करता है।
3: अच्छा।
2: जिससे हेल्थ केयर सेवाओं का आसानी से एक्सेस मिलता है, यानी कि जितनी भी हेल्थ केयर की सेवाएं हैं उसमें आपको एक सही एक्सेस मिलता है और बहुत आसानी से मिलता है। और ये आभा हेल्थ कार्ड यूजर को हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ साथ अपने हेल्थ डेटा को भी आसानी से शेयर करने की अनुमति देता है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, और इससे कहीं ना कहीं एक बेहतर समन्वय और पर्सनलाइज्ड केयर सुनिश्चित होती है भावना, और हेल्थ केयर की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके। आभा का उद्देश्य भारत में समग्र स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, जिससे सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्व स्वास्थ्य देखभाल अधिक सुलभ और कुशल बन जाती है। अब एक सवाल और भी आता है, ये तो हो गया कि आभा क्या है, लेकिन सवाल ये है कि आभा क्यों बनवाएं, यानी कि सवाल ये है कि
3: आप कैसे बनवाएं।
2: हाँ, सवाल ये है कि आभा आईडी क्यों बनाएं। ठीक है,
3: कि हमारे जो श्रोता हैं, अगर इसको सुनेंगे तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग भी कर पाएं। हाँ, कि क्यों बनवाएं और कैसे बनवाएं, कहाँ अप्लाई करें।
2: बिल्कुल, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत में दरअसल हमने देखा है कि हम हर तरीके से हर प्लेटफॉर्म लगभग आज की डेट में डिजिटाइज हो चुका है। डिजिटल हम अगर स्तर पर देखें या ई गवर्नेंस के स्तर पर देखें तो हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। हम लोग हर चीज में कहीं ना कहीं डिजिटली बदलाव कर रहे हैं। तो भारत के तेजी से बढ़ते हुए जो डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, उसका हिस्सा बनने के लिए अपनी आभा हेल्थ आईडी बनाना बहुत जरूरी है। समझ रही हैं आप?
3: हाँ,
2: जैसे जितना भी डिजिटल इकोसिस्टम है, देश की सरकार का या विभागों का या अलग अलग महकमों का, जहां पे लोगों को फायदा होता है योजनाओं से, उससे जुड़ने या उसका हिस्सा बनने के लिए आपकी आभा हेल्थ आईडी होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हॉस्पिटल, क्लिनिक और डॉक्टरों के साथ साथ अपने मेडिकल रिकॉर्ड को स्टोर करने और शेयर करने का सबसे आसान तरीका देता है, जिससे एक तो तेज डायग्नोसिस हो सकेगा और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट भी सुनिश्चित हो पाएगा। तो भावना, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो हमारा डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, अगर आपको उसका हिस्सा बनना है तो आपके पास आभा आईडी होना जरूरी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़े और कारण बताएं कि डिजिटल हेल्थ केयर के लिए आभा कार्ड लोग क्यों चुने।
3: अच्छा ठीक है, आपने पूछा कि आभा कार्ड क्यों चुने, तो आशीष हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो आभा आईडी है, एक ही जगह पर आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपके प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चे और जो टेस्ट रिपोर्ट है, वो एक ही जगह पर स्टोर करती है।
2: अच्छा,
3: हाँ,
2: यानी कि ये जो तीनों चीजों की जानकारी है वो हमारी आभा आईडी में एक ही जगह पर आ जाएगी,
3: जहाँ पे स्टोर कर लेती है।
2: ठीक है,
3: इस वजह से ही भी आभा आईडी चुने। और दूसरा कारण ये है, और दूसरा ये कि डॉक्टर तुरंत आपकी मेडिकल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आशीष, और पेपर वर्क और प्रतीक्षा समय को कम कर सकते हैं।
2: मतलब ये हुआ कि कहाँ, जैसे अगर हमारे पास बहुत सारे पेपर होंगे तो हमको अलग अलग जगहों से कलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें हमारा समय ज्यादा जाएगा, तो कम से कम वो समय बचेगा
3: वो
2: और डॉक्टर एक ही जगह पर जल्दी से वो सारी हिस्ट्री समझ जाएंगे।
3: ठीक है, और दूसरा ये कि पॉलिसी के जितने भी लाभ हैं वो और कैशलेस ट्रीटमेंट तक आसान एक्सेस के लिए अपने स्वास्थ्य बीमा विवरण को लिंक करें।
2: अच्छा, मतलब जो कैशलेस इलाज मिलता है, अगर वो आप पाना चाह रहे हैं और आपने अगर इसको लिंक कर लिया है अपनी आभा आईडी से, तो यानी कि आपको इसका लाभ भी मिल सकता है।
3: बिल्कुल मिलेगा।
2: ओके,
3: और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नामांकन करने और सरकारी हेल्थ केयर की स्कीम का लाभ उठाने के लिए अपने आभा हेल्थ कार्ड का उपयोग करें।
2: तो श्रोताओं, देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो अभी भावना जी ने बताई कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नामांकन करने, यानी कि अगर कोई सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य कार्यक्रम हो रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो उसमें आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं अगर वहां पर इसका विकल्प रखा गया है तो। और सरकारी हेल्थ केयर स्कीम जितनी भी चल रही हैं, उसका लाभ उठाने के लिए अपने आभा हेल्थ कार्ड का आप उपयोग कर सकते हैं, इसलिए आपको आभा हेल्थ कार्ड बना लेना चाहिए। और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं भावना?
3: लाभ तो अभी आपने बताया आशीष, कुछ लाभ तो आपने बताया कि आभा सुविधाजनक एक्सेस हो सकता है, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी आसान पहुंच हो सकती है, आयुष हेल्थ केयर स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकती हैं, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षा हो सकती है, और पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड का आसानी से रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है आशीष।
2: सही कहा भावना आपने। तो कुल मिलाकर आभा कार्ड चुनकर आप कुशल, पेपरलेस और कनेक्टेड हेल्थ केयर सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे मेडिकल विजिट अधिक सुविधाजनक और प्रभावी हो जाती है। और जैसा कि लाभ के बारे में चर्चा चल रही है, तो स्वास्थ्य रिकॉर्ड की निगरानी करने का सुविधाजनक एक्सेस है आभा, और स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान एक्सेस है आभा। यहाँ तक कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, जिसको HPR बोलते हैं, उस तक भी आसान एक्सेस है आभा, और आयुष हेल्थ केयर सेवाएं सुलभ हो जाती हैं आभा हेल्थ आईडी से। इसके अलावा डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षा मिलती है आपको, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड PHR का आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं आप लोग, एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है आभा, 14 अंकों का आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देता है, जो हेल्थ केयर सिस्टम के भीतर एक ही पहचान आपकी स्थापित करता है।
3: आभा हेल्थ आईडी कार्ड आपके मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की सुविधा प्रदान करता है।
2: इसके अलावा एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने की भी सुविधा है, यानी कि आभा हेल्थ आईडी सिस्टम आपके अकाउंट को आवश्यकता के अनुसार एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने की सुविधा देता है, और ये नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि आप अपनी पसंद और अपनी परिस्थितियों के अनुसार डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में अपनी भागीदारी को मैनेज कर सकते हैं।
3: और इसके साथ ही आभा हेल्थ आईडी कार्ड आपको लाभार्थियों को जोड़ने, आश्रितों या परिवारों के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य रिकॉर्ड के मैनेजमेंट की सुविधा भी प्रदान करता है। यह सुविधा आपके प्रियजनों की स्वास्थ्य जानकारी की एकीकृत देखभाल को सपोर्ट करती है और उनकी निगरानी को आसान बनाती है।
2: अरे वाह, इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री का एक्सेस भी है आभा। दरअसल कार्ड के साथ आपको स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक डेटाबेस हेल्थ सुविधा रजिस्ट्रेशन का एक्सेस मिल जाता है। देखिए बहुत सारे लाभ हैं। वैकल्पिक दवा का एक्सेस मिल जाता है, जैसे आयुष सेवाओं के साथ में आभा हेल्थ आईडी कार्ड का इंटीग्रेशन अगर हो तो वैकल्पिक दवाओं के विकल्पों तक भी आपकी पहुंच हो जाती है। इतना ही नहीं, सहमति आधारित डेटा शेयर कर, यानी कि अगर आप चाहें तो उस आईडी के जरिए आप अपना डेटा जिसको चाहते हैं उसको शेयर कर सकते हैं। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं है, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भी है कि नॉमिनी को जोड़ने की अनुमति देता है आभा। भावना, क्या इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगी?
3: हाँ आशीष, हम बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। आभा हेल्थ आईडी कार्ड आपको नॉमिनी बनाने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा एक्सेस किए जा सके, जहां आप अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यह प्रावधान देखभाल की निरंतरता को सपोर्ट करता है और आपके स्वास्थ्य हितों की भी सुरक्षा करता है।
2: क्या बात है, यानी कि आभा सभी के लिए बहुत जरूरी है। वैसे मुझे लगता है कि इसमें जो बीमा क्लेम वाली दिक्कत आती है लोगों के सामने, अगर आप आभा के साथ जुड़े हैं तो बीमा क्लेम प्रोसेसिंग जो है वो तेज हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि आपको बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ तक कि एक बड़ा प्रश्न ये भी आता है कि आभा कार्ड क्या बच्चों के भी बनाए जा सकते हैं?
3: हाँ आशीष, चाइल्ड आभा कार्ड के नाम से बच्चों के भी आभा हेल्थ आईडी सिस्टम बच्चों तक पहुंचता है, जिससे चाइल्ड आभा कार्ड बन सकते हैं। यह शुरुआती एकीकरण सुनिश्चित करता है कि बच्चे के मेडिकल रिकॉर्ड को कम उम्र से व्यवस्थित रूप से डॉक्यूमेंट किया जा सके, जिससे लगातार और सूचित बाल रोग देखभाल में मदद मिलती है। आशीष, अब आशीष एक प्रश्न आ जाता है मेरे मन में, यही से।
2: क्या पूछिए?
3: वो ये कि आभा हेल्थ कार्ड अकाउंट किसे बनाना चाहिए?
2: हाँ, ये बहुत अहम प्रश्न है भावना, आपने जो पूछा है। दरअसल एक्सेसिबल हेल्थ केयर जितने भी लोग चाहते हैं, सभी लोगों के लिए आभा कार्ड बनाना बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। जैसे क्रॉनिकल जो डिजीज हैं, ऐसी बीमारियों से ग्रसित लोग, या जिन्हें बार बार मेडिकल आवश्यकताएं पड़ती हैं, ऐसे लोग, या फिर वो लोग जो अपने हेल्थ केयर अनुभव को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए वो आज इलाज करा रहे हैं, फिर वो सही हैं, कई महीनों कई सालों तक वो सही हैं, फिर कुछ बीमारी आई, फिर उन्होंने उस चीज में सारे रिकॉर्ड दर्ज कर लिए, फिर वो सही हो गए, कुछ महीनों कुछ सालों के बाद में फिर कोई बीमारी आई, फिर उन्होंने अपना इलाज कराया और रिकॉर्ड दर्ज हो गया, तो यानी कि उनके पास कई साल का डेटा भी होगा। तो ऐसे लोग भी अपना आभा कार्ड बनवा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जहां तक बात इसके विस्तार रूप से समझने की है, तो देखिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रारंभिक नामांकन लाभ को आप अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आभा कार्ड बनाकर आप हेल्थ केयर सेवाओं का सही समय पर एक्सेस पा सकते हैं, ताकि समस्याओं को आगे बढ़ाने से पहले ही उनकी आवश्यक देखभाल आपको मिल जाए।

0: और ये सक्रिय रूप से आपके स्वास्थ्य प्रबंधन को भी बढ़ाता है और दीर्घकालिक परिणामों में सुधार भी करता है। और भावना, इसके अलावा आभा कार्ड जो है ना, वो हेल्थ केयर में डिजिटल टेक्नोलॉजी को एकीकृत करता है, मतलब सब कुछ एक ही जगह पर। जैसे यूजर अपने मेडिकल रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श कर सकता है या ले सकता है, और अपॉइंटमेंट मैनेज कर सकता है, और ये बड़ा आसान हो जाता है। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श करना और जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श करना या फिर अपॉइंटमेंट मैनेज करना, ये सब कुछ आसान हो जाता है। यहाँ तक कि भविष्य के हेल्थ केयर लाभों के लिए भी आप तैयार हो जाएं अगर आपके पास आभा कार्ड है, क्योंकि कार्ड होने से व्यक्ति भविष्य में हेल्थ केयर सुविधाओं के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और ये एक उभरता हेल्थ केयर प्रोग्राम है जो टेक्नोलॉजी में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। इतना ही नहीं, इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं आपको। आभा कार्ड बहुत सारे हेल्थ केयर सुविधाओं में मरीज के डेटा को लिंक करके एक तरीके से बड़े ही आकर्षक हॉस्पिटल अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि एकीकरण हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री को एक्सेस करने की अनुमति देता है, जिससे बेहतर जानकारी प्राप्त करने वाले निर्णय और बेहतर रोगी देखभाल की सुविधा मिलती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई हमारे श्रोताओं को। अब लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे और आ जाता है।
0: जी पूछें।
1: पूछें कि ये आभा कार्ड का उपयोग कैसे करें?
0: हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है भावना। दरअसल आभा हेल्थ कार्ड, जैसा मैंने पहले बताया कि कई तरीके के लाभ देता है जो मेडिकल सेवाओं को ने किया है भावना दरअसल आभा हेल्थ कार्ड जैसा मैंने पहले बताया कि कई तरीके के लाभ देता है जो मेडिकल सेवाओं को चुनने से संबंधित तमाम प्रक्रियाओं को आसान बनाता है। जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हिस्ट्री जो मैंने बताया, HPR, इसका एक्सेस करें। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर HFR का उपयोग करें। वैकल्पिक दवा विकल्प आप देख सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अब आपने जो एक सवाल पूछा कि इसका उपयोग कैसे करें, तो वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आभा कार्ड पर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड यानी कि PHR को आप ऑनलाइन मैनेज कैसे करें, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इसकी ID बनती कैसे है,
1: और ये भी आप चरणबद्ध तरीके से
0: बताइएगा। बिल्कुल, तो आप पहले तो ये समझ लें कि आभा ID पर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एड्रेस बनाने के लिए कुछ चरण हैं जिसका आपको पालन करना पड़ेगा। पहला, आप आभा ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि एंड्रॉइड और iOS पे हमको आभा ऐप जो है वो प्रोवाइडेड है। सरकारी ID का प्रयोग करके रजिस्टर करें और पोर्टल की तरफ से पूछे गए जितने भी विवरण हैं वो उसमें सब भर दें आप, ठीक है। अपने आधार कार्ड से जो फोन नंबर लिंक है उस नंबर को यहाँ पे दर्ज कर दें, ठीक। अपने मोबाइल नंबर पर शेयर किए गए OTP के साथ नंबर को सत्यापित कर दें, ठीक है। OTP सत्यापित जैसे ही होगा, ये प्लेटफॉर्म आपका PHR एड्रेस जनरेट कर देगा, ठीक है। अब आपका PHR एड्रेस जनरेट हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ सवाल एक ये आ जाता है कि आभा कार्ड के लिए आखिर अप्लाई कैसे करें, है ना। क्योंकि अभी तो आप सिर्फ एक पोर्टल पर आए हैं,
1: अभी उसका ऐप डाउनलोड करके चीजें हमने
0: जी
1: उसको अपने मोबाइल पे ले लिया है, लेकिन अब उसको क्या करें कि ऑनलाइन आभा कार्ड अप्लाई कैसे करें।
0: बिल्कुल, तो ये भी समझने वाली जरूरत, ये भी समझने वाली बात है। तो आभा एक हेल्थ केयर सॉल्यूशन है जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें आप जो अप्लाई करेंगे वो कैसे कैसे करें या इसमें किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है भावना?
1: आशीष, एक प्रश्न आ रहा है छोटा सा।
0: पूछिए।
1: कि आभा जो अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले अपना पर्सनल हेल्थ एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा।
0: हाँ, जो मैंने आपको बताया पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जो है आपका, वो आपको जैसा मैंने बताया कि आप ऐप डाउनलोड करेंगे,
1: PHR एक एड्रेस है पहले, वो जब जनरेट हो जाएगा उसके बाद हम आभा ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तभी तो उसमें आपसे OTP मांगी जा रही है। जब आप OTP डालकर अपना फोन नंबर सत्यापित करते हैं तो आपका PHR जो है, PHR एड्रेस वो जनरेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। अब जो आपने पूछा है कि हम इसको अप्लाई कैसे करें इस कार्ड के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, इसमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? तो आभा कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना आधार कार्ड रेडी रखें या आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रेडी रखें। आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके आप आभा हेल्थ कार्ड के लिए

अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है। तो पहला ये कि आधार कार्ड का उपयोग करके, है ना, और दूसरा ये कि ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके।

0: देंगे तो वो लिंक खुल जाएगा। लिंक मैं जबानी तौर पे भी बता देता हूँ।
1: जबानी तौर पे आशीष बहुत ही आराम से पढ़ेगा।
0: हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा
1: करके आप
0: जी, ताकि लोग उसको सुन लें और अच्छे से नोट कर लें। लिंक कुछ ऐसा है, तो भावना मैं जबानी तौर पर भी एक बार अपने श्रोताओं को ये बता देता हूँ कि वो लिंक क्या है, ताकि अगर वो लोग कहीं से लिंक नहीं मिल रहा है
1: बहुत आराम से आशीष
0: हाँ,
1: बताइएगा।
0: तो लिंक अगर आप आधार कार्ड के जरिए अपना आभा नंबर पाना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो है http:// दो बार लगाना है आपको, और उसके बाद आपको टाइप करना है ABHA आभा, डॉट लगाना है abdm.gov.in, ये हमारी आईडी है। फिर स्लैश लगाइए, ABHA लिखिए, फिर एक स्लैश लगाइए, V3 लिखिए, फिर एक स्लैश लगाइए और रजिस्टर लिखिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका दूसरा चरण जो आएगा वो ये कि आप आधार का उपयोग करके अपना आभा नंबर बनाएं, ये ऑप्शन जहां पे है उस पर क्लिक कर दें। फिर आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर वहां पर दर्ज करना है, उसमें घोषणा बॉक्स होगा जिसको आप चुने, और अगला उसमें लिखा होगा, अगला यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें नेक्स्ट या अगला लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ओटीपी वहीं पर डालना है जहां पर उसको लिखना है, सामने आपके स्क्रीन पर वो ऑप्शन आएगा टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए, कंफर्मेशन के लिए मोबाइल नंबर दोबारा दर्ज करें। ऐसा करने के बाद आपका संचार का जो विवरण है वो दर्ज करें, और जब ये सारी चीजें आप दर्ज कर देंगे तो आपका आभा पता बनाया जाएगा।
1: ये तो बहुत आसान प्रक्रिया लग रही है आशीष।
0: हाँ, सुनने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है या लेंदी लग सकती है, लेकिन एक बार वो करेगा उसके लिए प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरलीकरण।
1: जो लोग इंटरनेट आजकल तो सभी लोग यूज करते हैं, मोबाइल चलाते हैं और रजिस्टर खुद ही मोबाइल पे करते हैं बहुत सारी चीजें, तो हमें उम्मीद है कि श्रोता ये लोग खुद ही कर लेंगे।
0: हाँ, या जनसेवा केंद्र है,
1: जनसेवा केंद्र पे कर सकते हैं,
0: ठीक है। और ये दूसरा जो विकल्प ड्राइविंग लाइसेंस वाला है वो भी मैं बताना चाहूंगा। उसके लिए आपका जो लिंक है वो है http://// लगाइए abha.abdm.gov.in, जो हमारी आईडी है सरकार की, फिर /abha/v3/register, ये लिखने के बाद क्लिक करें तो आपके सामने एक पन्ना खुलेगा जहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करना है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का
2: नहीं, कहीं नहीं,
0: आभा नंबर बनाए पर क्लिक करें। वहां पे एक ऑप्शन होगा ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके अपना आभा नंबर बनाए, इस पर क्लिक।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट, रजिस्ट्रेशन मात्र ₹100 में। दर्द से राहत की सही शुरुआत अभी कॉल करें 9412504190, श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: नमस्कार।
5: उनमें गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
5: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय

0: अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।
1: अंडर द ईपीआर मैकेनिज्म,
2: ईपीआर व्यवस्था के अंतर्गत ईपीआर प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न ईपीआर ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
3: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि ईपीआर विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थितिकी, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में एआई के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब एक महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉ एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
5: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूँ।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है।
7: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शुभांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
8: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
9: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
8: आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधीश श्री।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
11: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
10: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
12: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
13: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
12: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
13: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
14: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। आपके
15: इसमें एक अनिवार्य सूचना क्या है, आभा के साथ CGHS लिंक करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, CGHS जानती है क्या होता है? केंद्र सरकार की जो हेल्थ स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है, इसको लिंक करना जरूरी है और इसके भी कई सारे फायदे हैं।
16: वो क्या है आशीष?
15: वो ये है कि सुव्यवस्थित सेवाएं हो जाती हैं आपकी, जो केंद्र की सेवाएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, यानी कि सेंट्रलाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड आपका हो जाता है, ठीक है, बेहतर हेल्थ केयर डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ ये अनिवार्य लिंक जो है वो सरकारी नियमों का पालन भी सुनिश्चित करता है, जिससे केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ती है।
16: आशीष, आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, लेकिन एक प्रश्न और आ रहा है मन में और वो ये है कि ये आभा एड्रेस क्या है?
15: हाँ बिल्कुल, हाँ, सारे प्रश्नों का जब तक उत्तर ना मिले तब तक चर्चा का भी क्या फायदा भावना। तो मैं अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहूंगा, आभा जैसा कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, आभा एड्रेस जो है एक विशेष पहचानकर्ता के रूप में काम करता है।
16: अच्छा।
15: यानी कि आपका जो आभा नंबर है वो एक विशेष पहचान है,
16: आधार कार्ड नंबर की तरह।
15: बिल्कुल, आधार कार्ड नंबर की तरह, ठीक है। तो आभा एड्रेस एक विशेष पहचानकर्ता के तौर पर काम करता है, जो अनिवार्य रूप से स्वघोषित यूजर नेम है आपका, ठीक है, जो आप अपना बनाते हैं, और ये आपको अपने हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में शेयर करने और एक्सेस करने की अनुमति देता है।
16: आशीष, आपने सारी बातें तो बताई, लेकिन हमने बहुत पहले ही प्रश्न पूछा था शुरुआत में ही, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, बार बार ये आभा अकाउंट ये आ रहा है, ये अकाउंट, ये खाते का क्या मतलब है? क्या इसमें पैसे भी जमा करने पड़ेंगे या फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस है उससे लिंक करने का ये क्या अर्थ है, जरा समझाइए थोड़ा।
15: नहीं बिल्कुल भावना, ये आपके दिमाग में आई हुई एक बात है और कहीं ना कहीं हो सकता है कई श्रोताओं के मन में भी ये बात आए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आभा कार्ड प्राप्त करने की जो लागत आपको लग रहा है ना कुछ होगी, ये बिल्कुल मुफ्त है, निःशुल्क है। आभा कार्ड मुफ्त है। आपको अगर अपनी आभा आईडी बनानी है तो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आधिकारिक आभा वेबसाइट पर जाइए, वहां से अपना आभा हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने आईडी बनाई है तो। लेकिन अगर आपको आभा के तहत कवर ना की गई किसी भी अतिरिक्त हेल्थ केयर सेवाओं को एक्सेस करने की आवश्यकता है तो आपको उनके लिए अलग से भुगतान करना पड़ सकता है।
16: अच्छा आशीष, अब ये बताइए कि कार्ड रजिस्टर करने में कितना लागत लगता है?
15: देखिए, मैंने बताया पहले भावना कि ये सब कुछ मुफ्त है, आप मुफ्त में आभा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपनी आभा आईडी बना सकते हैं और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आधिकारिक आभा वेबसाइट से अपना आभा हेल्थ कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है।
16: मतलब अगर हम इंटरनेट यूज करते हो तो खुद ही जाकर, या हमारे घर में अगर कंप्यूटर है, प्रिंटर है, तो खुद भी डाउनलोड, ये सारे काम हम खुद कर सकते हैं।
15: बिल्कुल, और साथ ही साथ चूंकि बात आभा की हो रही है तो सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो आयुष्मान कार्ड के तौर पर हमारे देश में चलाई जा रही है, उसके बारे में भी मैं एक लाइन में जानकारी देना चाहूंगा कि जो योग्य व्यक्ति हैं वो देश भर में पैनल में शामिल जितने भी हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उस पर हर वर्ष 5,00,000 तक के कैशलेस हेल्थ केयर का लाभ पाने के लिए अपने आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
16: आशीष, ये आयुष्मान कार्ड और ये आभा कार्ड, ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, तो क्या दोनों बनवाने हैं कि एक ही से हमको सुविधा मिल जाएगी? ये जरा हमको थोड़ा सा समझाइए।
15: ठीक है, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। दरअसल आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड के बीच अंतर जो है वो ये है कि आभा कार्ड मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, जबकि आयुष्मान कार्ड आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुफ्त में हेल्थ केयर लाभ प्रदान करता है। अब एक बात और जो मैं अपने तरफ से बता देता हूँ कि आभा कार्ड के उपयोग में मेडिकल रिकॉर्ड एक्सेस करने, हेल्थ केयर सेवाओं का लाभ उठाने और सुव्यवस्थित उपचारों के लिए बीमा विवरण लिंक करने के लिए हॉस्पिटल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर और फार्मेसी शामिल की गई हैं। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर आता है कि आभा कार्ड फ्री ट्रीटमेंट प्रदान करता है या नहीं?
16: जी बिल्कुल,
15: ये भी आपके मन में आ रहा होगा।
16: बिल्कुल मन में आ रहा था, हम अगला प्रश्न ही आपसे करने वाले थे, पूछने वाले थे।
15: हाँ, तो मैं आपको ये भी बता दूं, अपने श्रोताओं को ये बता दूं कि नहीं, इसका जवाब है नहीं। फ्री में कोई ट्रीटमेंट आभा कार्ड ऑफर नहीं करता, क्योंकि आभा आपकी मेडिकल हिस्ट्री स्टोर करने की एक व्यवस्था है।
16: तो ये जो अकाउंट शब्द हम बार बार यूज कर रहे हैं, वो अकाउंट सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री के लिए है स्टोर?
15: ये अकाउंट वैसा ही है जैसे आप अपने इंटरनेट पर कहते हैं ना कि हमारा जीमेल अकाउंट है, हमारा याहू अकाउंट है ना, हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, हमारा फेसबुक का अकाउंट है, या हमारा ट्विटर या एक्स का अकाउंट है। तो जैसे वो खाता है, वैसे ही एक एप्लीकेशन जिसमें बना हुआ एक ऐसा खाता जो आपकी जानकारियां स्टोर करता है,
16: जो हमारे पर्चे, जो हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो हमारी सारी विवरण इसमें स्टोर करके रख देगा।
15: तो इसीलिए कहते हैं कि आभा कार्ड फ्री ट्रीटमेंट ऑफर नहीं करता है, बल्कि ये हेल्थ रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए एक डिजिटल हेल्थ आईडी है। लेकिन ये आयुष्मान कार्ड जैसे मेडिकल खर्चों को कवर नहीं करती है। ठीक है
16: जी आशीष,
15: 2-3 सवाल और जो अक्सर लोग पूछते हैं, मैं उसका भी एक बहुत कम शब्दों में जवाब दे दूं। जैसे एक सवाल ये भी आता है कि क्या आभा कार्ड स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है? तो इसका उत्तर भी है नहीं। दरअसल आभा कार्ड स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं करता, इसे मेडिकल रिकॉर्ड को स्टोर करने, जैसे मैंने पहले बताया, और शेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन बेहतर एक्सेस के लिए आप इसे अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के साथ लिंक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और एक सवाल आता है भावना, पता है आपको
16: आशीष,
15: अक्सर लोग पूछते हैं, कहते हैं कि क्या आभा कार्ड कैशलेस है? तो इसका उत्तर कुछ ऐसा है कि आभा कार्ड खुद में तो कैशलेस ट्रीटमेंट प्रदान नहीं करता, लेकिन ये बीमा विवरण स्टोर करने में मदद जरूर करता है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य बीमा प्लान से लिंक होने पर कैशलेस क्लेम के लिए जरूर किया जा सकता है। ठीक है,
16: कैशलेस क्लेम,
15: जी कैशलेस क्लेम के लिए आप
16: लिंक
15: उसका
16: करेंगे अपना, हाँ, बीमा को, तब वो
15: तो जैसे आपने मान लीजिए कैशलेस इलाज कराया, तो उसका क्लेम करने के लिए जरूर ये आपके काम आएगा। ठीक है, एक सवाल और भी आता है, आभा कार्ड के लाभों की लिमिट क्या है? ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि आभा कार्ड के लाभों की फाइनेंशियल लिमिट तो कोई है नहीं, लेकिन डिजिटल स्वास्थ्य पहचान के रूप में चूंकि ये कार्य करता है, इसलिए जो मेडिकल रिकॉर्ड तक सुरक्षित एक्सेस आपको देता है, लेकिन इलाज की लागत को कहीं से कवर नहीं करता। तो ये हमें थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, जहां पर ऐसा लग रहा है कि हम आभा आईडी बना लेंगे तो हमारा सब कुछ मुफ्त में हो गया।
16: बिल्कुल, आमतौर पे ये सब सुनने में ऐसा लग रहा है, आभा कार्ड हो सकता है कुछ लाभ मिले, तो श्रोताओं से कहना चाहिए,
15: लाभ तो बहुत बड़ा है इसका,
16: लाभ सिर्फ रिकॉर्ड को रखने तक ही, ये बहुत जरूरी है। ये
15: तो ये लाभ
16: पुराने से पुरानी बीमारी जितनी भी होगी वो सारे रिकॉर्ड से मान लीजिए
15: कोई बच्चा बीमार हो गया,
16: जी
15: ठीक है, आपने उसका आभा कार्ड बनाया है, आपने उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री रखी हुई है, अब वो ठीक हो गया, मान लीजिए 15 से 20 साल की उम्र के बाद में अचानक से उसको कोई ऐसी बीमारी हुई जिसकी मेडिकल हिस्ट्री कहीं ना कहीं उसके 20 साल पहले वाली बीमारी से जुड़ती है,
16: बिल्कुल बिल्कुल,
15: तो वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, वो डॉक्टर को तुरंत समझ में आ जाएगी, तो ये कितना बड़ा टूल है।
16: बिल्कुल बिल्कुल,
15: क्योंकि ऐसी जानकारी आप कहीं और इकट्ठा करके रख नहीं सकते, तो इसलिए आपको एक डेडिकेटेड सरकार की तरफ से सर्वर दे दिया गया है, जहां आप अपना खाता खोलें, अपनी जानकारी सारी उसमें रख दें। इसके साथ साथ एक सवाल और भी पूछा जाता है कि आभा क्या एक निजी है या सरकारी पहल है? तो ये पूरी तरीके से सरकारी पहल है, ये हम सभी जानते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसकी तरफ से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो कि ABDM है, इसके तहत 2021 में इसको शुरू किया गया था।
16: 2021 तक ये सुविधाएं सभी को मिल दी जा रही हैं
15: और काफी उपयोगी है। ये तो हम देख ही रहे हैं इसके जो फीचर्स हैं,
16: जैसे कि अभी चर्चा के दौरान बात निकल के सामने आई, ये बहुत ही इजी और बहुत ही लाभप्रद है आशीष।
15: बिल्कुल। अच्छा ये भी बात है कि आभा कार्ड बनाने के बाद क्या करें, तो आभा कार्ड बनाने के बाद आपको अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को लिंक करना चाहिए, ठीक है। बीमा विवरण अगर आपके पास कोई है तो उसको अपडेट कर लीजिए। बेहतर

0: अगर मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट को अगर समन्वित करना है तो उसके लिए हेल्थ केयर प्रदाताओं के साथ में अपनी आईडी भी आप शेयर कर दें, ताकि वो आपको सही ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो भावना, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आज जो हमने आभा को लेकर विस्तार से आपस में चर्चा की है या जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाई है, वो उनके बहुत काम आने वाली। क्या कहती हैं आप?
1: आशीष, बहुत काम आने वाली है, और हम तो श्रोताओं से कहेंगे कि इसको बहुत सावधानी पूर्वक शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा सुने।
0: बिल्कुल, और देखिए रेडियो चैनल पर भी बहुत सारे हमारे जो गांव हैं वहां के महिला, वहां के पुरुष, वहां की बेटियां, वहां के बच्चे विजिट करने भी आए थे। जब हमने उनसे सवाल किया तो कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि आभा कार्ड क्या होता है या आभा आईडी क्या होती है या इसके क्या काम है, इसका कैसे हमें प्रयोग करें, कैसे पाएं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो हमारी श्रोताओं की एक श्रृंखला है, अब उन सबको ये बात पता चल जाएगी कि आभा है क्या, और ये कहीं ना कहीं उनके बहुत काम आने वाली है।
1: बहुत काम आने वाली है आशीष, क्योंकि जो आज चर्चा का मुख्य बिंदु ही रहा है आभा, और इसके बारे में जो भी आपने बातें बताई है, जो जानकारी बातें बताई है
0: जी,
1: वो बहुत ही लाभ होने वाली है हमारे श्रोताओं के लिए।
0: बिल्कुल, और हम अपने श्रोताओं से ये भी कहेंगे कि आने वाले समय में हम आपको आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान कार्ड या फिर जितनी भी और हेल्थ की योजनाएं चल रही हैं या बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी विस्तार से अपने विशेषज्ञों के जरिए या अपने कार्यक्रम के जरिए बताते रहेंगे।
1: तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz,
0: और मुझे यानी अपने साथी आशीष और मेरी सहयोगी भावना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, और मेरे साथ में है प्राची। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सपनों की कोई उम्र नहीं होती।
3: क्या सपनों पर भी कोई उम्र लिखी होती है? क्या कोई सपना 20 साल की उम्र में खूबसूरत होता है और 60 साल की उम्र में बेकार? जी नहीं बिल्कुल खुशी जी, क्योंकि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। सपने तो बस सपने होते हैं, उन्हें देखने के लिए आंखों में रोशनी चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए दिल में हिम्मत चाहिए।
2: और एक बड़ी खूबसूरत सी शायरी भी है, उम्र की गिनती से कहां सपने मना करते हैं, कुछ ख्वाब तो आखिरी सांस तक जिया करते हैं। लोग कहते हैं अब तुम्हारी उम्र नहीं रही, लोग कहते हैं अब तुम्हारी उम्र नहीं रही, हम कहते हैं सपने उम्र से नहीं हौसलों से चलते हैं।
3: क्या बात कही खुशी जी आपने। तो दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक कहानी, एक ऐसी महिला की कहानी जो बस आपकी दिल को छू जाएगी।
2: एक ऐसी महिला की जिसने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के सपने पूरे करते हुए गुजार दिया।
3: दोस्तों उनका नाम था सावित्री देवी, और सावित्री देवी की उम्र लगभग 62 साल थी।
2: उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में उनका घर था, पति सरकारी नौकरी में थे, दो बच्चे थे, जिंदगी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस दौर की बहुत सी महिलाओं की होती थी।
3: जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह सबसे पहले उठना, घर संभालना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति के लिए खाना बनाना, बुजुर्ग सास ससुर की सेवा कर, और दिन खत्म होते होते अपने लिए कुछ भी नहीं बचता था।
2: लेकिन दोस्तों सावित्री देवी के अंदर एक सपना था, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन में वह स्कूल जाना चाहती थी, किताबें पढ़ना चाहती थी, उनके नाम के आगे एक डिग्री लगाना चाहती थी।
3: लेकिन दोस्तों उनकी घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि 8वीं कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। उस समय लोग कहा करते थे कि लड़कियों का इतना पढ़कर क्या होगा, और सावित्री जी चुप हो जाया करती थी। लेकिन उनका सपना चुप नहीं हुआ,
2: वो सपना उनके अंदर कहीं रह गया। फिर शादी हो गई, बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, और धीरे धीरे उन्होंने भी मान लिया कि शायद अब पढ़ाई उनके लिए नहीं है।
3: एक दिन उनकी पोती जब स्कूल से घर आई, उसके हाथ में एक किताब थी। वह अपनी दादी से बोली, दादी ये का

0: लगा।
1: उसे मजाक लगा, उसे लगा माँ मजाक कर रही है।
0: और दोस्तों उसने कहा, माँ अब इस उम्र में पढ़कर क्या करूँगी। सावित्री देवी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और कहा, शायद वही करूँगी जो मैं बचपन में करना चाहती थी।
1: और फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, पहले हिंदी की किताब, फिर अखबार, फिर अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द। उम्र 60 पार थी, लेकिन उनके अंदर की छात्रा शायद अभी भी 15 साल की थी।
0: दोस्तों सच में शुरुआत में सपने आसान कहाँ होते हैं। कभी वो अक्षर भूल जाया करती थी, कभी शब्द समझ में नहीं आते थे, कभी घर में कोई कह देता था, अब इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है माँ। कभी पड़ोस की महिलाएं मजाक बनाया करती थी, अरे बहन जी आप परीक्षा देकर कलेक्टर बनोगी क्या।
1: सावित्री देवी हंस देती थी, लेकिन अंदर से वह और मजबूत हो जाती। उन्होंने एक कॉपी बनाई, उसके पहले पन्ने पर लिखा मेरा सपना, और उसके नीचे देर हुई लेकिन खत्म नहीं।
0: जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या बढ़िया बात लिखी कि देर तो हुई है लेकिन खत्म नहीं हुआ। दिन गुजरते गए और सावित्री देवी ने आखिरकार पढ़ना सीख ही लिया, फिर लिखना सीखा, और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पहली परीक्षा दी।
1: और जब परीक्षा का परिणाम आया, वह पास हो गई बहुत अच्छे नंबरों से। बहुत अच्छे नंबरों से नहीं, लेकिन उनके लिए वो नंबर दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
0: क्योंकि दोस्तों वो सिर्फ पास नहीं हुई थी, उन्होंने उस सोच को भी हरा दिया था जो कहती थी कि सपने सिर्फ जवान लोग देखते हैं।
1: उस दिन उनकी पोती ने उन्हें गले लगाकर कहा, दादी मुझे आप पर गर्व है। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे, उन्होंने अपनी पोती से कहा, बेटा जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि अब देर हो गई है।
0: जी हाँ दोस्तों, सावित्री देवी के ये शब्द बिल्कुल दिल को छू जाने वाले थे कि कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जिंदगी में देर हो गई है। दोस्तों सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो शायद यही बात हम सबको समझने की जरूरत है।
1: कितनी बार हम खुद से कहते हैं ना, अब मेरी उम्र नहीं रही, अब कौन नई शुरुआत करेगा, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब तो नौकरी की उम्र निकल गई, अब कौन मुझे मौका देगा। लेकिन जिंदगी हर बार हमसे यही कहती है। किसी ने कहा कि शुरुआत की कोई भी उम्र नहीं होती। आप इस पर राजी क्या कहना चाहेंगी?
0: खुशी मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि चाहे आप 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 70 के हैं, दोस्तों अगर दिल में कोई सपना अभी भी जिंदा है तो उसे एक मौका जरूर दीजिए। क्योंकि दोस्तों कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी आवाज देते हैं, कुछ रास्ते उम्र के बाद भी बुलाते हैं। जो दिल से निकल जाए मैं कर सकता हूँ, दोस्तों जो आपकी दिल से निकल जाए मैं कर सकता हूँ, वो सपने उम्र नहीं बस हौसला मांगते हैं।
1: तो आज अगर आपके दिल में कोई सपना है जिसे आपने सालों से दबा कर रखा है, तो उसे आज फिर से बाहर निकालिए, शायद वो सपना अभी भी आपका इंतजार कर रहा हो।
0: दोस्तों शायद वो सपना कह रहा हो, चलो अब बहुत इंतजार हो गया, अब मुझे जियो, अब मुझे भी तो अपनी जिंदगी में का हिस्सा बनाओ,
1: मुझे भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। और सपनों को उम्र नहीं चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए, क्यों प्राची?
0: बिल्कुल खुशी जी, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, अगर आंखों में आपके सपने बाकी हैं तो जिंदगी में आप अभी भी जवान हैं।
1: बहुत खूब। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा है कि सपनों की ना कोई उम्र नहीं होती है। और हमारी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो हमें सुन रही हैं प्राची इस समय राइट नाउ, उनका भी कहीं ना कहीं सपना है कि मुझे भी टीचर बनना है, लॉयर बनना है, एंड उसके अलावा फैशन डिजाइनिंग का भी आजकल यू नो ट्रेंड में है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है। और महिलाएं हैं भी इस फील्ड में, जो लेडीज हैं वो आगे अच्छा भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं,
0: बिल्कुल खुशी
1: पार्लर
0: जी
1: भी संभाल रही हैं।
0: बिल्कुल खुशी जी, हमारी आजकल खासकर मैं बात करना चाहूंगी न्यूली मैरिड वुमेन जो है हमारी, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करनी है। टैलेंट तो उनके अंदर बहुत है, डेडिकेशन भी बहुत है, पर वो शुरुआत में घर की नई नई जिम्मेदारियों से घिर गई हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हैं। पर हमारी प्यारी प्यारी श्रोताओं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप आगे आइए, अपने लिए समय निकालिए, जिस चीज में आपको खुशी मिलती है उसको भी कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है वो आपके परिवार और समाज का नाम रोशन करेगा।
1: और बहुत प्यारी सी एक लाइन भी है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसा।
0: अरे वाह खुशी जी, क्या बात कही है आपने। और हमारा ये संदेश सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी है कि अगर कोई भी सपना जो आपको लगा है कि मैं अभी नहीं कर पाया था और आपको लगता है कि मैं जिंदगी की एक रेस में बहुत आगे आ गया हूँ और अब मैं अपने सपनों के जीने की उम्र को छोड़ आया हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों सपनों की कोई उम्र नहीं होती।
1: अब वो सब चीज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं।
0: और बिल्कुल खुशी जी, और आपको पता है जब हम अपने सपनों को जीते हैं तो हमारी जो जिंदा दिली होती है जिंदगी को जीने की वो
1: और ज्यादा बढ़ जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और सच में जिंदगी को जीने का मकसद तभी है

0: जब सपने बाकी हो, जब हम उस सपनों के पीछे भागते रहते हैं, तो सच में जिंदगी को जीने का मजा आता है।
1: और जिंदगी इसी का नाम है।
0: और हाँ, जिंदगी इसी का नाम है। तो खुशी जी, कोई आपका ऐसा सपना है जो आप चाहती हैं अभी भी पूरा करना, क्योंकि आप हम सबके बीच में एक बहुत अच्छी आरजे है, तो और क्या क्या सपने हैं आपके जो आप पूरा करना चाहती है?
1: ड्रीम्स तो मेरे बहुत सारे हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्राची, कभी ड्रीम्स ना खत्म ही नहीं होते हैं। अगर एक कंप्लीट होता है तो फिर हम दूसरा सपना देखते हैं।
0: खुशी जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि क्योंकि सपने जो होते हैं, तो ड्रीम्स जो इतना ब्यूटीफुल वर्ड है, ड्रीम्स ये लाइफ को सच में बहुत खूबसूरत बनाता है। अगर ड्रीम्स ना हो तो सच में लाइफ में वो जो क्यूरियोसिटी और जो हमारा सब कुछ एक्सप्लोर करने की जो एक हमेशा इच्छा रहती है, अगर वो खत्म हो जाए ना, तो लाइफ में ना जिंदगी को जीने का मजा कम हो जाता है। सही बात है ना खुशी जी?
1: आई एग्री विद यू प्राची।
0: तो खुशी,
1: अभी लेते हैं हम एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। बातें तो हमने बहुत सारी कर ली हैं, तो मैं चाहती हूँ एक प्यारा सा, अपने जितने भी हमारे लिसनर इस समय हमें सुन रहे हैं राइट नाउ, सभी के लिए एक अच्छा सा गाना हम प्ले करें यहाँ पर।
0: हाँ बिल्कुल, हम करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप सभी के लिए प्ले। सुनते रहिए, कहीं मत जाइए और रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। मिलेंगे आपसे एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।
1: और मुस्कुराते भी रहिए, ये मत भूलना, क्योंकि ये किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। और आप भी मुस्कुराइए, जब आप मुस्कुराएंगे ना, तो मुझे यकीन है कि आपके सामने वाले पड़ोसी भी आपको देखकर जरूर मुस्कुराएंगे।
0: थैंक यू सो मच खुशी जी, एक प्यारा सा मैसेज देने के लिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का स्वागत आरजी खुशी करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है महिला मंच और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, और मेरे साथ में यहां पर प्राची भी हैं। एंड आज हम कुछ करने वाले हैं नया, कुछ न्यू क्रिएटिविटी एंड कुछ मस्ती भी, फन यहां पर होने वाला है। और दोस्तों, आप ऐसे ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि ढेर सारा एंटरटेनमेंट का डोज हम दोनों कुड़ियां यहां पर लेकर आए हैं आपके लिए। मैं प्राची से कुछ मालूम भी करने वाली हूं। अरे सुनो प्राची, एक बात बताओ।
1: हाँ खुशी जी, बताओ आज अब क्या नया सवाल लेकर आई है।
0: तुम्हें क्या लगता है, सपने देखने की भी कोई उम्र होती है?
1: अरे बिल्कुल नहीं, सपने देखने की उम्र होती तो हम दोनों आज यहाँ बैठकर इतनी बातें थोड़ी कर रहे होते।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, और सच बताऊँ मुझे लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ सपने कम नहीं होते, बस हम उन्हें थोड़ा दबा देते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं खुशी जी आप, क्योंकि जिंदगी में जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं ना कि हम अपने सपनों को बोल देते हैं, बेटा तुम थोड़ा इंतजार करो, पहले घर तो संभाल ले।
0: और वो थोड़ा देर, और वो थोड़ी देर पता है कब खत्म होती है?
1: जब बाल सफेद हो जाते हैं।
0: लेकिन सपना बेचारा तब भी वही खड़ा रहता है
1: और कहता है मैं तो अभी भी यही हूँ।
0: सच में दोस्तों, हमारे घरों में कितनी ऐसी महिलाएं होंगी ना जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहा होगा। किसी को पढ़ना था, किसी को गाना सीखना था, किसी को सिलाई कढ़ाई का अपना काम शुरू करना था, किसी को घूमना था,
1: किसी को बस इतना करना था कि एक दिन अपने मन की कोई चीज खरीद सके और उसे किसी से पूछना ना पड़े।
0: लेकिन फिर शादी हुई, बच्चे हुए, घर की जिम्मेदारियां आई और अपने सपने धीरे धीरे अलमारी में रखे, किसी पुराने कपड़े की तरह पीछे चले गए।
1: लेकिन दोस्तों, पुरानी चीज का मतलब बेकार चीज नहीं होता, कभी कभी वही पुरानी इच्छा सालों बाद फिर से आवाज देती है। दोस्तों हम आपको फिर से सुनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी कहानी जो है बहुत ही प्रेरणादायक। मेरी जान पहचान में एक आंटी थी, उनकी उम्र लगभग 65 साल की थी,
0: बड़ी प्यारी महिला है। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आंटी अगर आपको जिंदगी में एक मौका मिले, मैंने आंटी जी से पूछा, आंटी जी अगर आपको जिंदगी में आप कोई भी काम कर सकें तो आप क्या करेंगी? उन्होंने बिना सोचे कि पता है प्राची क्या कहा?
1: क्या कहा खुशी जी?
0: मैं डांस सीखूंगी। मैंने कहा अरे वाह, तो अभी सीख लीजिए।
1: तो वो क्या बोली खुशी जी?
0: तो हंसकर बोली, अब मेरी उम्र थोड़ी है डांस सीखने की।
1: तो आपने उनसे क्या कहा?
0: मैंने आंटी जी से कहा, आंटी जी डांस सीखने के लिए उम्र चाहिए या पैर? वो बोली पैर। मैंने कहा तो फिर समस्या क्या है? हल्की हंसी। और सच बताऊं
1: दोस्तों, वो इस बात पर हंसने लगी और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब वो डांस क्लास ज्वाइन करेंगी। पहले दिन तो उन्हें बहुत डर लग रहा था, उनसे छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं जो थी, उन्हें लगा सब उन्हें देख रहे हैं।
0: लेकिन कुछ दिन बाद वही आंटी सबसे आगे खड़ी होकर डांस कर रही थी प्राची, पता है। और उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया, बोली बेटा पता है मैं डांस करते हुए अपनी उम्र भूल जाती हूँ। और दोस्तों बस यही तो जिंदगी है, जब कोई काम करते हुए हमें अपनी उम्र याद ना रहे
1: तो समझिए दोस्तों कि आप सच में जी रहे हैं।
0: वाह ये बात तो बहुत अच्छी लगी,
1: क्योंकि दोस्तों हम उम्र को अक्सर एक नंबर समझ लेते हैं कि मैं 50 का हो गया हूँ, या मैं 50 की हो गई हूँ, 60 का हो गया हूँ, 70 का हो गया हूँ, तो हम सोचते हैं आप क्या करेंगे, अब तो बच्चे सीख जाए। दोस्तों बच्चों को तो आगे बढ़ाइए, साथ में जो आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा है उसका भी थोड़ा ख्याल करिए दोस्तों।
0: लेकिन मेरा मानना है प्राची, उम्र ना कैलेंडर पर लिखी होती है, उत्साह दिल में होता है।
1: बिल्कुल,
0: और कभी कभी हमें अपने बच्चों से भी ये सुनने को मिलता है, मम्मी अब रहने दो, पापा अब आपकी उम्र नहीं है, दादी अब आराम भी करेंगे और सपना भी पूरा करेंगे।
1: जी हाँ दोस्तों, तो इसी बात पर मुझे एक बहुत ही प्यारी शायरी याद आ रही है।
0: इरशाद इरशाद,
1: राहों में उम्र की दीवार मत रखना, दोस्तों राहों में उम्र की दीवार मत रखना, दिल में कोई सपना बेकार मत रखना, जो करना है आज ही कर डालो, जो करना है आज ही कर डालो, कल का क्या भरोसा इंतजार मत रखना।
0: वाह वाह वाह क्या बात है प्राची। और एक बात मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी, अगर आपने जिंदगी में कभी कोई सपना देखा था और वो सपना आज भी कहीं आपके दिल में पड़ा है, उसे निकालिए, उससे बात कीजिए
1: और दोस्तों उससे पूछिए, क्यों भाई अभी भी मेरे साथ चलोगे? मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों वो सपना आपसे कहेगा, हाँ मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, आप ही आ रहे थे।
0: और जरूरी नहीं कि सपना बहुत बड़ा हो, सपना ये भी तो हो सकता है, मैं रोज सुबह पार्क में जाकर वॉक करूँगी, एक्सरसाइज करूंगी और फिर आकर किताब पढ़ूंगी। मैं हारमोनियम सीखूंगी।
1: जी हाँ दोस्तों, और हारमोनियम सीखने का सपना तो मेरा और खुशी दोनों का है।
0: मुझे तो आता भी प्ले करना, पता है प्राची, मैंने आपको सुनाया भी था ना।
1: हाँ आपने तो मुझे सुनाया है, पर मेरा ये सपना तो अभी बहुत ही दूर है मुझसे। मैं बहुत जल्दी हारमोनियम बजाना सीखूंगी।
0: टेंशन मत लो, मैं आपके पास हूँ ना, तो समझो आपका ड्रीम्स भी आप ही के पास है।
1: ओह थैंक यू सो मच खुशी जी,
0: मोस्ट वेलकम।
1: मैं अपनी किसी पुरानी सहेली से मिलूंगी, ऐसे भी सपने होते हैं। मैं बस जिंदगी में पहली बार अपने मन की सुनूंगी। कुछ लोगों का तो दोस्तों ये भी सपना होता है, जिंदगी बीत जाती है पर हम अपने सपनों को नहीं जी पाते। पर दोस्तों अपने लिए टाइम निकालिए, अपने लिए वक्त निकालिए, अपने आप के लिए टाइम निकालिए और अपने सपनों के लिए टाइम निकालिए, और इसे पूरा करने के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है।
0: कभी कभी हम दूसरों के सपने पूरे करते करते अपना सपना ही भूल जाते हैं। बच्चों को पढ़ाया, उनकी शादी की, घर बनाया, परिवार संभाला, सबके लिए खड़े रहे। अगर जिंदगी आपसे कह रही है थोड़ा सा अपने लिए भी जी लो, तो इसमें गलत क्या है, बिल्कुल नहीं ना।
1: बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों अब हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का सवाल हमारे सभी श्रोताओं से है कि अगर उम्र की कोई सीमा ना हो तो आप कौन कौन सा सपना पूरा करना चाहेंगे,
0: सोचिए और जरूर बताइएगा हमें।
1: दोस्तों आप में बताइए एफएम मुरादाबाद 89.6 के मैजिकल नंबर 9837896 पर, क्योंकि हो सकता है आपका सपना सुनकर किसी दूसरे इंसान को भी अपने सपने पूरा करने की हिम्मत मिल जाए।
0: और जाते जाते बस इतना ही याद रखिए, सफेद बालों से सपने सफेद नहीं होते, सफेद बालों से सपने सफेद नहीं होते, उम्र बढ़ने से अरमान कम नहीं होते, दिल में अगर जज्बा जिंदा है अभी तो जिंदगी के खूबसूरत दिन खत्म नहीं होते।
1: जी हाँ दोस्तों, उम्र चाहे 20 हो, 40 हो, 60 हो या 80, सपने देखने के लिए दिल चाहिए दोस्तों, उम्र नहीं। तो आज से ही अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कीजिए, शायद वो आपका इंतजार कर रहे हो।
0: तो अपने उस पुराने सपने को आवाज दीजिए, शायद वो आज भी आपका इंतजार कर रहा हो।
1: जी दोस्तों, बहुत ज्यादा मत सोचिएगा क्योंकि सपनों की भी आदत खराब होती है, जितना देर करवाओ उतना नाराज हो जाते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ है
0: आरजी खुशी,
1: और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, जहाँ बातें कानों तक नहीं दिल तक पहुँचती है।
0: एग्जैक्टली राइट। और दोस्तों हम मिलेंगे फिर अगले कार्यक्रम में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए, चिपके रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए हमारी तरह।
1: हाँ दोस्तों
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। और दोस्तों, ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी। और अभी आपने सुना ये बेहतरीन सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी से, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। वैसे हमारा जो रेडियो का ये माइक है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब भी हम इसकी तरफ आते हैं और इसके सामने हम बात करते हैं तो एक अलग ही एनर्जी आती है एंड पॉजिटिविटी आती है, और बात करना अपने आप में बहुत स्पेशल हो जाता है। इस माइक को देखते हैं तो अंदर से बहुत खुशी फील होती है, क्योंकि आप सबसे जुड़ने का मौका मिलता है, और यही तो प्यारा माइक है जो आप तक हमें जोड़ता है। दिल से दिल तक का ये शो ब्यूटीफुल तैयार है आप सभी के लिए, और आप भी तैयार हो जाइए इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको बताती हूँ एवरीवन। आपको हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 98-378-96-896 98-378-96-896। और चलिए अब बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हेलो फरमाइश जी, वेरी गुड आफ्टरनून सर, क्या नाम है आपका?
1: मैम शेरपुर मार्केट से सालिम अंसारी बात कर रही हूँ।
0: जी बताएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बढ़िया बढ़िया, और आप सुनाइए, आप क्या हाल चाल है?
0: हाँ जी, हम तो बहुत ही अच्छे हैं, और आपके पीछे बैकग्राउंड में बड़ा शोर हो रहा है, बच्चों की बहुत आवाजें आ रही हैं।
1: बच्चे खेल रहे हैं पास में।
0: अच्छा अच्छा, ओके जी, बताएगा सर क्या, ये पहले बताएगा आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
1: मैम मौसम कभी बादल हो जाता है, कभी धूप रहती है।
0: अच्छा,
1: और हवा भी अच्छी चल रही है।
0: अच्छा, ठंडी हवाएं चल रही। बताएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं सर?
1: हमारी जीत सिंह के बारे में सुनिए, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं।
0: अच्छा ठीक है, सुनवाते हैं गीत आपको खूबसूरत सा।
1: डेडिकेट करते हैं मैम।
0: हाँ जी बताएगा।
1: मुस्कान एंड रोहानी और उवैस खान।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं गीत, आप इंजॉय कीजिएगा। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं सलीम अंसारी जी की रिक्वेस्ट पर ये खूबसूरत सा गीत, अरिजीत सिंह जी की खूबसूरत सी आवाज। आप भी कॉल लगाएगा और सुनती जाइए अपनी पसंद का गीत, और ये मौका आपको मिला है तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक अरिजीत सिंह जी की आवाज में। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, क्या हुआ? नमस्कार खुशी मैम।
0: जी आपको भी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: जिला रामपुर रिहान बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा रिहान जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है बस सर, जुकाम हो रही है बस, रात को वैसे भी ठंड जुकाम तो यही हो रही है बस। क्या कर रहे हैं?
0: अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, बताइएगा। हाँ जी हाँ जी, मौसम बदला, अब मौसम में बदलाव आ गया है। आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है सर, क्या फरमाइश है आपकी?
1: आज गाना सुनना है मैम खुशी मैम, इश्क करो कर दर्द मिलेगा, दर्द नहीं मिला तरस आएगा।
0: अच्छा ठीक है, ये सुनवाते हैं आपको गीत
1: अपनी फैमिली के साथ।
0: हाँ जी बिल्कुल, आप अपने परिवार के साथ इस गाने को सुनिएगा। जी तो चलिए श्रोताओ सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत। और आप भी सुनना चाहते हैं कोई अपने पसंद का गाना राइट नाउ, तो फटाफट से कॉल कीजिएगा आप। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी हूँ स्टार्जी खुशी। और वक्त हुआ है अभी 3:20।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत कुमार सानू, उदित नारायण जी और साथ में शारिका कपूर की आवाज़ में। एंड ये प्यारा सा गीत, अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो
1: हेलो,
0: फरमाइश, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अब्दुल्ला है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: चक्कर के मिलक बार।
0: ओके, बताएगा क्या करते हैं आप?
1: मैं घर रहता हूँ।
0: अच्छा, स्टडी कंप्लीट कर ली है आपने? ओके, बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हो आप?
1: मैं गाना सुनना चाहता हूँ।
0: यस, बताइएगा।
1: फिल्म का नाम है कॉकटेल टू।
0: हाँ,
1: उसका गाना है अभिजीत सिंह की आवाज में।
0: ओके, ठीक है, सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और साथ में सुनिधि चौहान जी की आवाज़ में ट्रैक आपकी पसंद का। आपने कॉल किया उसके लिए शुक्रिया। एवरीवन, आप भी कॉल कीजिए जल्दी से अगर आप चाहते हैं अपना फेवरेट गाना चल जाए। और सफ़र ना सुहाना बन जाता है जब अपना फेवरेट गाना कार में बजता है।

0: दोस्तों अभी आपने सुनाई ये अमेजिंग ट्रैक और हमारे साथ में हमारे नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके क्या हाल
0: है? जी मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। अपना नाम बताइएगा और कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: गांधी समाधि रोड रामपुर से आगे रफ्तार खान से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए।
0: हाँ जी हम भी बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। बताइएगा आज कॉल किया है आपने, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मूवी का नाम है परिवार।
0: हाँ
1: वो गाने के बोले खुशी की वो रात आ गई।
0: अच्छा, और ये गाना किनके साथ सुनना चाहते हैं आप?
1: ये गाना सुनना चाहेंगे मेरी वाइफ राजिया खान, सिमरन खान, मसूर हुसैन, नताली करीम, राशिद अली, शफी अहमद अंसारी, मिराज अंसारी, शहनाज बाबू अंसारी, यही सब सुनना चाहेंगे। अयूब खान।
0: ओके तो ठीक है सर, सुनवाते हैं सभी के साथ ये खूबसूरत सा गीत।
1: शुक्रिया।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा गीत। और अभी सुनना चाहते हैं ना कोई गाना अपने पसंद का, तो आप जल्दी से कॉल कीजिएगा क्योंकि ये शो सिर्फ आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के आप कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी आपके साथ है और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गीत फ्रॉम द मूवी धरती कहे पुकार की। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है आज मैम। हेलो फरमाइश। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका जी? बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मंजोली से बात कर रही हूँ। बताइएगा मैम कैसे हैं आप और परिवार में सब ठीक है आपके यहाँ पर? जी बताइएगा कैसा मौसम है बाहर का अभी? अच्छा धूप नहीं कर रही है। बताइएगा आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी? अच्छा ट्रैक सुनना चाहती हैं आप, ये गलियां ये चौबारा, राइट? ठीक है मैम सुनवा देते हैं, आप आराम से इस गाने को सुनिएगा जी। तो चलिए एवरीवन प्रेम रोग से प्यारा सा गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी कॉल लगाइएगा

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, एफएम मुरादाबाद 89.6 पर सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम, और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। दोस्तों, वक्त हुआ है 3:49, और अभी आपने सुना है खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज में फ्रॉम द मूवी प्रेम रोग से। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: पार्वती
0: जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप मैम? बताइएगा कैसी हैं आप?
1: ठीक है
0: जी, बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: धड़कन मूवी का गाना सुनना
0: चाहते हैं। धड़कन फिल्म का कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: तुम दिल की
0: धड़कन। अच्छा, ठीक है, सुनवाते हैं गाना मैम आपको। आप इंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए एवरीवन, तुम दिल की धड़कन हो ये ट्रैक सुन लेते हैं। अमीर सिंह मूवी भी है और गाना भी बहुत ही प्यारा है, मिलकर एंजॉय करते हैं।

0: आप भी चाहते हैं कि जल्दी आपका भी कॉल लग जाए और आप भी अपने पसंद का गाना सुने, तो देर किस बात की है, जल्दी से फोन उठाइए और हमें कॉल लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: गोपाल ओझा, ग्राम कस्बा से, जलपुना से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बढ़िया है, ठीक ठाक है।
0: जी बताइएगा।
1: मैं सोचा हूँ पहली बार कॉल लगा मेरा तो।
0: अच्छा, आज फर्स्ट टाइम कॉल लगाया आपका?
1: जी
0: जी बताइएगा, आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: आंदोलन फिल्म का सुनना है, कुमार सानू वाले का, इनकी आवाज में।
0: ओके।
1: हाँ, वो वही आंख नम ये दिल मुस्कुराया, वही साथ।
0: अच्छा, ये गाना आप किनके साथ सुनना चाहते हैं, बताइए जरा।
1: दोस्त है हमारे सुनील साहू जी, जीतन साहू, जीतन भागड़ है, ज्योति साहू जी है, इनके साथ।
0: अच्छा ठीक है, आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत। आपने हमें कॉल किया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए विवान सुन लेते हैं गोपाल जी की पसंद पर ये गाना खूबसूरत सा, और आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद का गाना ना, कोई भी जो गाने वही ना जो दिल चाहे और आपका मन है कोई प्यारा से गाने सुनने का, तो फटाफट से कॉल लगाइएगा। मैं इंतजार कर रही हूँ और अभी फिलहाल सुनिएगा ये खूबसूरत सा गीत।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: दोस्तों स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और हमारे साथ नए लिसनर तो कनेक्ट हो ही रहे हैं। एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ एवरीवन आपसे, अगर आप भी चाहते हैं कि आप एफएम मुरादाबाद सुने कहीं बाहर सिटी में अगर जा रहे हैं, तो हम एफएम मुरादाबाद से दूर नहीं होना चाहते, हम चाहते हैं कि इस शो को सुने। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, अगर आप मुरादाबाद सिटी से बाहर जाना चाहते हैं और एफएम मुरादाबाद से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक सिंपल से काम करना है। प्ले स्टोर पर जाना है और एफएम मुरादाबाद 89.6 की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है और फिर आप जहाँ चाहें वहाँ पर एफएम मुरादाबाद सुन सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नमस्ते।
0: आपको भी नमस्कार। प्रमोद जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब? जी मेहरबानी तो ऊपर वाले की कृपा है, हम सब उन्हीं की कृपा से एकदम स्वस्थ हैं, ठीक हैं। बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मेरा नाम है लोहा।
0: हाँ जी।
1: और गाने की बोल है पतली कमर लंबे बाल।
0: ओ ठीक है, ये गाना आपको सुनवा देते हैं। जी सर, तो चलिए अभी फर्स्ट सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक और हम लौटकर वापस आते हैं। तब तक आप भी ट्राई कीजिए, आपका भी कॉल लग जाएगा। और ये खूबसूरत गाना आप सुनने वाले हैं अनुराधा पौडवाल जी साथ में कविता कृष्णमूर्ति जी की खूबसूरत सी आवाज़, ये खूबसूरत सा गाना।

0: फ्रेंड गुड आफ्टरनून नहीं बोलेंगे हम, गुड इवनिंग बोलेंगे। मुझे मालूम है 4:11 हो गए हैं दोस्तों, और आपको पता है कि अभी आपके पास भी बहुत सारा टाइम है। आप मुझे कॉल लगा सकते हैं बिना किसी देरी के। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, ये हमारा मोबाइल नंबर है जिस पर आपको कॉल लगाना है। और अभी बात करते हैं अपने अगली कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है राइट नाउ। हेलो फरमाइश,
1: मेरे प्यारे प्यारे मैम का प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मैं ग्राम गुलौर जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ।
0: बताइएगा तनुश्री, कैसे हैं आप?
1: मैम मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: मैम आपको भी और हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामना।
0: महाराष्ट्र में तो ये पर्व बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, और वहाँ का उत्सव देखने का तो एक अलग ही नज़ारा है। देश विदेश से भी वहाँ पर लोग आते हैं ना?
1: जी मैम जी, बहुत अच्छा इधर मनाया जाता है त्योहार, मतलब 10 दिन एकदम खुशी हंसी खुशी बीतते है, बहुत बढ़िया मैम लगता है।
0: आप भी जाते हैं? आपकी सोसाइटी में पापा को रखा जाता होगा, व्रजमान किया जाता है, संध्या में मॉर्निंग में आरती होती है?
1: हाँ मैम, बहुत हमारे यहाँ तो ऐसे पंडाल, मतलब 4-5 मैम ऐसे पंडाल है जो हमारे गाँव में 4-5 जगह गणपति बप्पा बिठाए जाते हैं बड़े बड़े।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तनुश्री आप गाते भी हो है ना, आपने मुझे बताया था।
1: जी मैम।
0: हाँ तो आज कुछ गाकर सुनाइए, दो लाइनें।
1: मैम आपने तो मेरे दिल की बात चुरा ली।
0: सच में? ओहो। हाँ बिल्कुल सुनाइए सुनाइए।
1: और फिल्म का नाम है मैम अग्नि पथ, उसमें गाना है।
0: हाँ
1: वासी गणेश राधे, वासी गणेश राधे,

धरती अंबर सितारे उसकी रखवाले प्यारे।

0: थोड़ी सी लिरिक्स हुए हैं मिस्टेक, बट बहुत अच्छा आपने गाया तनुश्री. तो ये प्यारा सा ट्रैक हम आपको सुनवाते हैं.
1: ओके मैम, बाय
0: बाय, टेक केयर तनु. और नेक्स्ट टाइम जब कॉल लगाओ फिर से एक अच्छा सा गाना गुनगुनाना. ओके तो तनु ने अभी बहुत अच्छा ट्रैक प्ले किया, खुद से सिंगिंग की, गाया, और अभी हम ये गाना सुनवाते हैं फ्रॉम द मूवी अग्निपथ से. तो बिना किसी देरी के सुनते हैं ये अमेजिंग ब्यूटीफुल ट्रैक. और चारों तरफ गणेश जी का ही जयकारा गूंज रहा है, तो हम भी सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत और आप भी सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा. हर गली मोहल्ले हर चौराहे पर खूबसूरत से पंडाल सजे हुए हैं, भव्य पंडाल लगे हुए हैं और सब गणेश जी की भक्ति में डूबे हुए हैं.

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना अग्निपथ से ब्यूटीफुल ट्रैक। अब बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जान लेते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश जी। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बढ़िया।
0: हाँ जी, हम भी बहुत अच्छे हैं, दुआएं आपकी। बताइएगा क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: आज मेरी फरमाइश है, फिल्म का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया है।
0: हाँ जी,
1: गाने पे बोल रहे हैं हम यार हैं तुम्हारी।
0: ओके, बताइएगा रामपुर का मौसम कैसे है सर?
1: मैं रामपुर में नहीं हूँ फिलहाल, मुरादाबाद आया था।
0: अच्छा, ओके, आज मुरादाबाद आए हैं आप?
1: काम कर।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है सर, तो सुनवाते हैं ये गाना, आपको एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए अभी फर्स्ट सुनते हैं अयूब जी की पसंद पर ये अमेजिंग सा ट्रैक। और आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपके, और अभी आपने सुना ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी हाँ मैंने भी प्यार किया, उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी की आवाज में खूबसूरत गाना। म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम शर्मन जी एंड लिरिक्स थे समीर जी की। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
1: आदरणीय मैडम जी और एफएम मुरादाबाद सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार वाला नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, और साथ में गणेश जी की स्थापना भगवान चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अपना शुभ नाम बताएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बोल रहा हूँ। मैडम जी कैसी है आप?
0: जी मैं तो ठीक हूँ सर, आप बताएगा जबलपुर का मौसम कैसा है?
1: खुला है मौसम, धूप निकली है।
0: अच्छा अच्छा,
1: गर्मी नहीं है मगर है खुला हुआ।
0: जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: गणेश जी के हर जगह पंडाल रखे हुए हैं।
0: हाँ जी, आप भी गए हैं या फिर अभी तक नहीं गए हैं?
1: यहाँ भी घर में रखे जाते हैं, दस दिन पूजा होती सुबह शाम।
0: अच्छा,
1: आरती वगैरह करते, बड़े बड़े पंडाल भी देखने जाते हैं, पंचमी भी जाएंगे।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, आनंद लेना चाहिए। मैंने कहा भक्ति का आनंद लेना चाहिए।
1: जी
0: हाँ जी सर, बताइएगा शुभ जी, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: एक दूजे के लिए गाना लता जी की आवाज है, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ये गाना आपको। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। और एवरीवन, जब आप कॉल करें मुझे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज अपने बैकग्राउंड में ना आप ज़्यादा शोर शराबा ना करें, उससे ना क्या होता है फिर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पाती, आप क्या कहना चाह रहे हैं समझने में थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो जब भी कॉल करें तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखो, बाकी मुझे बेफिक्र होकर कॉल करूँ। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837 8968 96, और सुनिएगा एक खूबसूरत सा गीत।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: तो दोस्तों अभी आपने सुनाई अमेजिंग सा ट्रैक और इस गाने की रिक्वेस्ट में कॉल करके बताई थी वंदना शर्मा मैम ने अमरोहा से, और नेटवर्क इशू की वजह से उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं मैम आपका गाना तो हम प्ले कर देते हैं, इतनी शिद्दत के साथ आपने कॉल किया, इतनी मेहनत से कॉल लगता है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर से, सिसरौन जिला, उड़ीसा मध्य प्रदेश।
0: जी बताइएगा कैसे हैं आप?
1: बस बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक है सर, बताइएगा कैसा मौसम है एमपी का?
1: जी बस मौसम अच्छा है, धूप खिली हुई है, बादल छाए हैं हल्के फुल्के।
0: अच्छा अच्छा बताइएगा आज क्या सुनेंगे आप?
1: और आपके साथ?
0: हमारे इधर भी कभी बादल होते हैं तो कभी धूप हो जाती है।
1: जी जी ऐसा ही लगा हुआ है।
0: हाँ जी हाँ जी बताइएगा सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
1: गुनहगार से सुना देना, कुमार सानू का गाया हुआ गीत कुछ भी।
0: अच्छा ठीक है सर, सुनवा देते हैं आपको। कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका,
1: धन्यवाद आपका,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए रिवर्स सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत और मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी प्रयास कीजिए, आपका भी कॉल जल्दी से लग जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हाँ स्माइल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए समय कितने जल्दी फास्ट गुजर रहा है ना। समय हुआ है 4:51 और ये 2 घंटे का सफर कैसे कंप्लीट हो जाता है हमें भी नहीं पता चलता है और आपको भी नहीं पता चलता है, क्योंकि इस सफर में ना कुछ आपकी बातें होती हैं, कुछ हमारी बातें होती हैं और गाने आपके पसंद के होते हैं जो सबके दिलों को मोह लेते हैं। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: अनूप राजपूत, ग्राम उपरेगा, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ। दीदी
0: जी बताइएगा, क्या नाम है आपका? सर
1: अनूप कुमार।
0: बताइएगा कैसे हैं आप? सर
1: बढ़िया है, बढ़िया।
0: अच्छी बात है, अच्छा रहना चाहिए। बताइएगा कैसा मौसम है आपकी साइड से?
1: अब मौसम तो ठंडा, बारिश हो गई थी अभी हल्की सी।
0: अच्छा,
1: वो ठंडा।

0: मौसम बड़ा है।
1: बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
0: दिलवाले मूवी का है।
1: दिलवाले फिल्म का कोई भी गाना सुनवा दें आपको?
0: जी।
1: ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया। तो चलिए विवान सुनते हैं कुमार सानू जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गाना। कितने कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें। तो इस खूबसूरत गाने को सुन लेते हैं और थोड़ी सी तारीफ आप भी मैडम जी की किया करो। सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए इतना कुछ संभालती हैं, घर भी फैमिली भी है ना, और यू नो, आपका भी ख्याल रखती हैं अच्छे से। तो आज की इवनिंग ना आप भी उनका थोड़ा सा ख्याल करो। घर जा रहे हैं तो कुछ मैम के लिए लेकर जाइए। अब आप सोच रहे हैं कि क्या लेकर जाएं। देखिए आप मैम के दिल की बातें जानते हैं तो आपको पता होगा कि मैम को क्या पसंद है, जिससे वो हैप्पी हो जाए। अरे आप चॉकलेट भी लेकर जाओगे ना तो भी वो खुश हो जाएंगी।

0: देखिए दोस्तों, प्यारे तो आप हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, नो डाउट, क्योंकि आप जैसे इतने प्यारे प्यारे लिसनर हमारे साथ जुड़ते हैं और ऊपर वाले सभी को स्पेशल बनाते हैं। हर इंसान खूबसूरत है, डिपेंड करता है कि आपका नजरिया कैसा है। कहते हैं ना कि जब इंसान का नजरिया खूबसूरत होता है ना, तो उसे सारी दुनिया खूबसूरत नजर आती है। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। जी आपको भी नमस्कार सर, बताइएगा कैसे हैं आप।
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ। आपको गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं, और तीजा की भी।
0: सेम टू यू सर।
1: और मैं दिशा बढ़ते हुए मनोरंजन के साथ अपने पसंद के गीत बता रहा हूँ। फिल्म का नाम है हमसे बढ़कर कौन, और गीत की मुझे देवा देवा गणेश चतुर्थी देवा तुमसे बढ़कर कौन, गायक मोहम्मद रफी, सलीम सिंह और आशा भोसले। सबसे पहले गीत आपको फिर मैं ये देखता हूँ, पूरे घर श्रोता को, आप रेडियो मुरादाबाद में दिए सभी लोगों को, आप दूरदर्शन के रिश्तेदारों और शैलियों को, रेडियो मुरादाबाद में दिए सभी भाई स्टाफ कर्मचारियों को, हेलो श्रोताओं को, पूरे भारत श्रोता को दीजिए मैडम। इसी गीत को पूरा सुना दीजिएगा मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया। सुनवाते हैं आपके पसंद का ये खूबसूरत सा गीत। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, और इसी गीत के साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं मुलाकात करूंगी आपसे टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, कीप स्माइलिंग एवरीवन।

0: के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार के आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, जलदल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित सफल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उल्लेखनीय है। नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र को बड़ी उपलब्धि बताया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर AI तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यह समझौता हुआ। इससे पहले इस वर्ष जून में गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा और शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
5: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
4: UPI-TSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: और आज हमारी कहानी पहुंची है उस शहर में जिसकी सुबह गंगा की लहरों से होती है, जिसकी गलियों में सदियों की संस्कृति बसती है और जिसकी पहचान सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है।
0: जी हाँ, आज बात होगी काशी की, हमारे बनारस की, हमारे वाराणसी की।
1: एक ऐसा शहर जहाँ परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती दिखाई देती है। एक तरफ गंगा के घाट, मंदिरों की घंटियाँ और बनारसी संस्कृति की मिठास,
0: तो दूसरी तरफ सड़क, बिजली, आवास, रोजगार और जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से बदलती हुई तस्वीर।
1: क्योंकि विकास सिर्फ बड़े शहरों की ऊंची इमारतों का नाम नहीं,
0: विकास तब मायने रखता है जब उसकी रोशनी गांव के उस घर तक पहुंचे जहां एक माँ अपने बच्चे को बेहतर भविष्य के लिए दिन रात संघर्ष करती है।
1: और ऐसी ही एक कहानी है वाराणसी के छितौना गांव की।
0: छितौना की रहने वाली जड़ावती देवी, एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली जड़ावती देवी ने जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत देखी, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ।
1: सीमित साधन, घर की जिम्मेदारियां और बच्चों की पढ़ाई का सपना, जड़ावती देवी ने संघर्ष किया, मेहनत की और अपने बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश की।
0: क्योंकि माँ के लिए बच्चों की पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वो उसके सपनों की वो सीढ़ी होती है जिस पर चढ़कर उसके बच्चे उससे बेहतर जिंदगी जी सकें।
1: और आज जब सरकार की योजनाओं का लाभ ऐसी जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचता है तो उनके संघर्ष में एक नया सहारा जुड़ता है।
0: जड़ावती देवी को आवास की सुविधा मिली, परिवार को राशन कार्ड की सुविधा मिली और मनरेगा का जॉब कार्ड भी मिला।
1: यानी कि सिर पर छत का सहारा, परिवार के लिए खाद्यान्न सुरक्षा का सहारा और रोजगार के अवसर से जुड़ने का एक माध्यम।
0: किसी बड़े शहर में बैठकर ये सुविधाएं शायद सिर्फ योजनाओं के नाम लगे,
1: लेकिन जड़ावती देवी जैसे परिवार के लिए यही सुविधाएं जिंदगी की मुश्किल राह को थोड़ा आसान बनाने वाली उम्मीद बनती है। दोस्तों, गांव की मिट्टी की खुशबू अलग ही होती है, पर फिलहाल आज हम गांव की मिट्टी की बात नहीं करने आए हैं, आज हम बात करने आए हैं विकास की। प्रदेश भर में जो विकास की लहर चल रही है उसकी छवि जो है बनारस में भी देखने को मिल रही है। बनारस और इससे संबंधित जो भी गांव है यहां पर भी विकास की जो छटा है वो बहुत अच्छे से छा रही है। और दोस्तों, विकास से जुड़ी बातें करने के लिए हम आपके साथ विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में तो जुड़ते ही हैं, और उसी कड़ी में आज हम आ चुके हैं वाराणसी के एक गांव में एक लाभार्थी से बात करने। इन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए।
2: हमारा नाम जड़ावती देवी है।
1: घर में कौन कौन है आप?
2: हमारा बस माई है ना, एक लड़का बस, और हम हैं, तीन लोग बस हैं।
1: और क्या करती हैं आप?
2: बस खाना बनाते हैं, सरकारी काम मिला है, बस वही।
1: और बेटा क्या करता है?
2: अभी कुछ नहीं।
1: तो जड़ावती जी, जो सरकार की विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं में से आपको किन किन परियोजनाओं का लाभ मिला है?
2: बस शौचालय, आवास, हाँ, आयुष्मान कार्ड बस बना है।
1: तो आपको, जैसे कि आपका घर नहीं था पहले, तो अब
2: पहले मड़ई था, इस पर ये जो बना है इस पर मड़ई था, अब उधर भी एक था, बस यही था
1: पहले, कच्चा घर।
2: हाँ, एकदम।
1: तो अब आवास के तहत जो आपको लाभ मिला है उससे अभी क्या क्या चीजें बनी है आपके घर?
2: पहले बहुत दिक्कत हुआ था, बस छत ढला है, आरी ढला है, अभी अब जाके जब आवास मिला है तब तो ठीक थी, सब कुछ आरी दीवार हो गया है, छत भी बन गया है और सब बाकी है अभी करने के लिए।
1: पहले आप कच्चे घर में रहती थी।
2: हाँ।
1: तो अब क्या है कि अब आपके पास पक्का मकान हो गया है, टीन शेड लग गया है।
2: हाँ।
1: और जैसे कि आपने बकरी भी पाली है तो बकरी को भी रखने में उसमें आपको आसानी होती है।
2: हाँ।
1: और ये बताइए जड़ावती जी कि जैसे अब शौचालय बन गया है आपके यहाँ, तो शौचालय बनने से क्या फायदा है?
2: बहुत फायदा है, उतरे खुले में जाना पड़ता है, हमारी माँ को ज्यादा दिक्कत होती है,
1: बिल्कुल। और शौचालय बनने से क्या होता है कि शौचालय जो है किसी भी औरत के सम्मान या उनकी मर्यादा से भी संबंधित, उसको हम देखते हैं समाज में, लोग जो है खुले में शौच में जाते थे, तो उससे क्या है कि कई सारी बीमारियों का भी खतरा रहता था, बीमारियों का भी खतरा रहता था, या वृद्ध जन है आपके घर में, एजेड है आपकी जो माता जी है, तो उनको भी अब सुविधा रहती है और आपको भी सुविधा रहती है।
2: पहले हम मड़ई में रहते थे, आवास मिल गया है, अब मकान बन गया है, शौचालय है, राशन कार्ड भी है। मोदी को और योगी को हमारा धन्यवाद।
0: आपने सुना, ये सिर्फ एक लाभार्थी की आवाज नहीं है,
1: ये उस माँ की आवाज है जिसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष किया और अब सरकारी योजनाओं के जरिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
0: लेकिन किसी योजना का लाभ जब गांव के परिवारों तक पहुंचता है तो उसके पीछे स्थानीय स्तर पर भी कई लोगों की भूमिका होती है।
1: तो आइए जानते हैं चितौना गाँव में विकास और सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का क्या कहना है। दोस्तों, असली विकास वो होता है जो सबको लेके चले, यानी कि समावेश करके चले। और वाराणसी में भी जो विकास की लहर है पूरे उत्तर प्रदेश की, वो दिखाई दे रही है। और इसी लहर के चलते आज हम आ पहुंचे हैं वाराणसी के छितौना गांव में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास शख्स से जो कि इस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो चलिए अपनी बातचीत को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यहां पर क्या क्या कार्य हुए हैं विकास से संबंधित। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं, आप अपना नाम बताइए। आलोक जी, इस ग्राम में जो है कई तरीके के विकास परियोजनाओं पे काम हो रहा होगा, तो अभी फिलहाल में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं और किस प्रकार से जो है उसका लाभ लोगों को दिया जा रहा है?
3: कच्चे रोडों को बनवाया जा रहा है, जो पहले से बने हुए रोडों उन पे कंक्रीट डाला जा रहा है, खड़पे लगाए जा रहे हैं और डमरू लगाया जा रहा है, और जहाँ जहाँ पानी लग रहा है उसका निस्तारण के लिए नालियाँ लगाई जा रही हैं, और जो इनके पास घर नहीं उनके लिए मुख्यमंत्री आवास, विधवा और विकलांगों के लिए ऑलरेडी मिल चुका है 12-13 लोगों को मेरे गांव में, और कुछ लोगों का जो अभी लिस्ट में नाम गया है, जीरो प्रॉपर्टी वालों का भी गया है जिनके पास एकदम ही कुछ नहीं है।
1: यदि कोई आवास के लिए अप्लाई करना चाहता है तो किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं या क्या उसका प्रोसेस होता है?
3: उसमें जैसे कि वो पात्र होना चाहिए, उसके पास 6 फीट से ऊपर पक्की दीवार नहीं होनी चाहिए, प्लस झोपड़ी टाइप रहना चाहिए, ये न कि वो झोपड़ी बनाकर दिखाए, झोपड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि 2-3 बार उसकी जियो टैगिंग होती है, वहाँ से अधिकारी आते हैं जांच करते हैं, तब उनको लाभार्थी को लाभ दिया जाता है।
1: कोई तरीके की ऐसे आपको समस्या भी देखने को मिलती है कि लोगों को अलॉट करने में या इस प्रोसेस में कोई तरीके की समस्या जो लोगों को आ रही हो या आपको आ रही हो अपने लेवल पर?
3: जैसे क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग दूसरे के घरों में रहते हैं और वो पक्का होता है, और तो उनसे ये मांगा जाता है कि आप जिसके मकान में रह रहे हैं या फिर आप अपने भाई के ही मकान में रह रहे हैं तो उनसे लिखित ले लें एक स्टाम्प पे कि वो मेरा घर है, मैं इनको भाड़े पे या उनके रहने के लिए दिया हूँ, तब मैं अलॉट कर पाता हूँ, इसी वजह से उनको नहीं मिल पाता है।
1: मतलब कि दस्तावेजों से संबंधित जो है कुछ दिक्कतें ऐसी आती हैं। और अभी जो है कई तरीके की परियोजनाओं का लाभ जो है यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, हमने देखा है, जिसमें से कि मुख्य तौर से मुख्यमंत्री आवास योजना और राशन कार्ड की सुविधा और मनरेगा का जो जॉब कार्ड होता है उससे संबंधित भी चीजें हैं। तो लक्ष्य आपका एकदम साफ है कि बाकी जो आगे भी है, जो डेवलपमेंट की चीजें हैं या विकास कार्य आपका निरंतर चलता रहेगा, और ग्राउंड लेवल पर चीजें करने के लिए साथियों बहुत जरूरी होता है नेतृत्व। जब ऊपर बैठे लोगों का नेतृत्व हमें अच्छा मिलता है तभी विकास कार्य की जो छवि है वो ग्राउंड लेवल पर आपको दिख पाती है अच्छे तरीके से। और आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ
3: मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद बोलना चाहते हैं, इसी तरह करते रहें हमारे गांव का विकास, उनको मेरे तरफ से धन्यवाद।
0: ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की बातों से साफ है कि गांव के स्तर पर विकास की तस्वीर सिर्फ सुविधाओं के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं की पहुंच से भी जुड़ी है।
1: लेकिन छितौना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
0: हमारी दूसरी कहानी है आशिमा बेगम की, 2 बच्चों की अम्मा और जीवन की कठिन परिस्थितियों के बीच अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालती हुई एक सशक्त महिला।
1: आशिमा बेगम के पति भी नहीं है। ऐसे में दो बच्चों की परवरिश और परिवार की जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं रहा होगा।
0: लेकिन मुश्किल हालात के सामने खड़े होकर आगे बढ़ना ही तो जिंदगी का दूसरा नाम है।
1: आशिमा बेगम को भी आवास की सुविधा, राशन कार्ड और मनरेगा का जॉब कार्ड मिला।
0: यानी एक महिला, दो बच्चे और चुनौतियों से भरी हुई जिंदगी, लेकिन अब परिवार के पास एक सुरक्षित आवास, खाद्यान्न सुविधा से जुड़ाव और रोजगार के अवसर से जुड़ने का रास्ता है।
1: दोस्तों, विकास की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी है और वही लहर अब हमें देखने को मिल रही है वाराणसी और उसके आसपास के गांव में भी। और ऐसे ही कुछ विकास की बातें लेकर हम आ पहुंचे हैं वाराणसी के एक गांव में, जहां पर हम एक लाभार्थी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको किस तरीके के लाभ सरकार द्वारा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं गरीबों के कल्याण के लिए या इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए कि अपने लाभार्थी से हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है?
4: आशिमा।
1: और क्या आपके गांव का नाम है?
4: छतौना।
1: क्या करती हैं आशिमा जी?
4: यही मजदूरी का काम, बच्चों के खेत है, आप तो जानते हैं गरीब है।
1: तो जैसे मजदूरी में जो मनरेगा आपका
4: गेहूं धान खाते,
1: तो मनरेगा के तहत आप अपना मजदूरी करती हैं। और परिवार में कौन कौन है?
4: यही दोनों बच्चे हैं।
1: अच्छा, तो स्कूल जाते हैं?
4: हाँ, स्कूल जाते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं दोनों।
1: कितने बड़े बच्चे?
4: एक दिन पाँच में पढ़ते हैं और एक दिन दो में पढ़ते हैं और एक दिन पाँच साल का है। और
1: तो आशिमा जी, आप मुझे बताइए कि जैसे कि आपको जो है, हमें पता चला है कि आवास योजना के तहत लाभ मिला है, तो पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? पहले कैसे रहती थी जब मकान नहीं बना था? तो
4: जैसे कि मैं पहले तो कच्चे में रहती थी, कच्चे के बाद तम्मी जो मजदूरी के बच्चों लोग बना के खिलाते हैं और जो अपने राशन बना के खिलाए हैं। अभी जो है
1: 18-19 साल से आप कच्चे घर में रहती थी। हाँ। फिर उसके बाद जो है, जब आपको आवास मिला है, तो उसके बाद जो पक्के मकान में आप रहने लगी?
4: दो साल हुआ था तो 2 साल हुआ तो ये बना है
1: आपका जो घर है, 2 साल से आप उसमें रह रहे हैं। आशिमा की कहानी हमें एक बात सिखाती है
0: कि जब किसी जरूरतमंद परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है, तो उसका असर सिर्फ कागज पर दर्ज नहीं होता है,
1: उसका असर घर की चौखट पर दिखाई देता है,
0: बच्चों के भविष्य में दिखाई देता है
1: और उस माँ के चेहरे पर दिखाई देता है जो कल की चिंता के बीच आज थोड़ा सुकून महसूस कर पाती है। वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है,
0: ये आस्था है, संस्कृति है और विरासत है।
1: और अब तो ये विकास की नई कहानी भी लिख रहा है।
0: वाराणसी में विकास की तस्वीर आज कई स्तरों पर दिखाई देती है, बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लेकर कनेक्टिविटी, पर्यटन, रोजगार और जन कल्याण तक।
1: और इस विकास यात्रा में गांव और गरीब परिवार पीछे न छूटे, यही किसी भी जन कल्याणकारी व्यवस्था की सबसे बड़ी कसौटी है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विकास के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जरूरतमंद परिवारों तक सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दे रही है।
1: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के रूप में वाराणसी में भी विकास की कई परियोजनाओं और योजनाओं ने शहर की तस्वीर को नई दिशा देने का काम किया है।
0: लेकिन बनारस की असली खूबसूरती सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट में नहीं है,
1: बल्कि उस छोटे से गांव में भी है जहां जड़ावती देवी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखती है,
0: जहां आशिमा बेगम अपने दो बच्चों के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं,
1: और जहां सरकारी योजनाएं उनके संघर्ष में सहारा बनने का काम कर रही हैं।
0: यही है विकास का असली मतलब।
1: जब विकास शहर से गांव तक पहुंचे,
0: जब परियोजनाएं कागज से निकलकर जरूरतमंद परिवारों के घर तक पहुंचे,
1: जब एक माँ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ा और निश्चिंत हो सके,
0: और जब हर परिवार को लगे कि बदलते उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में उसकी भी हिस्सेदारी है,
1: गंगा की लहरों की तरह निरंतर आगे बढ़ती काशी
0: अपनी विरासत को संजोते हुए विकास की नई राह पर बढ़ता वाराणसी
1: और छितौना जैसे गांव में उम्मीद जगाती जन कल्याण की कहानियाँ,
0: यही है नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर।
1: एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां विकास की रफ्तार के साथ जन कल्याण को भी आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: तो ये थी बनारस के छितौना गांव से आई दो परिवारों की कहानी,
1: जड़ावती देवी और आशिमा बेगम की कहानी,
0: संघर्ष की कहानी,
1: हौसले की कहानी
0: और सरकारी योजनाओं से मिली नई उम्मीद की कहानी।
1: आप सुन रहे थे
0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी।
5: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
6: पक्का बनारसी।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
8: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद,

0: मैं हूं आपके साथ आपकी आर्जरीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। टॉक शो में कनेक्ट हो गए हैं जी ढेर सारी बातें करने के लिए। और कहते हैं अपना घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, उसमें जुड़ी होती है उम्मीदें, सपने और पूरी जिंदगी की कमाई। लेकिन सोचिए अगर वही सपना किसी बिल्डर की लापरवाही, देरी या धोखाधड़ी की वजह से अधूरा रह दे तो क्या करें? क्या कानून आपके साथ खड़ा है और एक खरीदार के तौर पर आपके अधिकार आखिर है? तो श्रोताओं आज का प्रोग्राम हमारा बेहद खास होने वाला है क्योंकि जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, किसी बिल्डर प्रोजेक्ट में पैसा लगा चुके हैं या फिर किसी रियल एस्टेट विवाद का सामना कर रहे हैं तो आज की यह बातचीत आपके लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी, जो हमें सारे सवालों के आंसर देने के लिए आज मौजूद हो गए हैं। भाई काफी टाइम के बाद आज कनेक्ट हुए हैं सर, तो और जानेंगे इनसे रियल एस्टेट और बिल्डर विवादों में खरीदारी के कानूनी अधिकार क्या है, किन दस्तावेजों का ध्यान रखना चाहिए और अगर बिल्डर अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो न्याय पाने का सही रास्ता क्या होगा। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। तो सर मैं आपसे ही जानना चाहूंगी आपके बारे में, हमारे श्रोताओं को बताइए जो कि बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं, और बहुत बहुत वेलकम है जी।
1: देखिए मैं पहले तो आपकी कम्युनिटी रेडियो 89.6 FM का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी सीरीज ये लीगल टॉक जो आपने चलाई है। खास तौर पे जो हम अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी बातें जो हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, कुछ लीगल मुद्दे होते हैं जिसकी लोगों को जानकारी नहीं होती है,
2: बिल्कुल,
1: तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम एक तो अवेयरनेस दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं भी अपने श्रोताओं से बड़ा वेट करता हूँ इस प्रोग्राम का कि जल्दी से जल्दी ये वीक आए और आपका लीगल टॉक्स प्रोग्राम में मैं उनको नई जानकारी दे पाऊँ जिससे वो उनको कोई परेशानी है तो जो सजेशन है या जो भी अवेयरनेस है हमारी वो जागरूक बने और जो है अपने अधिकारों को जाने,
2: मतलब वही है जो उनके मन में डाउट है वो क्लियर हो जाता
1: है। जी बिल्कुल, मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और डेली दिनचर्या में जो भी उनका कानूनी अधिकार है उसको वो जान सके।
2: तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रियल एस्टेट में खरीदारी के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है?
1: देखिए खरीदार को समय पर, अधिकतर लोगों का एक सपना होता है कि मैं कोई भी अगर कोई दुकान ले रहा हूँ कहीं किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या कहीं किसी मार्केट में, या मैं एक सपनों का घर बना, तो सबसे बड़ी चीज एक ये होती है कि उसे समय पर उसका कब्जा मिले, पोजीशन मिले उसका। फिर गुणवत्ता, उसका निर्माण कैसा हो रहा है, क्या क्वालिटी यूज हो रही है उसमें, जो पारदर्शी जानकारी मिलनी चाहिए उसको कि भाई अगर हम कोई शॉप या मकान ले रहे हैं तो अधिकतर केसेस में हमारे पास आते हैं कि बिल्डर जो है उन्होंने कोई शॉप या कोई मकान बुक कराया, बाद में वो बिल्डर की तरफ से डिमांड नोटिस निकाल दिया जाता है कि उसमें वो मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे कभी कंज्यूमर का हैरेसमेंट करता है, कभी कोई और चार्जेस का नोटिस दे देते हैं, और एग्रीमेंट के अनुसार जो भी सुविधाएं हैं और कानून के अनुसार जो भी राहत पाने का जो भी अधिकार है, जो भी रेमेडी है आपकी, वो चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए।
2: ये तो सही बात है, क्लियर होगा तभी इंसान आगे बढ़ पाएगा।
1: बिल्कुल।
2: तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि फ्लैट या दुकान खरीदने से पहले क्या क्या जांच करनी चाहिए?
1: देखिए आजकल बहुत प्रलोभन वाले विज्ञापन अखबारों में और सोशल मीडिया साइट्स पे आ रहे हैं कि आप अपने घर बनाए, 1 लाख रुपए में प्लॉट लें, 2 लाख में प्लॉट लें, आप रोड पे भी निकल जाएंगे तो कई ऐसे होर्डिंग्स आपको दिख जाएंगे कि आपके सपनों का घर मात्र 50,000 में, 40,000 में, तो ये सब एक लुभावने विज्ञापन देके जो बिल्डर्स होते हैं वो एक आकर्षक स्कीम्स दिखा के जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है अगर आप कोई भी फ्लैट या दुकान खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बिल्डर की साख देखिए, उसकी गुडविल क्या है मार्केट में, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि उसने सिर्फ होर्डिंग लगा दिया, उसकी कंपनी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं उसका कोई भी जो है लैंड नहीं है, उसके पास लैंड बैंक नहीं है, कुछ नहीं है, और सिर्फ एक विज्ञापन के माध्यम से उसने आपसे पैसे ले लिए और बिल्डर का कुछ अता पता नहीं और वो भाग जाए कहीं। दूसरा ये प्रोजेक्ट की स्वीकृतियां देखें, जो प्रोजेक्ट वो दिखा रहा है अपने विज्ञापन में दिखा रहा है, अपनी जो भी स्कीम आपका उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव आपको बताने आया है, उसका अप्रूवल जो प्राधिकरण है या जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है, जो भी बॉडी है गवर्नमेंट की, वहां से उसका अप्रूवल है या नहीं है, उसके पास भूमि की स्थिति क्या है, उसका लैंड बैंक कितना है, जिस प्रोजेक्ट को वो दिखा रहा है वो वास्तव में उसका मालिक है या नहीं है, एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं, जो उसने शर्तें लिखी हुई हैं, उसको ध्यान से पढ़िए। भुगतान की क्या योजनाएं, क्या स्कीम्स हैं, उसको डीपली आपको चेक करना चाहिए। और रेरा सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में। आपको पता होगा कि रेरा जो एक संस्था है वो बिल्डर्स को, उसको बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन उसमें जरूरी है। रेरा एक कंज्यूमर्स के हित में एक गवर्नमेंट की तरफ से एक जो है संस्था बना दी गई है, उसमें पंजीकरण की जांच अवश्य करें कि बिल्डर रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है।
2: पंजीकरण करवाना बहुत जरूरी है आज के समय में।
1: देखिए वो बिल्डर्स के लिए है कि जो ऑथराइज बिल्डर है वो अगर कोई भी अपना कोई प्रोजेक्ट ला रहा है मार्केट में और कंज्यूमर से वो पैसा उठा रहा है तो उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और रेरा बिना कैसे किसी भी बिल्डर का रजिस्ट्रेशन नहीं करता, वो सारे नॉर्म्स चेक करता है। वो प्रॉपर जो प्रोजेक्ट ला रहा है उसके पास उतना लैंड बैंक है नहीं है, उसकी गुडविल क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, वो सारी चीजें पैरामीटर्स पूरी करने के बाद ही कोई बिल्डर रेरा में रजिस्ट्रेशन करा पाता।
2: क्या बात है। क्या केवल ब्रोशर देखकर संपत्ति खरीदना सही है?
1: नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एडवर्टीजमेंट देख के या होर्डिंग देख के या अखबारों में विज्ञापन देख के आप ब्रोशर देख के कोई संपत्ति खरीद लें, ब्रोशर केवल प्रसार सामग्री हो सकती है। हमेशा लिखित एग्रीमेंट और आधिकारिक दस्तावेजों पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले उसको डीपली चेक करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें।
2: तो सर, अगर बिल्डर तय समय पर कब्जा नहीं देता तो खरीदार क्या करे?
1: देखिए ये प्रॉब्लम बहुत आम हम लोग देखते हैं। कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि बिल्डर ने हमसे पैसा ले लिया है और या फिर हमने बैंक से फाइनेंस कराया है, बिल्डर जो है उसका पैसा भी उसको पहुंच चुका है और वो हमें पोजीशन नहीं दे रहा है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, बिल्डर को पहले आप एक रिटन में लिखित नोटिस दें कि जो एज पर टर्म्स कंडीशन तय हुई है उसके अकॉर्डिंग वो पोजीशन क्यों नहीं दे रहा है, क्या रीजन है। और समाधान ना मिलने पर आप उपलब्ध आप कानूनी जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स है, चाहे रेरा में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, कोई लोकल प्राधिकरण या लोकल बॉडी और डेवलपमेंट अथॉरिटी की वहां आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे गवर्नमेंट ने आज की डेट में रेमेडीज दी हुई है कंज्यूमर को कि वहां आप कंप्लेंट कर सकते।
2: क्या बिल्डर बिना बताए कीमत बढ़ा सकता है?
1: देखिए समानता तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर आपके जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में अगर कोई क्लॉज ऐसा मेंशन कर रखा है उसने पहले, यहाँ पे दोनों पक्षों की रजामंदी है, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है तो वो बढ़ा भी सकता है। लेकिन कीमत और भुगतान की शर्तें एग्रीमेंट के अनुसार ही तय होती हैं, जो आपने एग्रीमेंट किया वो होता है।
2: तो श्रोताओं बस जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। एक बहुत ही शानदार गाना आ रहा है आप सभी के साथ। देखिए बातों के साथ गाने के तड़के ना लगे तो बिल्कुल मजा नहीं आता है।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
5: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
4: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।

0: प्रदेश द्वारा जारी। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद।
1: माल के रखना चाहिए, कोई बुकिंग कराते हैं हम किसी प्रोजेक्ट की तो बुकिंग फॉर्म होना चाहिए, जो भी हमें पेमेंट्स हमने करी है उस पेमेंट का स्टेटमेंट होना चाहिए, अगर हमने कैश दिया तो कैश की रिसिप्ट होनी चाहिए, अगर हमने चेक के थ्रू पेमेंट दिया तो बैंक के स्टेटमेंट्स होने चाहिए, बिल्डर की तरफ से कोई हमें रिसिप्ट अगर इशू करी गई है तो वो होनी चाहिए, कोई ईमेल हमने करी है या बिल्डर की तरफ से कोई ईमेल हमारे पास आई है वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। और आजकल जो है कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो व्हाट्सएप चैट्स भी जो है वो अप्रूव्ड हैं, तो आप व्हाट्सएप चैट्स भी आप ऐसे जो उसको रिकॉर्ड ले सकते हैं। कोई किसी समाचार पत्र में या किसी न्यूज़पेपर में कोई अगर उसने प्रपोजल या एडवर्टीजमेंट दिया उसको भी कॉपी आप संभाल के रख सकते हैं कि क्या प्रपोजल दिया था उसने। तो ये सारे जो पेपर्स हैं जितनी भी रिकॉर्ड्स की चीजें आपको संभाल के रख।
0: अच्छा सर, ऐसा भी है कि कोई बोल रहा हो अगर हम उसकी वीडियो बना के अगर दिखाए तो वो क्या मान्यता की जाएगी?
1: नहीं बिल्कुल, अगर आपको कोई एग्जीक्यूटिव बिल्डर तरफ से या बिल्डर खुद उस चीज को कमिट करके अगर आपको कह रहा है और आपने उसका कोई रिटर्न में या आपने वीडियो कोई साक्ष्य उसका बनाया और कल को वो उससे ब्रीच करता है या हटता है तो आप उसको भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं।
0: तो मान्यता है?
1: बिल्कुल है मान्यता।
0: क्या बिल्डर मनमानी मेंटेनेंस की फीस ले सकता है?
1: देखिए ऐसा है, बिल्डर अगर अपनी परियोजना को जो है पूरा कर लेता है और जो है उसमें आपके एक एग्रीमेंट में सब चीजें निश्चित उसमें लिखी हुई है कि अगर उसमें कुछ चार्जेस उसने लिखे हुए हैं कि भाई मेंटेनेंस फीस मैं आपसे इतनी लूंगा, तो अगर एग्रीमेंट में आपका ऐसा कुछ है मेंटेनेंस का डिक्लेयर है उसमें तो वो ले सकता, अन्यथा नहीं ले सकता।
0: अगर बिल्डर परियोजना अधूरी छोड़ दे तो खरीदार क्या करे?
1: देखिए कई बिल्डर्स क्या करते हैं, हमने देखा है कई केसेस भी आते हैं कि बिल्डर ने क्या करा, अपना प्रोजेक्ट ही बीच में खत्म कर दिया, रिजॉल्व कर दिया या अधूरा बना के छोड़ दिया, तो उस केसेस में क्या कर सकते हैं जितने भी सभी खरीदार हैं वो मिलकर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और जो भी आपके पास उपलब्ध कानूनी उपाय हैं वो आप ले सकते हैं। आप मिलकर एक कमेटी बना के सोसाइटी की तरफ से एक आप अपना क्रेडिटर्स ऑफ कमेटी बना के आप केस फाइल कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं कि आप उसको बिल्डर के अगेंस्ट में कोर्ट में सू कर सकते हैं।
0: बहुत से सर डरते हैं कि क्या हम इसके ऊपर कर सकते हैं शिकायत या नहीं कर सकते हैं?
1: नहीं देखिए, आपका पैसा आपको रिकवर करना है तो ये तो आपका राइट है कि आपको पैसा चाहिए तो आपको तो केस तो या सू तो करना ही पड़ेगा, रिफंड कैसे मिलेगा नहीं तो आपको।
0: बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है?
1: देखिए अगर आप परिस्थिति के अनुसार हाँ है, यदि मामला उपभोक्ता विवाद के दायरे में आता है तो हाँ बिल्कुल आप जो है कंज्यूमर फोरम में आप केस बिल्कुल फाइल कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं बस रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद और हमारी जो ये बातचीत है वो जारी रहेगी। बस आपने रेडियो की ट्यूनिंग हमें कनेक्ट करके रखना है, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: वेलकम बैक है श्रोताओं, एक बार और आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए हैं जहां पर ढेर सारी बातें हो रही है। देखिए, घर लेने से रिलेटेड अगर कोई भी आपको परेशानी होती है तो बेझिझक बिंदास होकर आप शिकायत कर सकती है, क्योंकि इसमें आपका अधिकार है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज में, प्रॉपर्टी में आप पैसे लगा रहे हैं और इन फ्यूचर आपको वो नहीं मिल पा रहा है, आप सोच रहे कि हमें, हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हो रहा है, तो हम क्या करें, इसके लिए आप शिकायत कर सकते
1: हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप शिकायत बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है तो आप कंप्लेंट बिल्कुल कर सकते हैं, आपका राइट बनता है ये।
0: तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर बिल्डर दिवालिया हो जाए तो खरीदार का क्या होगा?
1: देखिए, बिल्डर का अगर दिवालिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आईबीसी बोलते हैं जिसको, है ना, आईबीसी की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्ट कोड, ठीक है। इसके तहत एक कानून है 2016 के अंतर्गत संरक्षित कर सकते हैं और आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक आपको केस बताता हूँ, जो पाशानाथ डेवलपर्स लिमिटेड है, पाशानाथ ग्रुप है, उसके अंगेंस्ट में ये इंसॉल्वेंसी बैंक कोड की ये जो प्रोसेस है वो चल रही है और काफी जो क्लाइंट्स है उसका क्लेम भी उन्होंने फाइल किया हुआ है। तो पाशानाथ के विरुद्ध ये कार्रवाई इस समय नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल में, लॉ ट्रिब्यूनल में ये जो है नई दिल्ली में चल रही है। अभी हाल ही का केस बता रहा हूँ मैं आपको।
0: ओके ओके, तो मतलब सर क्लियर हो गया उनका?
1: नहीं, अभी केस चल रहा है, वो उसमें कई क्रेडिटर्स ने उस पर क्लेम किया हुआ है और अभी वो पूरा जो मैटर है वो नेशनल ट्रिब्यूनल के पास में है, तो वहीं से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो आए हैं वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उसके तहत जो है, जो भी जितना क्रेडिटर्स का क्लेम है वो सब चेक कर रहे हैं, उसके बाद उस पर डिसाइड होगा क्या।
0: तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या केवल नगद भुगतान करना सुरक्षित है?
1: देखिए, नगद भुगतान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बैंकिंग माध्यम से ही भुगतान करें और हर भुगतान की आपको रसीद जरूर लेनी चाहिए या चेक से आप पेमेंट्स कर सकते हैं, डीडी दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर आरटीजीएस है, नेफ्ट है, उसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हैं।
0: तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, मान लीजिए कि हमने घर ले लिया है और जो हमारा जो बिल्डर है उसके पास अगर कोई भी हमारी दिक्कत आती है, तो इन फ्यूचर कभी कभी ऐसा होता है कि वो फोन ही नहीं उठा रहे, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, बिल्डर तो हर समय तो देखिए वहाँ सोसाइटी में नहीं रहता है, उसके जो स्टाफ होता है वहाँ पे स्टाफ को बताइए मेंटेनेंस से रिलेटेड इश्यू है या और कोई प्रॉब्लम है। तो अगर स्टाफ फिर भी नहीं दूर करता तो आप लोकल जो आपकी बॉडी है डेवलपमेंट अथॉरिटी से वहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लोकल आप डीएम से कंप्लेंट कर सकते हैं कि बिल्डर ऐसे ऐसे हमसे सुविधाएं कमिट करी थी या हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो निश्चित तौर पर लोकल अथॉरिटी से अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो सॉल्यूशन मिल जाता है मोस्टली केसेस में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर हमें आपसे बात करके। लेकिन एक जाते जाते एक क्या संदेश आप देना चाहेंगे खरीदारों के लिए, आपका सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या रहेगा?
1: देखिए, घर या दुकान खरीदते समय सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हम जीवन का सबसे बड़ा निवेश कर रहे हैं अपने, है ना। एक हर आदमी का सपना होता है कि मैं व्यापार के लिए कोई अपनी शॉप खरीदूं या अपने रहने के लिए, अपने परिवार के लिए कोई प्यारा सा छोटा सा घर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज है, एक तो आपको पैनिक नहीं होना है, जल्दबाजी में कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपको कोई भी प्रपोजल बिल्डर की तरफ से आता है तो आप उस सारे उसके डॉक्यूमेंट्स को, जो भी ब्राउचर है, जो भी एडवर्टाइजिंग मटेरियल है, जो भी उसने अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया है, उसको डीपली आप उसको चेक करें और उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लोकल अथॉरिटी से भी, जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां से भी आपको मिल सकती है कि ये प्रोजेक्ट उसका अप्रूव्ड है नहीं है, उसके बाद बिल्डर के पास लैंड बैंक इतना है नहीं है, या सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए मैलाफाइड इंटेंशन से मार्केट से पैसा उठाने के लिए वो एडवर्टाइजिंग कर रहा है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं, हर भुगतान का आपका अगर आप उसे चेक से पेमेंट दे रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड रखना है, बैंक का स्टेटमेंट किस डेट में आपका चेक पास हो रहा है, अगर आप डीडी से पेमेंट कर रहे हैं तो डीडी की फोटो स्टेट रखिए, अगर आप आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट करा रहे हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, और अपने सबसे बड़ी बात अपने कानूनों जो आपको प्राप्त है उसके प्रति सजग रहें, क्योंकि अगर आप जागरूक होंगे तभी आप जो है इन सारी जितनी भी ये जो चीजें हैं, जितने भी ये आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं, तभी आप इनसे बच पाएंगे। सजग रहना है सबसे बड़ी चीज में, और जो है बिल्डर्स की तरफ से अगर फोन पे भी कोई उसकी टीम की तरफ से कोई आपके पास प्रपोजल आता है और यदि आपका विचार बनता है निवेश का, तो पहले प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लीजिए, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में जाके जानकारी लीजिए कि वास्तव में प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है या नहीं है, ऐसी कोई आपको जो है मैलाफाइड इंटेंशन आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए।
0: बिल्कुल, और बिना जानकारी के आपको ये कह दे कि भैया पहले पैसे ट्रांसफर करो, तो इस पर यकीन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आज की इस बातचीत में हमें यही सीख मिली कि घर खरीदना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक बड़ा कानूनी फैसला भी है। सही जानकारी, सही दस्तावेज और अपने अधिकारों की समझ आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रीना,
0: जिन्होंने इतनी आसान भाषा में रियल एस्टेट और बिल्डर विवादों से जुड़े कानूनी कारों की महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा। उम्मीद है कि आज की चर्चा ने आपके कई सवालों के जवाब दे दिए होंगे, और अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो अब आप अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो श्रोताओं, याद रखिए, सपनों का घर तभी सुकून देता है जब उसके साथ आपके अधिकार भी सुरक्षित हो। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर ले और बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। बाय बाय।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

क्या बात है जी, बी परा की आवाज़ में बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है और आरजे रीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई हैं। समय की अगर मैं बात करूं तो 5:50 और अब हम करने वाले हैं आप सभी के साथ ढेर सारी बातें और अपडेट्स के बारे में कि आखिरकार देश दुनिया में क्या चल रहा है, अपने मुरादाबाद में क्या है भैया हाल, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अभी अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर यानी कि मुरादाबाद का टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और आई होप कि आप सभी बहुत मज़े में होंगे, बहुत एंजॉय में होंगे, क्योंकि गणेश उत्सव का आज दूसरा दिन है और हर किसी घर पापा आराम से विराजमान हो गए हैं। बस उनकी खातिरदारी और उनकी सेवा अच्छे से करिए ताकि उनको भी बहुत अच्छा लगे और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उनसे शिद्दत से और मन से मांगेंगे ना तो वो अवश्य पूरा करते हैं, क्योंकि देर भरले ही हो जाता है। वो परीक्षाएं लेते हैं लेकिन अपने भक्तों की बात वो ज़रूर सुनते हैं। और साथ ही साथ आप ट्रैफिक में हैं तो हेलमेट और सीट बेल्ट बिल्कुल लगाना ना भूलें, क्योंकि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि आप सुरक्षित बच सकते हैं। और इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो PSC की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ, दिल्ली की रोड की तरफ से आप जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो 0 पॉइंट से आइएगा और अदरवाइज पता चले कि आप कहीं और पहुंच गए हैं तो आपको इन जगहों पर। और पीली कोठी की तरफ बात करूँ तो उधर भी आपको सिविल लाइन्स की तरफ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इस टाइम मिल सकती है, क्योंकि हर कोई ऑफिस से अपने घर की तरफ रवाना होता है। तो एक बार जब भी आप ऑफिस से निकले तो लोकेशन सर्च करें कि जिस रूट पर आप जा रहे हैं कहीं आपको ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा आगे, ये सर्च करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट रहेंगे तो ऑलरेडी आपको हर चीज़ यहाँ पता चल ही जाएगा। तो साथ ही साथ एक और गाना सुनते हैं और उसके बाद देखिए अब हम कनेक्ट हो गए हैं तो करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए ट्यूनिंग रखिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत ने HIV एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं और इन परीक्षाओं में चयनित कर्मचारियों को संबंधित पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई जिनकी नियुक्तियां सरकारी अधिसूचना से प्रभावित हुई थी। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक, कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: You're tuning to FM Muradabad 89.6 FM. आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। श्रोताओं, आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए कुछ नया टॉपिक लेकर आते रहते हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है यानी कि किशोर अवस्था में बच्चों के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। और एक्चुअली में कभी ऐसा होता है कि हम घबराने लग जाते हैं, गलत भ्रांतियां है जो हम उनको सुन लेते हैं और उसको ही अपने लाइफ में फॉलो करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी जानकारी आप सभी तक पहुंचे और तभी आप फॉलो कर पाएंगे। सो इसी से रिलेटेड हम बात करने के लिए आज मैं आई हूँ विमेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मेरे साथ डॉक्टर सोना मैम कनेक्ट है। तो मैम, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी पहले तो आपके बारे में।
1: नमस्कार हीना जी, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी हूँ, स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ, महिला जिला अस्पताल मुरादाबाद में।
0: मेरा सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था आखिरकार होता क्या है और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है?
1: देखिए, किशोर अवस्था एक बहुत ही उम्र का ऐसा पड़ाव है जब एक बच्चा अपने उसका बचपन खत्म हो रहा है और वो वयस्क होने के रास्ते पर है। तो अभी उसका बचपन पूरा खत्म नहीं हुआ है, शरीर में और मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे बहुत से बदलाव आते हैं। शारीरिक तौर में बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आते हैं जिससे वो एडल्टहुड में प्रवेश करता है, और मानसिक बदलाव भी इसलिए आते हैं कि बच्चा खुद नहीं समझ पाता है, उसके अंदर बहुत नए तरीके के विचार आते हैं, बहुत नए तरीके से वो दुनिया को देखता है, दोस्तों से उसकी बातचीत होती है। तो वो ना बचपन में है, उससे बच्चों से उसको ज्यादा पता है, और ना वो भी वयस्क हुआ है
0: जी।
1: उसको लगता यह है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन ये ट्रांजिशन फेज है, बदलाव वाला है। बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि हार्मोन्स क्योंकि बदल रहे हैं तो इसलिए जो भी विचार उसके मन में आते हैं वो ये जज नहीं कर पाता है कि ये चीजें जो मुझे नई बातें पता चल रही हैं ये सही है या नहीं। तो ये लगभग आप मान लीजिए कि 12 वर्ष 13 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक ये किशोरावस्था रहती है, टीनेज, जिसमें बच्चे एक बीच वाली एज की स्टेज में है, अपने बचपन उनका खत्म हो रहा है और वयस्क होने के, जवान होने के उसमें आ रहे हैं,
0: मतलब 12 के प्लस होने के बाद।
1: हाँ,
0: तो मैम हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि किशोर अवस्था में बच्चे के शरीर के साथ साथ उनके व्यवहार में, सोच में अचानक बदलाव क्यों आने लग जाते हैं और इससे वो कभी कभी घबरा भी जाते हैं कि अचानक मेरे अंदर ऐसे चेंज क्यों आने लग गए हैं?
1: बिल्कुल घबरा जाते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो उनके हार्मोन्स का है, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों अपने एडल्ट फेज में जाते हैं तो शरीर में बहुत तरीके के चेंजेस आते हैं। वो बदलाव का जो टाइम है वो यही किशोरावस्था के दौरान ही शरीर में सारे बदलाव होते हैं, उनसे दिमाग पे, हार्मोन्स के लेवल पे बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है, और मानसिक तौर पे इसलिए वो घबरा जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बचपन से ज्यादा उनको चीजें पता है, आजकल इंटरनेट का भी जमाना है, बच्चे आपस में बात करते हैं, बहुत सी नई नई चीजें उनको पता चलती हैं, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता है कि ये ज्ञान जो है वो उनके पास पूरा ज्ञान नहीं है, अभी अधूरा ज्ञान है। और नई चीजों के बारे में पता चलता है तो बच्चों के मन में क्रेज बहुत होता है, बच्चों के मन में क्रेज बहुत ज्यादा रहता है, और उनको ये लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हम वो थोड़ा माँ बाप से भी अपनी चीजें शेयर करने में हिचकिचाते हैं कि माँ बाप कहीं ऐसा ना हो, समझे ना, उनको गलत ना समझ लें
0: जी,
1: ये चीजें रहती हैं।
0: तो मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा अपने शरीर में बदलाव को लेकर डर रहा हो, शर्म महसूस कर रहा हो, अपने माता पिता से, उनके जो माता पिता है उनकी हेल्प कैसे करे?
1: माता पिता सबसे पहले तो ये पहले से समझ लें कि बच्चा जिस बदलाव से गुजर रहा है वो उसके लिए एक स्ट्रेसफुल फैक्टर है, बॉडी के लिए एक स्ट्रेस है। तो बच्चे का व्यवहार थोड़ा शुरू से बदला हुआ हो सकता है, उसमें माँ बाप जो है वो जजमेंटल ना हो जाए एकदम से, अपने बच्चे को पहले से ही कोई विचार ना बना ले, पहले से ही कोई बायस ना बना ले कि ये इसके दोस्तों का ग्रुप हो गया है इस वजह से बच्चों में चेंज आ रहा है, या इसने कोई गलत चीजें कर ली होंगी इसलिए चेंज आ रहा है, या ये बड़ा हो गया है हमारी बात नहीं मान रहा है, उनको ये समझना होगा
0: जी।
1: तो अपना दौर भी ये याद करना होगा कि कुछ सालों पहले हम भी इस दौर से गुजरे हैं, हमारे मन में भी क्या चीजें आई थी वही सब चीजें अब इन बच्चों के मन में भी आ रही होंगी। तो अगर हम इनसे खुल के बात नहीं करेंगे तो ये दूसरे सोर्सेज ढूंढेंगे जानकारी के लिए
0: जी,
1: जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो बच्चे के लिए सबसे बड़े जो शुभचिंतक है वो उसका परिवार ही होता है, तो माँ बाप को थोड़ा फ्रेंड्स की तरह बच्चों से ट्रीट करना चाहिए उनको, एकदम उनकी किसी बात को सिरे से नहीं नकारें, उसको समझने की कोशिश करें, उनसे बात करें। बच्चे अगर डरेंगे नहीं कि ये बात करने से हमारे अपने माता पिता से डांट पड़ सकती है, अगर उनको लगेगा कि माता पिता डांटेंगे नहीं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ रहे हैं, तो बच्चे अपनी बातें माँ बाप से शेयर करेंगे। और हमारा मेन पर्पस ये है कि बच्चे किसी गलत चीज में ना पड़ जाए, तो हमसे वो बात करेंगे तो हम उन्हें पूरी जानकारी दे सकते हैं।
2: लेकिन मैम अभी भी कई घरों में ऐसा होता है कि मम्मी पापा बच्चे के साथ मतलब बातें शेयर नहीं करते हैं, उनको लगता है कि ये बातें अभी तक बच्चों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए।
1: यही बातें तो उनको समझनी है, और आपका रेडियो तो इस माध्यम से एक बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। आपने एक बहुत अच्छा ये चीज टॉपिक देखा है कि आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक को उठाया है। इससे माँ बाप होता क्या है, माँ बाप अपने काम

0: में लगे हुए हैं, वो बच्चे के बारे में बहुत मन से सब अच्छा चाहते हैं लेकिन बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा एक सोशल फैक्टर होता है कि माँ बाप के जो साथी लोग हैं, कई बार वो लोग कहते हैं अरे तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, अरे उसको छोड़ो, वो इस तरीके से कर रहा है। तो बहुत चीजों से माँ बाप के विचार गवर्न होते हैं कि आसपास की सोसाइटी वाले क्या कर रहे हैं। तो माँ बाप को सबसे पहले ये देखना है कि मेरे लिए मेरा बच्चा सबसे जरूरी है। बच्चे एंग्जाइटी टेंशन से भी डील कर रहे हैं आजकल माँ बाप। फोन और इंटरनेट के आने के बाद से बच्चे माँ बाप से थोड़ा कम बात करते हैं, माँ बाप भी कम बात करते हैं क्योंकि वो भी फोन पे सब लोग होते ही हैं। और रील्स फोन ये सब ऐसी चीजें हैं कि अगर आपके हाथ में फोन आ गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वक्त कहाँ निकल गया।
1: ये करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। और कभी कभी मैम अब तो वैसे बता दे कि रील्स पर हर कोई बिजी रहता है, वहीं से गलत धारणाएं मिल जाती है उनको, तो उसी चीज को फॉलो करने लग जाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि अगर माँ बाप से बच्चा देखे, ये क्यूरियोसिटी वाली एज है, उसके शरीर में भी चेंजेस हो रहा है, उसके सोच में भी चेंज हो रहा है, उसकी भावनाओं में भी बदलाव हो रहा है, वो ये कैसे जानेगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। और वो बस सब तरफ से जानना चाह रहा है। अगर उसको वो इन्फॉर्मेशन माँ बाप से नहीं मिलेगी तो वो दूसरे सोर्सेज ढूंढ लेगा, वो इंटरनेट पे सर्च करेगा, वो दोस्तों से मिलेगा। सब जगह से सब चीज सही नहीं पता चल सकती क्योंकि उसके पीयर ग्रुप में जो दोस्त हैं वो भी उसी उम्र के हैं।
1: जी जी,
0: उनको भी तो नहीं पता सही क्या है।
1: ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे जरूरी हो कि बच्चे पूछे मम्मी पापा से।
0: माँ बाप को इनिशिएशन लेना चाहिए, माँ बाप भी इनिशिएशन ले सकते हैं। जब उनको पता है कि बच्चा उस दौर में प्रवेश कर रहा है तो माँ बाप को भी धीरे से खुल के बच्चों से बातें करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अब तुम जिस उम्र में हो तुम्हारे शरीर में कुछ चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा तुम्हारे दोस्तों के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, कहाँ जाना है, कैसे सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर माँ बाप उनसे उनके हालचाल भी जाने कि तुमको स्कूल में कैसा लग रहा है, तुम्हारे दोस्त लोग कैसे हैं, आप बच्चों की चीज में इंटरेस्ट लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका काम सिर्फ घर का काम करना या अपना प्रोफेशन का काम करना है, घर में भी आप उतनी ही आपको जिम्मेदारी लेनी है क्योंकि बच्चे को जीवन तो माँ बाप ने दिया है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की है।
1: या राइट,
0: उन्हें
1: एग्री विद यू,
0: उन्हें उस चीज पे देखना पड़ेगा कि बच्चे के जीवन में जो कुछ हो रहा है उनसे जो बन पड़ रहा है वो बच्चों से बात करें। बात करना बहुत जरूरी है।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, बात करना बहुत जरूरी है लेकिन आज के टाइम में कोई भी टाइम नहीं दे पा रहा है क्योंकि फोन हर किसी के पास है, हर कोई फोन में लगा हुआ। तो फिलहाल मैम मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन से बदलाव सामान्य होते हैं और कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें बच्चों को पता होना चाहिए, या तो वो अपने पेरेंट्स से पूछे या डॉक्टर से पूछे।
0: देखिए, बदलाव शारीरिक और मानसिक इमोशनल सब तरीके के बदलाव है। शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो जेन्युइन बदलाव है, वो सबके अंदर आते हैं। हालांकि हाँ, अगर वजन बहुत बढ़ रहा है तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वजन, अगर चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अगर वजन बढ़ता है उससे शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं उनका लेवल बहुत गड़बड़ हो जाता है, उनसे आगे चल के उनमें बहुत बीमारियां होती हैं, जैसे महिलाओं में या चेहरे पे बाल आ जाते हैं।
1: जी जी जी,
0: महावारी अभी शुरू होती है लड़कियों की, तो शुरू में महावारी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, 6-7 महीने रेगुलर नहीं होता है। उसमें घबराने की बात हो सकती है, 6-7 महीने रेगुलर नहीं होता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। और उसका भी एक फिक्स एज नहीं है कि महावारी किसी एज में आनी चाहिए। पहले महावारी 12-13 साल में आती थी, आजकल महावारी 9 साल में भी शुरू हो रही है क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर बहुत बढ़ रहा है, जो चीजें उनको पता है इंटरनेट से बहुत चीजें बदलाव आ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी आ रहा है। तो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, नॉर्मल ब्लीडिंग है, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है और 2-3 महीने का डिफरेंस आ रहा है, वजन बहुत ज्यादा है, या लग रहा है कि लड़कियों की आवाज भारी हो रही है, या चेहरे पे बाल आ रहे हैं, ये कंडीशंस हैं, तो उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और संकेत क्या है जिसमें घबराने की जरूरत है या जिसमें आपने पूछा कि ध्यान रखने की जरूरत है? थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा बच्चा हो सकता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा अकेले ज्यादा रहना चाह रहा है।
1: बहुत से बच्चे होते हैं जो खुद अकेले महसूस करते हैं।
0: हाँ, लेकिन एक चीज आजकल देखिए, डिप्रेशन बहुत आ रही है। पहले बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, माँ बाप के पास टाइम नहीं है तो सारे बच्चे आपस में ही खेलते कूदते रहते थे। आपने देखा होगा कि पहले डिप्रेशन इतना नहीं होता था,
1: कहानियां सुनते रहते थे।

0: नानी सुनते रहते थे, नानी दादी से, आपस में लड़ भी रहे हैं तो उन्हें पता है कि ये सब तो चलता रहता है दुनिया में। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है ज्यादातर, माँ बाप के पास अपना टाइम नहीं है, बच्चे बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, अपना पढ़ाई में प्रेशर है, कई तरीके की परेशानियां है, तो कन्वर्सेशंस खत्म हो रहे हैं
1: जी।
0: ठीक है, तो और बच्चों में प्रेशर भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि ये फर्स्ट आ रहा है तो मुझे भी फर्स्ट आ रहा है, या मेरे 99 ना होके मेरे 97 ना हो गए इस नंबर हो गए, इसमें भी बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है। तो हमें ये लक्षण देखने हैं कि ऐसा तो नहीं कि पहले बच्चा ठीक था, अब अचानक से वो अकेले कमरे में रहना पसंद कर रहा है, या इतना हमें ऊपर से ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो दोस्त हैं वो किस तरीके के हैं, अच्छी कंपनी में रहेगा तो ठीक रहेगा, है ना। और बच्चा कोई बहुत एडवेंचरस चीज तो नहीं हो गया है, एडवेंचरस काम तो नहीं करना चाह रहा है कि आज मुझे कोई रिस्की काम ना करना चाह रहा हूँ, ये कुछ चीजें हैं जो, या नॉर्मल बात में बच्चा सामान फेंक रहा है, कान बंद कर रहा है, चिल्ला रहा है, वो चीजें हैं जब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। और जरूरी नहीं है कि अच्छा मानसिक, आपने जैसे पूछा मानसिक स्वास्थ्य, पहले एक स्टिग्मा हुआ करता था, लोग इस बारे में बात नहीं करते थे, चाहे वो बच्चों की हो या बड़ों की हो, उसको बस एक बिहेवियर करार दे दिया जाता था कि ये थोड़ा गुस्सेल है। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि मानसिक स्वास्थ्य पे सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है, एनजीओज भी ध्यान दे रहे हैं। आप लोग के माध्यम से भी मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य में अगर किसी की परेशानी हो रही है तो ये कोई स्टिग्मा नहीं है, आपको इसे किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है, और ये कोई शर्म की बात भी नहीं है। जैसे शरीर में बाकी ऑर्गन्स है ऐसे ही शरीर में दिमाग भी है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो जैसे इंसान डायबिटीज है, शुगर हो गया, हाइपरटेंशन, ब्लड बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हो गया, इनकी दवाइयां खाता है तो वो दिमाग की परेशानी की भी दवाई खा सकता है, ये कोई स्टिग्मा नहीं है कि इसकी दिमाग की दवाई चल रही है। तो पहले जैसे लोग डॉक्टर्स के पास जाना अवॉइड कर, और जरूरी नहीं है कि आप दिमाग के ही डॉक्टर के पास जाए, आपके पास जो डॉक्टर अवेलेबल है, आप जिनसे अच्छे से बात कर सकते हैं, आपको लगता है कि वो आपको अच्छे से बात कर रहे हैं, समझ रहे, आप उनके पास जाइए, आपको सही गाइडेंस मिलेगी। और हर चीज में दवाई की जरूरत नहीं होती है, कई चीजों में काउंसलिंग से भी काम हो जाता है। कई बार माँ बाप को यही नहीं पता होता है कि बच्चे की स्थिति से हमें डील कैसे करना है
1: जी।
0: तो अपने जो भी नजदीकी डॉक्टर्स हैं उनसे बात करें, अपने परिवार में बात करें, दोस्तों से बात करें, सब तरफ से हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलता है।
1: और मैम एक कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इस पर बात करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, पूछिए।
1: जैसे कि आपने बोला भी था कि डिप्रेशन और फिर बच्चे अकेले रहते हैं, और आज के टाइम में तो बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, वो बाहर रहते हैं, रूम में भी अकेले रहते हैं, जबकि वो घर पर सभी फैमिली वालों के साथ है, और इस वजह से वो डिप्रेस भी हो जाते हैं, और खासकर लड़कियों में यानी कि पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। उनका यही कहना होता है कि 15 दिन डिले हो जाते हैं, 20 दिन डिले हो जाते हैं, तो क्या ये अकेलेपन का भी है कुछ?
0: हाँ, अकेलेपन से आपका दिमाग परेशान है, आप स्ट्रेस्ड है, आपका हार्मोन लेवल चेंज होगा, हार्मोन लेवल चेंज होगा तो आपकी महावारी भी चेंज होगी, आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो अपना वॉक पे जाइए, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग फैमिली से अलग रहते हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि उनको रेगुलरली, वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन डेली वॉक पे जाइए, आप एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए, मेडिटेशन, योगा, इन सब चीजों से शारीरिक तो बहुत फायदा होता ही है, मानसिक तनाव में भी बहुत कमी आती है, मानसिक तनाव बहुत कम हो जाता है। ये चीजें करें, गाने सुने और लोगों से बात करें, लोग कुछ भी हो बात करना नहीं बंद करना चाहिए, बातें करनी बहुत जरूरी है, बातें सुननी बहुत जरूरी है।
1: लेकिन मैम आज के पास, आज के टाइम में इतना टाइम कहाँ किसी के पास होता है?
0: देखिए, आप जिस चीज को प्रेफरेंस देंगे उस चीज के लिए आप कैसे ना कैसे टाइम निकाल लेंगे,
1: ये तो है।
0: अगर आपको कहीं घूमने जाना है या आपको कोई काम करना है, जैसे अब देखिए हम लोग सीरीज देखते हैं तो इतने बिजी शेड्यूल में भी सब लोग सीरीज तो देख ही रहे ना, या कहीं घूमने जाना है, कोई आपको किसी मंदिर धाम कहीं भी जाना है, आप कैसे ना कैसे टाइम निकाल
1: चलिए,
0: बस अपने हेल्थ को फोकस देना है। हम ठीक है तो बाकी सब चीजें ठीक है, अगर हम ही ठीक नहीं है, तबीयत ही नहीं ठीक है, तो हमको सोने की चीज भी दे दी जाए हमको क्या खुशी मिलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम एक छोटा सा लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें
0: किशोरों के लिए, मैसेज ये है कि आपके शरीर में और मानसिक चीजों में जो बदलाव आ रहे हैं वो किसी भी तरीके से एबनॉर्मल नहीं है, वो शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, और जिस दौर से आप लोग गुजरे हैं उसी दौर से आपके बड़े दीदी, बड़े भैया, माता पिता, दादा दादी सब लोग गुजरे हैं, तो आपको कुछ भी विचार आ रहे हैं तो एकदम से आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, अपने लिए जजमेंटल भी नहीं होना है कि ये क्या मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। और जो भी विचार है वो आप घर में किसी से भी क्लोज है, स्पेशली माँ से, माता पिता से और माँ से, बड़ी दीदी है, मौसी है, आप लोग सबसे बात करिए। अपने जो डाउट्स हैं आप लोग ये विश्वास रखिए कि ये लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो लोग आपको समझेंगे क्योंकि सब आपके शुभचिंतक हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो अलग जनरेशन में पैदा हुए हैं, आप अलग जनरेशन में पैदा हुए हैं, उन लोगों के समय चीजें दूसरी थी, आप लोगों के समय में चीजें दूसरी हैं। तो आप लोग ये जरूर सोच सकते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे समझते ही नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए जब आप बोल भी नहीं पाते थे तब भी वो आपको दूध पिलाते थे, तब भी खाना देते थे, तब भी आपको क्लीन करते थे, तो वो आपको समझेंगे। आप लोग थोड़ा भरोसा करके उनसे अपनी चीजें शेयर करिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माता पिता आपको समझ के आपको सही राय देंगे, क्योंकि कोई सोच गलत नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सही मिलनी चाहिए।
1: तो मैम, जाते जाते आप एक कुछ आपके पसंद का कोई गाना हो जो हम रेडियो पे श्रोताओं को आप डेडिकेट करना चाहें।
0: हाँ बिल्कुल, एक गाना है नारायण मिल जाएगा, जुबिन नौटियाल जो सिंगर है उनके द्वारा गाया गया है, और इसको प्ले कीजिएगा। और ये मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि चाहे हम किसी भी धर्म के हों, हिंदू हैं तो नारायण को मान रहे हैं, दूसरे धर्म के हैं तो अपने गुरु को या अल्लाह को मान रहे हैं, सब अल्टीमेटली एक हैं। और इसका बेसिक एक जो जिस्ट मुझे इस सॉन्ग का मिला वो ये है कि आप अपनी तरफ से अच्छे कर्म करिए, भगवान जो है या जो गुरु है वो सब देख रहे हैं, तो जैसे आप करेंगे आपको उन चीजों का अच्छा फल जरूर मिलेगा।
1: वही बात आ गई ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिले।
0: बिल्कुल, और अपने पे भरोसा रखें सब।
1: करेक्ट है। थैंक यू सो मच मैम,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: मैम मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि हमारे श्रोता है उनको भी बातें समझ में आ गई होगी।
0: रेडियो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है
1: जी जी,
0: क्योंकि सब लोग सुनते हैं, सुनी हुई चीजें याद रह जाती हैं, और इसके माध्यम से आप शहर में, गांव में, हर जगह तक आपकी आवाज पहुंच रही है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। मुझको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा माध्यम है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी तरफ से बहुत गुड विशेज हैं आप लोगों के लिए।
1: थैंक यू सो मच।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: हेलो जी, गर्ड वाली इवनिंग है, अर्जेंटीना के साथ आप कनेक्ट होता हूँ और समय की बात करूँ तो 6:30 हो चुके हैं और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है कि नारायण मिल जाएंगे। किसी न किसी रूप में आपको नारायण अवश्य मिल जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इवनिंग मस्ती शो में अर्जेंटीना के साथ कनेक्ट है तो आज गणेश जी का दूसरा दिन है, यानी कि एक दंत जो उनका दांत है उसकी कथा की जाती है। तो चलिए मैं आप सभी को सुनाती हूँ, आराम से धैर्य से ध्यान से सुनिएगा। एक बार, मतलब बाहर किसी के दिमाग में आता है ना कि भगवान जी का जो एक दांत टूटा हुआ है एक दांत सही है, तो ये कैसे हुआ, इसके पीछे की आखिरकार कहानी क्या है, तो इसी कहानी को हम सुनेंगे, यानी कि इसी कहानी को मैं आपको सुनाने वाली हूँ। एक बार भगवान परशुराम ने अपने आराध्य देव भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम कर रहे थे। शिव जी के आदेश के अनुसार गणेश जी ने बहुत, मतलब वो पहरा देने लगे कैलाश के बाहर ताकि कोई उनके विश्राम में बाधा ना डाले। जब परशुराम जी अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उन्हें रोका और कहा कि वो अभी अंदर नहीं जा सकते हैं। परशुराम जी ने बार बार भीतर जाने का आग्रह किया, लेकिन गणेश जी ने अपने कर्तव्य पर अडिग रहे, क्योंकि वो अडिग बहुत रहते हैं। अगर किसी ने उनको बोल दिया ना कि आपको ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे खुद की सर क्यों ना कट जाए, लेकिन वो अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते हैं। ऋषि परशुराम स्वयं से अत्यंत क्रोधित थे। गणेश जी द्वारा रोके जाने पर उनका क्रोध भयानक रूप ले लिया और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। दोनों के बीच तीखी बहस हुई, दोनों ही देखते देखते भीषण युद्ध हो गया दोनों में, यानी कि परशुराम जी और गणेश जी में। गणेश जी ने अपने सूंड से परशुराम जी को पकड़कर ब्रह्मांड के चक्कर लगवाए और उन्हें भूमि पर पटक दिया। इस क्रोध से क्रोधित होकर परशुराम जी ने अपने दिव्य अस्त्र फरसे से गणेश जी पर प्रहार किया। यह फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम जी को वरदान में दिया था। गणेश जी उस वार को आसानी से टाल सकते थे, लेकिन वे अपने पिता भगवान शिव द्वारा दिए गए अस्त्र का अनादर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस वार को अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसे के प्रहार से गणेश जी का बाया दांत टूटकर गिर गया, इसी कारण उनका नाम एक दंत पड़ा। जब माँ पार्वती को इस बात का पता चला तो वो परशुराम जी से अत्यंत क्रोधित हुई, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण के हस्तक्षेप के मामला शांत हुआ। जब कृष्ण भगवान जी आए तब जाकर ये जो गुस्सा हुए थे शांत हुए और उसी टाइम यानी कि गणेश जी को भी होश आ गए थे, ताकि क्योंकि वो जब उनकी दांत टूटी तो बेहोश होकर मिर्छित होकर यानी कि धरती पर गिर गए थे, तब जाकर ये युद्ध शांत हुआ और उसी टाइम से इनका नाम एक दंत कहा जाने लगा। तभी लिए कहते ना एक दंत। तो इसी के साथ एक गणेश जी का बहुत ही प्यारा भजन गाना सुनते हैं और इसके बाद शो में और भी करेंगे ढेर सारी बातें।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाले आपने गाना एंजॉय किया था। पप्पा का भैया गाना है और वो भी शानदार वाले होते हैं। सच बताओ, सुनकर एक अलग ही पॉजिटिव ही अपने आप अपने अंदर आने लग जाती हैं। और सही बात है, आप सच्चे दिल से कुछ भी मानते हैं तो अवश्य पूरा होता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आप मैच के दीवाने हैं, अगर आप मैच देखना चाहते हैं, तो भैया आज दूसरा T20 मैच है, यानी कि भारत वर्सेस अफगानिस्तान के बीच। यानी कि पहले मैच में 7 विकेट से हरा दिया था इंडिया ने अफगानिस्तान को, और ये मैच आज शुरू होने

0: ये मैच यानी कि 7:30 बजे शुरू होने वाला है और दिल्ली में खेला जाएगा।
1: झूठे वो अफसाने तू ना हो जिम में।
0: तो अगर आप चाहते भैया मैच देखना, आज दूसरा मैच है यानी कि अफगानिस्तान और भारत के बीच, 7 बजे से यानी कि स्टार्ट हो जाएगा और 7:30 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा। तो ये मैच आप जरूर देखिए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि भैया देखिए मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज के बाद ना बहुत सी दिक्कतें होने लग जाती हैं, यानी कि जुकाम, खांसी, फीवर। तो ऐसे में आपने ध्यान रखना है और भी ढेर सारी बातें करेंगे और एक कड़क सवाल भी आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं और करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए गाना सुनते हैं, एक और ही बहुत ही शानदार वाला, और फिर करेंगे हम आपसे ढेर सारी बातें। सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

गाने तो भैया एक नंबर के प्ले हो रहे हैं ना, आप सभी के लिए मजा ही आ जाता है। और साथ ही साथ बाहर का वेदर यानी कि तक 31 डिग्री सेल्सियस, आज भैया हल्की फुल्की तो नहीं बोल सकते लेकिन गर्मी बहुत ही ज्यादा है ना। और साथ ही साथ आप सोच रहे होंगे कि भैया मूवी देखने की प्लानिंग बना लेते हैं हनुमान अंश के बाद, अब आगे कौन सी मूवी ऐसी आने वाली है जिसको हम देखने के लिए थिएटर में यानी कि देखिए पहले से ही टिकट्स बुक कर लेते हैं। तो हर किसी के दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान, इनकी मूवी आने वाली है 14 दिसंबर को, किंग मूवी। अब किंग मूवी में देखेंगे इनको, जिनकी यानी कि डायरेक्टर की बात करूँ तो सिद्धार्थ आनंद जी ने डायरेक्ट किया है। और 14 दिसंबर को ये सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। एक्शन मूवी है और बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है ये मूवी। तो आप मूवी देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो किंग मूवी जरूर देखिएगा। फिलहाल अभी तो हनुमान अंश थिएटर में भैया ब्लॉकबस्टर पर छाई हुई है। हर दिन मतलब एक भी टिकट सीट खाली नहीं जाती है, फुल ऑफ ऑन फुल ही जाती है। फिलहाल हम हमारे पास कुछ मैसेज आए हैं, उनको शामिल करते हैं कि किनका क्या मैसेज। बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी कनेक्ट होती है। हेलो, गुड वाली इवनिंग, गुड वाली इवनिंग जी। करूला मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। इरशाद हुसैन अंसारी जी, सैयद शारिक अली जी, रीना जी आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आप

0: मिशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
1: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
0: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े, समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
1: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 6:53 हो चुके हैं और इसी बीच रीना आप सभी के लिए लेकर आ गई है कड़क म्यूजिक, जिसको आपने सुनना है और आप आसानी से हमें मैसेज करके बता सकते हैं भैया कि इस गाने का क्या नाम है। ये गाना बहुत ज्यादा ट्रेंड पर है और ये

ना बता देती हूँ आपको, पति पत्नी मूवी से, पति पत्नी और वो दो मूवी से ये गाना है। बस आपने ध्यान से सुनना है और बताना है कि जो मैं गाना प्ले करने वाली हूँ, मूवी का क्या नाम है। मूवी का नाम खैर मैंने आपको बता ही दिया है, पति पत्नी और वो दो, बस आपने गाने का नाम बताना है। तो चलिए हम प्ले करते हैं, ध्यान से सुनिएगा भैया, तभी बता पाएंगे।

जल्दी जल्दी सोचिए भैया कि आखिरकार जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है, गाने का आपने नाम बताना है और हमें व्हाट्सएप करना है। नंबर है 9823789689 पर आप मैसेज करके बता सकते हैं कि आखिरकार जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है ना, गाने का क्या नाम है। बस सिंपल सा काम है, आपने यही सर्च करना है और हमें मैसेज करना है। और आज मैं आप सभी के साथ अभी कनेक्ट रहूंगी, डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है जी। चलिए एक बार और हम म्यूजिक प्ले करते हैं जिसको आपने आराम से तसल्ली के साथ पहचानना है, ठीक है।

चलिए चलिए, जल्दी जल्दी सोच लीजिए और मैसेज कर दीजिए हमें कि आखिरकार जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है गाने का क्या नाम है, और आगे बढ़ते हैं और भी ढेर सारी बातें करेंगे। बस आप मैसेज करते रहिए, नंबर है 9837896896। ओहो, एक मैसेज आते हैं, मैडम एक बार और प्ले कर दो बस। चलिए जी, एक बार और प्ले करते हैं हम।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धिविहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है, आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है। और समय की बात करूं तो समय देखिए आज 7:03 हो चुके हैं, है ना। आप सोच रहे होंगे ना कि आज रीना मैडम इतनी लेट तक, ओ माय गॉड। हां जी, हमने सोचा कि चलिए आज थोड़ी लेट तक शो कर लेते हैं, आप सभी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है आप सभी के साथ कनेक्ट होना। और आज का डे भी बहुत ही खास है, यानी कि 15 सितंबर है। और 15 सितंबर को आखिरकार ऐसा कौन सा डे है जो बहुत स्पेशल है? अगर आप किसी खूबसूरत पुल से गुजर रहे हैं, शानदार इमारत देख रहे हैं, सड़क पर आराम से सफर कर रहे हैं, या अपने मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में बिजी हैं, तो जरा सोचिए इन सब के पीछे किसी ना किसी इंजीनियर की मेहनत छिपी होती है। जी हाँ, आज है 15 सितंबर और आज मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। ये दिन भारत के महान इंजीनियर और भारत रत्न सर मोक्षगुण विवेक राय की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। उन्होंने देश के विकास में इंजीनियरिंग के जरिए बड़ा योगदान दिया। इंजीनियरिंग सिर्फ मशीन और नक्शे नहीं बनाते, बल्कि अपनी सोच और मेहनत से देश के विकास की नई राह तय करती हैं। तो आज उन सभी इंजीनियर्स को एक बड़ा सा सलाम। ये कहते हैं कि प्रॉब्लम चाहे कितना भी बड़ा हो, सॉल्यूशन हम निकाल ही लेते हैं। और देखिए, जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकालना हमारा काम है। क्योंकि जितने आप मुश्किलों से भागते जाएंगे, वो मुश्किल ना आपको आपके अंदर आपके ऊपर हार्म करते जाएंगे। इसीलिए उनसे आगे बढ़िए और फिर उसका सामना कीजिए। हर चीज़ पॉसिबल है, जब वो बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बस ट्राई करिए, सारा काम आसानी से कर पाएंगे। लेकिन इसी बीच मैंने आप सभी से आज कड़क म्यूज़िक पूछा है, जिसका आंसर आपने हमें पहुंचाना है। बस थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है, सर्च करना है, क्योंकि न्यू मूवी है और मूवी का नाम है पति पत्नी और वो दो। और लेकिन गाने का नाम सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है, तो मैं म्यूज़िक प्ले करती हूँ, ठीक है?

हाँ जी, मैं कह कितने ध्यान है जी, जल्दी जल्दी सोचो कि आखिरकार जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है गाने का क्या नाम है, सोचिए एक बार और।

0: चलिए जी, चलिए सोचिए और मैसेज करिए। नंबर है 9832378968 पर। फिलहाल ये शानदार वाला
1: स्टार्ट हुई। आज खेती करो यार।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

की हाल चाल है जी। आरजेरीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूं तो 7:12 हो चुके हैं। और देखिए, रामायण मूवी जो कि 19 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, साथ ही साथ रामायण मूवी का एक गाना रिलीज हो गया है, जय जय राम, यानी कि गणेश चतुर्थी के मौके पर ये गाना कल रिलीज हो गया। तो आप इस गाने को अगर सुनना चाहती हैं तो डेफिनेटली आप इस गाने को सुन सकती हैं। जय जय राम ये गाना है, रिलीज हो गया है। ए आर रहमान की भी आवाज और अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना आप सुनने वाले हैं, साथ ही साथ श्रेया घोषाल की आवाज भी इस मूवी में गाने में आपको सुनने को मिलेगा। तो ए आर रहमान ने भैया संगीत और साथ ही साथ अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत गाना जय जय राम, रामायण मूवी का ये गाना है। तो आप इस गाने को सुनिए, और साथ ही साथ जो मैंने म्यूजिक आज प्ले किया है ना, अब उसकी बारी है। बस आपने थोड़ा सा और एक मौका और मिलेगा आपको सोचने के लिए, और आप क्या कर सकते हैं हमें आसानी से मैसेज करके बता सकते हैं भैया कि जो मैंने गाना यानी कि जो म्यूजिक प्ले किया है गाने का क्या नाम है। बस इतना सा ही काम करना है आपने, जरा सा ही तो काम है, कोई मुश्किल काम भी नहीं बताया मैंने आपको। देख लीजिए, अब सोच लीजिए, जल्दी जल्दी सोचिए और मैसेज करिए। तो चलिए एक बार और हम प्ले करते हैं कि आखिर का जो म्यूजिक प्ले किया है आप सभी के बीच तो उस गाने का क्या नाम है, सब रेडी होंगे है ना। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ।

जल्दी आप देखिए मैसेज करके हम बता सकते हैं, लेकिन आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज है जिसको हम शामिल करेंगे, बस थोड़ा सा और इंतजार करना है आपने। ठीक है जी,

ठगले ठगले। फिलहाल हम चलते हैं अपने कड़क क्वेश्चन, जो आपको आज कड़क म्यूजिक पूछा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल एक बार और हम प्ले करते हैं म्यूजिक। चलिए जी, अब देखते हैं किनका हमारे पास सबसे पहले राइट आंसर आया है। और ये मैसेज आता है हमारे पास विभोर जी का, और ये कहते हैं रूप दीरानी दुपट्टा परांदा। ओए होए क्या बात है जी, बहुत ही आपने, इन्होंने सबसे पहले भैया राइट आंसर पहुंचा दिया है। रूप दीरानी का ये जो आपने म्यूजिक प्ले किया है राइट आंसर है। विभोर जी आप बनते हैं इवनिंग मस्ती शो के विनर। अगले मैसेज की बात करूं तो गुड इवनिंग रीना जी, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छी होंगी और आपकी शाम और भी खूबसूरत होगी। बिल्कुल जी, सही कहा आपने, हमारी शाम बहुत ही खूबसूरत है। अगले मैसेज की बात करूं तो आरजे रीना जी, जय राधे राधे, आपको भी राधे राधे सर। हरपाल सिंह, नियर गंगा यानी कि मंदिर हरथला से कनेक्ट होते हैं, थैंक यू सो मच सर। अगले मैसेज की बात करूं तो अंसार हुसैन जी कनेक्ट होते हैं दौलत बाग मुरादाबाद से। गुड प्रोग्राम रीना जी, गुड गाने और काली तेरी चोटी है। ओके, राइट आंसर दिया है इन्होंने भी। अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं। रूप दीरानी, चलिए इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह और करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय बाय।

0: लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर किए हस्ताक्षर। कहा, जल संसाधनों के समुचित उपयोग और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा ये कदम। केंद्र सरकार ने कहा, 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। वित्त मंत्रालय ने बदलावों को किया अधिसूचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर प्रदेश में तैयारियां तेज। ये अभियान नागरिकों को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ेगा। और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में अपनी पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट का किया विमोचन। स्कूली बच्चों से साझा किए अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्वार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना का लगभग 90% वित्तीय भार भारत सरकार वहन करेगी और शेष 10% राशि 1994 के समझौते के अनुसार भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस समझौते को जल संसाधनों के समुचित उपयोग और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि परियोजना के साकार होने से उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से अन्नदाताओं को संबल, पेयजल की उपलब्धता को मजबूती और यमुना की अविरलता को नई शक्ति मिलेगी। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहने वाली टोंस नदी पर कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा, जहां 1562 मिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहण होगा। इससे 97,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 1476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जल विद्युत भी प्राप्त होगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आज 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट में साल के 11 महीने एथेनॉल बनाने का काम होगा।
3: 19 वर्ष पहले शुगर फैक्ट्री बंद होती, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो प्रस्ताव पास हुआ है, इथेनॉल प्लांट जो गन्ने से मक्का और धान, गन्ना समाप्त होने के बाद मक्का और धान से इथेनॉल बनाया जाएगा। ये प्लांट साल में 11 महीने चलेगा। जो भी इथेनॉल की मात्रा 3,96,00,000 लीटर एक साल में इथेनॉल बनेगा एक साल।
1: मंत्रिपरिषद ने अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत प्रदेश के पीआरडी जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद UPI लेनदेन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में समीक्षा बैठक कर अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में हापुड़ के प्रभारी मंत्री KP मलिक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर एक माह तक चलने वाले इस अभियान की कार्ययोजना पर चर्चा की। उधर शाहजहांपुर के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को अभियान के सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से कराने और अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और नागरिकों को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ना है।
5: सेवा संकल्प के अभियान को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन और संगठन के समन्वय के साथ कार्य योजना तैयार की है। 17 सितंबर को शाहजहांपुर जनपद में रक्तदान का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद 17 से लगातार 17 अक्टूबर तक बहुत सारे अभियानों के माध्यम से जन कल्याण की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को देने का काम भी पूर्ण होगा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब अंतिम भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में निर्माण की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए निर्माण कंपनियों से बैंक गारंटी ली जा रही है। साथ ही निर्माण के अंतिम भुगतान का ऑडिट भी थर्ड पार्टी से कराने का फैसला लिया गया है। श्री मिश्र ने बताया कि अब रामकथा संग्रहालय का काम शुरू होगा जिसके लिए 10 अक्टूबर से टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।
6: संग्रहालय का जो सबसे बड़ा कार्य अब शुरुआत होगी आने वाले 10 अक्टूबर तक टेंडर जारी की जो टेक्नोलॉजी होगी उसका हार्डवेयर होगा सॉफ्टवेयर होगा वह बनाना है और उसको अंतिम रूप दिया जाए। अनुमान है कि टेंडर फाइनलाइज जो कि अक्टूबर के अंत तक कदाचित हो पाएगा उसके बाद लगभग 6 महीने लगेंगे गैलरी को कम्प्लीट करने में।
1: अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज लखनऊ में चल रहे गोमती पुस्तक महोत्सव में अपनी किताब द सेकेंड ऑर्बिट का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और युवाओं के साथ संवाद किया और अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा किए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में जानने की जिज्ञासा है और उन्हें सही दिशा दिखाना हमारी जिम्मेदारी है।
7: ज्यादातर सवाल प्रैक्टिकल थे कि हम क्या करें, हम कैसे आगे बढ़े और हम कैसे इन फील्ड्स में पार्टिसिपेट करें। तो आई थिंक कि जिज्ञासा है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं और आई थिंक अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये पूरा इकोसिस्टम इनेबल करें ताकि जो बच्चे आज स्कूल में हैं कल को वो निकल के भारत के लिए इन क्षेत्रों में कंट्रीब्यूशन कर सके।
1: भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। वर्ष 1982 में दिल्ली एशियाई खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में राज्य के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर किए हस्ताक्षर। कहा, जल संसाधनों के समुचित उपयोग और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा ये कदम। केंद्र सरकार ने कहा, 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। वित्त मंत्रालय ने बदलावों को किया अधिसूचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर प्रदेश में तैयारियां तेज। ये अभियान नागरिकों को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ेगा। और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में अपनी पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट का किया विमोचन। स्कूली बच्चों से साझा किए अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। दोस्तों, आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों, आज हम अपनी धरती की आवाज सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए, आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा, क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं पर्यावरण की पुकार। तो दोस्तों, हम बहुत सोचते हैं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन आपके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम ही बहुत मायने रखते हैं। और विश्वास करिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। जैसे अगली बार सब्जी लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएं। ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला ना छोड़ें, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। दिन में खिड़कियां खोलें और बल्ब का इस्तेमाल कम से कम करें। एक पेड़ अपने पूरे जीवन में कई टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, आपको पता है? तो क्यों ना हम अपनी बालकनी में ही छोटे गमले रखें। दोस्तों, मनुष्यों द्वारा बनाई गई कई सारी संरचनाएं हैं, जैसे घर, सड़कें और शहर। इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें हमारी प्रकृति से ही मिलती है, और पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, महासागर, नदियां और झीलें, भूमि, चट्टाने और मिट्टी, और वो सभी जीवित प्राणी जो हमारे आसपास हमको नजर आते हैं। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे हमें काम भी करने होंगे और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को रोकना होगा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रोक सकते हैं। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से मानव जनित गतिविधियां, जैसे वन कटाव, जीवाश्म ईंधन का जलना, अपशिष्ट को जलाना जिम्मेदार हैं, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारक भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम की गंभीर घटनाओं जैसे जंगल में आग लगना, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना इत्यादि, और इन सब की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका को लगातार प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा मानव जीवन के साथ साथ पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, पशुओं को यह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। जहरीली गैसें और धुआं पशुओं की सांस लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे उन्हें फेफड़ों की बीमारियाँ हो सकती हैं। गंदा और रासायनिक पदार्थों वाला पानी पीने से पशु बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक और कचरा खाने से पशुओं के पेट में समस्या होती है। गायें और अन्य जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं। और दोस्तों, तेज हवाओं से पशु डर जाते हैं, और ये है ध्वनि प्रदूषण, जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वे तनाव में भी आ जाते हैं। और रही बात वनों की कटाई का, तो इससे पशुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे उन्हें भोजन और रहने की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और इस पर
1: 6000 रुपए करने का निर्णय लिया,
0: मिल के एकजुट होके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा।
2: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रूपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। इस समझौते पर नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना पूरी होने पर इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने किशाऊ बहुउद्देश्य परियोजना को लेकर हुए महत्वपूर्ण समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस परियोजना को वर्षों से लंबित विषय का समाधान बताते हुए केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्यों के सहयोग की सराहना की गई। एक रिपोर्ट।
3: जून माह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में छह राज्यों के बीच परियोजना को लेकर सहमति बनी थी, जिसे अब समझौते के रूप में औपचारिक रूप दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि किशाऊ परियोजना के समझौते से दिल्ली को 109.9 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिल सकेगा।

0: मंत्री ने बताया कि इसके लिए स्थानों की पहचान के साथ साथ तय समय सीमा में योजना लागू करने के लिए एक विशेष नीति भी तैयार की जा रही है।
1: दिल्ली सरकार ने ये तय किया है कि 10,000 बच्चों के लिए सरकार हॉस्टल बनाएगी, जहां उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एकोमोडेशन की चिंता की जाएगी। ये हॉस्टल गर्ल्स के लिए भी बनाए जाएंगे और बॉयज के लिए भी। यहां पर किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी आकर के अपना हॉस्टल फैसिलिटी ले सके, और इसके लिए हमने अलग अलग विभाग जो हॉस्टल बना सकते हैं उनके साथ में मीटिंग्स करी है, लोकेशंस को ट्रेस आउट किया है और पॉलिसी भी ड्राफ्ट करना।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राजधानी में सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को रहने के लिए सुरक्षित और सहयोगी माहौल मिले, ताकि वे उचित वातावरण में रहकर पढ़ाई कर सकें और अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ सकें।
1: हम ऐसे हॉस्टल्स बनाएंगे कि जहां देश भर से अलग अलग राज्यों से आने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को निश्चिंत होकर के यहां पर छोड़ सके, और बच्चा भी इस चिंता में ना रहे क्या खाना है, कहां रहना है, बल्कि वो अपने सपनों पे कॉन्सेंट्रेट कर सके।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के निर्धारित मासिक प्रोत्साहन को दोगुना कर 3,000 रूपये से बढ़ाकर 6,000 रूपये करने का निर्णय लिया गया है। ये वृद्धि राजधानी के सभी कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं पर लागू होगी और अन्य प्रोत्साहन पहले की तरह जारी रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आशा कार्यकर्ता दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी आशा कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की थीं। दिल्ली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली सचिवालय में छात्रों के रहने की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए गठित हाई पावर्ड कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में छात्रों के लिए सुरक्षित, सुलभ और बेहतर आवास व्यवस्था के साथ साथ पूरी दिल्ली में छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: दिल्ली नगर निगम ने वर्षों से सेवारत 296 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया है। ये निर्णय लंबे समय से सेवारत सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर महापौर प्रवेश सिंह बाही ने कहा कि राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में सफाई कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ दिल्ली को स्वच्छ रखने में योगदान देते हैं। श्री वाही ने कहा कि पिछली सरकारों ने केवल आश्वासन देने का काम किया, मगर निगम में भाजपा सरकार कर्मचारियों से किए गए सभी वायदों को पूरा कर रही है। दिल्ली नगर निगम भवन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने और जन सुरक्षा की रक्षा के लिए निगम के सभी 12 जोनों में सख्त प्रवर्तन कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान आज चलाए गए गहन प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत एमसीडी के सभी 12 जोनों में 40 विध्वंस कार्रवाई की गई। इसके अलावा 16 संपत्तियों को सील किया गया, जबकि लागू भवन मानदंडों और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 4 विध्वंस आदेश पारित किए गए। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने आज जेजे क्लस्टर पुनर्वास पहलों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक में दिल्ली झुग्गी और जेजे पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति 2026 के तहत बेहतर आवास और रहने की स्थिति पर चर्चा की गई। श्री संधु ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निवासियों के संपर्क में रहें, उनकी समस्याओं को सुने और उनका तेजी से समाधान भी सुनिश्चित करें। दिल्ली की उपमहापौर डॉ मोनिका पंत ने आज दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के वार्ड संख्या 144 स्थित नेहरू नगर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, पार्कों, गलियों और नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। ये निरीक्षण राजधानी को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने के लिए उपमहापौर द्वारा चलाए जा रहे दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के तहत किया गया। दिल्ली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2026 के लिए

0: रवाना होने वाली भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए श्री सूद ने कहा कि खिलाड़ियों का कौशल, उनका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प नए भारत की ताकत और आकांक्षाओं को दर्शाता है। श्री सूद ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाएं और युवा भारतीयों को भी प्रेरित करें।
1: मैं कौशल भवन में आप सभी के चेहरों पर वो एनर्जी देख रहा हूँ, वो चमक देख रहा हूँ, आंखों में डिटर्मिनेशन देख रहा हूँ, जो मुझे पूरा विश्वास दिलाता है कि आप लोग शंघाई में सिर्फ एक ग्लोबल कंपटीशन का हिस्सा बनने नहीं जा रहे हैं। आप 140 करोड़ भारतवासियों के टेक्निकल एक्सीलेंस, डिसिप्लिन, प्रिसीजन और हमारे बदलते आत्मविश्वास का परचम फहराने जा रहे हैं। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में स्किलिंग की डेफिनेशन और उसके अप्रोच को रिविजिट बहुत जरूरी है।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह सम्मेलन संसदीय कामकाज और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के बारे में विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC बृहस्पतिवार को चरक पालिका अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। ये शिविर सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। NDMC ने कहा कि शिविर का उद्देश्य नागरिकों को आगे आने और किसी की जान बचाने में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखें अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रूपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कंफर्म होने से पहले राइडर से ज्यादा पैसे देने के लिए कहा जाता था। ये कार्रवाई भारत में चल रहे कैब और बाइक टैक्सी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की सेक्टर वाइड जाँच के बाद की गयी है। जाँच के दौरान CCPA ने पाया कि रैपिडो का एल्गोरिदम कन्फर्म शेमिंग जैसा था, जो डार्क पैटर्न की रोकथाम और रेगुलेशन के लिए 2023 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत पहचाना गया डार्क पैटर्न है। इसमें उपभोक्ता को ज्यादा पैसे देने के लिए सहमत नहीं होने पर राइड खोने का डर पैदा करता है। मंत्रालय ने कहा कि रैपिडो के खिलाफ ये कार्रवाई CCPA के राइड हेलिंग और बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म पर एडवांस टिप और डार्क पैटर्न प्रैक्टिस की बड़ी जांच का हिस्सा है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए शत प्रतिशत आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है।
4: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल पर डिजिटल लॉकर की सुविधा शुरू की है। वाणिज्यिक पहल के अंतर्गत प्रदान की गई ये सुविधा यात्रियों को सामान के स्थायी भंडारण के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और परेशानी मुक्त विकल्प प्रदान करती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 41 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग ने बताया कि कल राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों के लिए 10,000 सुरक्षित और किफायती हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की। आशा कार्यकर्ताओं के निर्धारित मासिक प्रोत्साहन को दोगुना कर 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली नगर निगम ने 296 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला दिल्ली में जारी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।
8: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
9: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
8: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

लबो और सार की बातें चलेंगी, खुशी की रार की बातें चलेंगी, फकीरों का यहाँ पर जिक्र होगा, यहाँ जरदार की बातें चलेंगी। ये मौका महफिल शेर व सुखन है, ये मौका महफिल शेर व सुखन है, यहाँ अशार की बातें चलेंगी, यहाँ अशार की बातें चलेंगी,

0: श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे आरजे आनंद को। यह है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो, बातें होती हैं दिल से दिल तक। और आज की शाम हमने फिर से किसी एक खास मेहमान को बुलाया है। एंड ऑफ कोर्स इनकी आवाज से आप रूबरू हो चुके हैं एक बार। अगर आपने आज रेडियो ट्यून इन किया है तो कोई बात नहीं, आज फिर से हम आपसे उनको मुखातिब करवा देंगे। आज हमारे स्टूडियो में एक नहीं बल्कि दो दो महान लोग मौजूद हैं। एक तरफ राशिद भाई हैं और दूसरी तरफ मनु भाई हैं। और इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एफएम मुरादाबाद की स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो।
1: धन्यवाद आनंद भाई,
0: थैंक यू सो मच जी। मनु जी नमस्कार, आप कैसे हैं सर?
2: बहुत अच्छा हूँ मैं,
0: आते जाते तो बहुत मिलते हैं आपसे, लेकिन
2: आपसे मिलकर तो एक अलग वाइब आती है।
0: अरे क्या बात है, हमें भी बहुत अच्छी वाइब आती है, इसलिए तो हम आपको लगे हाथ बुला लेते हैं। खैर आज तो काफी एक लंबे अंतराल के बाद मुलाकात हो रही है मेरी आपकी।
2: हाँ बिल्कुल,
0: है ना। लेकिन हमारे जो श्रोता है ना, उनको आप ज्यादा लंबे अंतराल पे सुनाई नहीं देते क्योंकि आपके बीच बीच में सेशन आते रहते हैं, तो वो जहन में रहता है फिर। अच्छा ये मनु भाई है, चलिए राशिद भाई पहली बार आए हैं तो जरा उनसे कुछ वार्तालाप करता हूँ जी। राशिद भाई आज आप सेकेंड टाइम आए हैं, इनफैक्ट
3: जी जी
0: मैं भूल गया। तो आप बताइए सर कैसे हाल चाल है, कैसे मिजाज है?
3: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: मैं बढ़िया हूँ, हैंडसम हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, आप देख ही रहे हैं। आपके जी सामने चकाचौंध में बैठे हैं लाइटिंग में
3: जी, जी।
0: तो बताइए सर आज आप हमारे मुरादाबादी को क्या स्पेशल सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दीजिए हमारे जानने वालों को।
3: जी देखिए मेरा नाम राशिद सैफी है और मैं एक छोटा सा कलमकार हूँ, छोटा सा लिखने वाला हूँ, और मैं राशिद मुरादाबादी के नाम से अपनी कविताएं और गजलें लिखता हूँ। और मुरादाबाद के ही अंदर जहाँ कहीं भी मुझे मंच पर थोड़ा बहुत मौका मिलता है तो मैं अपनी कविताएं वहाँ पेश करता हूँ। और
2: ऐसी बात नहीं है रजित भाई, हम आपको जानते हैं, जितना
3: जी
2: आपने मतलब बड़े बड़े मंच शेयर किए हैं,
0: जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े
2: आहिस्तगी से बात रखते हैं।
0: और दूसरी बात आज आपको मुरादाबाद में मनु जी ने लेकर आए, इतना बड़ा मौका आपको मिल रहा है, लाखों लोग आपकी आवाज़ सुनने वाले, तो ये मुझे लगता नहीं कि छोटा मंच है। और अब आप ये कह नहीं सकते हैं
2: सर, यही बड़ा मंच है,
3: मंच बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अपने आप को छोटा मानता
0: हूं। मेरे हिसाब से तो कोई कलाकार छोटा बड़ा नहीं होता मनु जी, है ना?
2: हाँ, बिल्कुल।
0: लेकिन वो इनकी अपनी मतलब कह सकते हैं बड़प्पन है, जो अपने आप को इतना दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
3: नहीं देखे समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं
0: जी,
3: और सब एक से बढ़कर
0: एक है, मैं मानता हूँ।
3: और हमें हमेशा जो है, हम अगर एक रुपए बराबर हैं तो हम उसे 50 पैसे बराबर हम अपने आप को बताना चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपने आप को कम ही
0: आंकना चाहिए,
3: आंक कर दूसरों को बताना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये और मैं वो, ये मैं वाली जो वो है स्थिति, ये नहीं आनी चाहिए। खास तौर से एक कलमकार जो साहित्यकार होता है वो कभी मैं में नहीं रहता है।
0: क्या बात है, साहित्य की दुनिया से निकल के आज रेडियो की दुनिया में पहुंचे हैं जनाब
3: जी,
0: तो
3: जी।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है खैर मकदम में हमारे स्टूडियो में आपका।
3: शुक्रिया।
0: और आज तशरीफ लेकर राशिद भाई साथ मनु जी भी आए हैं, तो उनसे भी कुछ ना कुछ सुनेंगे हम हमारे स्टूडियो में। ये जो उर्दू थोड़ी बहुत मैंने सीखी है वो ऐसे लोगों से सीखी है, और शायद मेरी भी जो है अब लैंग्वेज थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी और उसमें तब्दीली होगी जरूर, बहुत जरूरी है एक अनाउंसर के लिए।
3: तो ऑलरेडी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे
0: नहीं। ये तो आप बता सकते हैं सर।
3: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुनते हैं ना।
0: अरे
3: हम आपको आप आज दूसरी बार मिलने का सौभाग्य
0: सर हमें
3: मिल रहा है, हमें
0: मिल रहा है,
3: लेकिन हम अक्सर एफएम मुरादाबाद पर आपको सुनते हैं, और सुनने के बाद में मतलब एक बड़ा एक आनंद सा आता है, जैसे कि आपका नाम है,
0: शायद यही सोच के माँ बाप ने नाम रखा होगा कि मैं कुछ तो आनंदित करूंगा।
3: बिल्कुल,
0: वो कहते हैं ना कभी कभी आपका नाम आपको वो करने पे मजबूर कर देते हैं, सोचते भी नहीं हो।
3: बिल्कुल
0: बिल्कुल, बच्चन जी को ले लो
3: जी,
2: नाम का बहुत बड़ा।
3: मुरादाबाद के लाखों लोग आपको सुन के आनंदित होते हैं, ऐसा मेरा सोचना है।
0: चलिए सर, मैंने इस बात की आपको खैर पैसे नहीं दिए थे, आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है। आज मनु जी किसी हीरो को पकड़ के ले आए हैं दोबारा, ऐसा लग रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है एक कलाकार को तारीफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर वो कुछ अच्छी चीज कर रहा है और उसमें उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस या हौसला अफजाई उसे मिल जाता है तो उसे और काम करने का पोटेंशियल उसका बढ़ जाता है।
2: ये जो चीज होती है
0: जी,
2: ये उसके लिए कैटलिसिस का उत्प्रेरक का काम करती है, उसकी कीमत और भी, और श्रोताओं को इस चीज का आनंद ये मिलता है कि और कुछ अच्छा जो बोलने की, कहने की, पढ़ने की प्रेरणा एक साहित्यकार को, एक कवि को, एक शायर को मिलती है।
0: बिल्कुल,
2: तो उसका फायदा हमारे श्रोता
0: कहीं ना कहीं, मैं भी आप लोगों से कनेक्टेड ही हूँ, है ना? आप साहित्यकार की दुनिया में हैं, हम आवाजों की दुनिया में, तो कहीं ना कहीं है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड।
2: आवाज से सिलसिला है।
0: एग्जैक्टली, अब लोग हमें सुनकर ही अपने मन में एक छवि बनाते हैं
3: जी जी,
0: राइट। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो राशिद जी को नहीं जानते हैं, वो सिर्फ आपकी आवाज से एक इमेज बनाएंगे, तो ये एक पावर है रेडियो की।
3: बिल्कुल,
0: है ना, ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो राशिद भाई आज आप आए हैं तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ बेहतरीन आज सुनाएंगे मुरादाबादी इसको, लेकिन उससे पहले हम आपको एक अच्छा गीत सुना देते हैं जी, जी। तो अगर कुछ आप अपनी तरफ से कुछ पेश करना चाहें, कोई गीत आज सुनवाना चाहिए, मौका मैं आपको दूं और अपनी आवाजों में उसे गुनगुनाना चाहें, तो कौन सा गीत होगा जो आप चाहेंगे कि लिसनर को सुनाएं हम?
3: देखिए, मैं जो आज आपको सुनाऊंगा अपनी जो लिखी हुई एक कविता है वो तो माँ के ऊपर है।
0: ओके, लेकिन अभी हम लिसनर को कोई गाना सुनाना चाहते हैं,
3: आप माँ के ऊपर ही कोई गाना अगर चाहें तो सुना सकते हैं,
0: जैसा आपको बेहतर लगे। कौन सा गाना है जो आपके
3: लिसनर को जो है, माँ तो हर किसी को प्यारी होती है, माँ तो हमारी माँ होती है, तो माँ के लिए कोई भी गाना एक
0: जो आपके जहन में आ रहा है, मैं तो चलाऊंगा।
2: हमारा आग्रह यह है राशिद भाई कि आप दो पंक्तियां उसकी गुनगुनाते हैं करिए, ताकि गीत का आगाज हो सके और प्रोग्राम का भी।
0: मेरे जहन में तो एक ही कह रहा है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है।
3: हाँ, वो तो सदाबहार गाना है, सदाबहार वही प्ले कर दीजिए,
0: बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे कैसे प्ले कर देंगे, हम तो आपसे सुनेंगे ना, हम तो तभी आगे बढ़ेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, दो लाइनें।
3: तू कित

क्या बात है। चलिए, ये नहीं पता था कितना इनके अंदर खजाना है, सिर्फ ये साहित्यकार की दुनिया में नहीं, मुझे लगता है सिंगिंग की दुनिया में भी कुछ करते हैं। वो तो अभी आके पता चलेगा। फिलहाल ये गाना सुनते हैं, उसके बाद मिलते हैं।

0: बहुत खूबसूरत ट्रैक, और सच बताऊं तो ये गाना सुन के गूज़बम्प्स आने लगते हैं। और ये कुछ वो गाने हैं जो जिनको आप जितनी बार भी सुन लो ना, आपका मन नहीं भरता, ऐसा लगता है दोबारा सुने। क्यों मनु जी, राशिद जी,
1: बिल्कुल
0: जी, जी है ना। और ये गाने नहीं है एक्चुअली, में सच्चाई है जो हमें दुनिया के सामने वाकिफ कराती है, दुनिया में हमारे लिए माँ कितनी इंपॉर्टेंट है गानों के जरिए। तो मनु जी, आप, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। राशिद भाई से तो लगातार बातें चल ही रही है, आप भी हमारे बीच में शामिल है, तो हम आपको कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? आप कुछ कहिए अपने बारे में, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में।
2: कहना क्या है, मैं तो बस पब्लिक, श्रोतागण, आप सभी महसूस करते हैं, मैं बार बार अपना क्या
0: आवाज में इतनी क्वालिटी है, इतना बेस है, इतना यू नो एनर्जी है।
2: मैंने क्या बताया, ये आपकी मोहब्बत है और ये
0: मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत तो अलग है ही,
2: जो प्यार है
0: और राज तो नहीं है, कुछ स्पेशल तो नहीं खाते।
2: ये जो श्रोताओं का प्यार है, यही इस चीज को इनहेंस करता है।
0: क्या बात है।
2: तो मैं एक मुकम्मल आगाज के साथ, दो चार मिस्रों के साथ आगाज कर दूं।
0: बिल्कुल जी, इरशाद इरशाद
2: कहता हूँ
0: जी जी।
2: लबो रुखसार की बातें चलेंगी, खुशी की रार की बातें चलेंगी,
0: वाजी वाह,
2: फकीरों का यहाँ पर जिक्र होगा, यहाँ जरदार की बातें चलेंगी।
0: क्या बात,
2: ये मौका महफिल शेर व सुखन है, ये मौका महफिल शेर व सुखन है।
0: क्या बात है,
2: यहाँ अशार की बातें चलेंगी, यहाँ अशार की बातें चलेंगी, अदब की हस्तियों के दरमियाँ हैं बड़े मयार की बातें चलेंगी।
0: क्या बात,
2: अदब की हस्तियों के दरमियाँ हैं बड़े मयार की बातें चलेंगी, जरा सी फिक्र की बातें करेंगे, फलक संसार की बातें चलेंगी, और सरापा हुस्न में डूबेंगे जमकर,
0: जमकर
2: सनम इजहार की बातें चलेंगी।
0: क्या बात,
2: बशर्ते रूठ भी जाए अगर वो, तो फिर मनुहार की बातें चलेंगी,
0: मनुहार
2: तो फिर मनुहार की बातें चलेंगी, गमों की खार की बातें चलेंगी, यहाँ अशार की बातें चलेंगी।
0: क्या बात, क्या बात, क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने जो ये पंक्तियां रखी, बहुत मजेदार थी। लेकिन जो भी बोलो, मुझे तो सुन के मजा आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा कि मैं भी साहित्यकार न बन जाऊं आरजे से। खैर, वो तो इस जन्म में नहीं हो सकता है। राशिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे?
3: जी जी, देखिए बहुत ही अच्छी नज़्म सुनाई हमारे मनोज भाई ने, और आपने सही कहा, इनकी आवाज में एक वजन है और एक लगाव है, एक आकर्षण है जो अपनी ओर आकर्षित करती है आवाज।
2: मोहब्बत, मोहब्बत की मोहब्बत।
3: जी जी, तो नहीं नहीं, ये सच है। तो मैं भी मनोज,
0: मैं काफी बार नोटिस कर चुका हूँ, नहीं नहीं, मेरे स्टूडियो में बहुत बार आ चुके हैं, इसीलिए क्योंकि हम भी आवाजों की दुनिया में रहते हैं, तो इतना तो पता लग जाता है।
3: बिल्कुल,
0: है ना, तो वो चीज है, और जो जब लगे वो कह देना चाहिए।
3: जी जी,
0: है ना,
3: कहीं ना कहीं आपकी आवाज में बहुत मिठास है मनोज भाई की, जिससे मैं बहुत मुतासिर हूँ।
0: क्या बात है, मुतासिर, मुझे एक नया शब्द सीखने को मिल गया।
2: बिल्कुल, आप सुनेंगे,
0: मुझे आप लोग क्लास दो यार उर्दू की, मुझे जरूरत है,
2: सीखते चले जाएंगे, साथ कारवा चलता रहेगा।
0: मुतासिर का मतलब तो बता दीजिए, लाइव ऑन एयर, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, उन्हें भी पता चल जाएगा।
3: प्रभावित हूँ,
0: प्रभावित,
3: जी जी,
0: उसको उर्दू में कहते हैं मुतासिर,
3: प्रभावित,
2: प्रभावित
3: और मुतासिर उर्दू में,
0: उर्दू में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, चलिए एक जिंदगी में एक नया शब्द सीखा,
2: भाषाओं का संगम, यही तो है भारत।
0: एग्जैक्टली, चलिए बहुत बढ़िया जी। राशिद जी, स्वागत है आपका, बताइए।
3: हाँ देखिए, मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता, जो माँ के ऊपर, जैसा कि मैंने अभी पहले,
0: हमने गाना भी सुना माँ के,
3: गाने से पहले जो है मैंने कहा था, तो वो मैं रखना चाह रहा हूँ
0: प्लीज,
3: और सभी हमारे श्रोताओं को, मुरादाबाद के श्रोताओं को, क्योंकि माँ ऐसा शब्द है, यानी ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा एहसास है कि हर किसी को माँ शब्द से ही प्रेम है। माँ तो बहुत दूर, वो तो उनसे तो है ही है, लेकिन माँ का शब्द जहाँ लिखा होता है बस उसी से प्रेम है।
0: क्या बात,
3: और माँ के लिए जितने भी शब्द लिखे जाए वो कम है, पूरी दुनिया में जितने भी शब्द माँ की, माँ के समर्पण के लिए, माँ के प्यार के लिए, माँ के प्रेम के लिए लिखे जाते हैं, माँ के त्याग के लिए, वो सारे कम है। मैं ये समझता हूँ, तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, मैं आपके सामने रखता हूँ। ममता और प्यार ऐसा दिखाती है माँ, ममता और प्यार ऐसा दिखाती है माँ, तड़प के बच्चों को सीने से लगाती है माँ।
0: क्या बात,
3: तड़प के बच्चों को सीने से लगाती है माँ, और सोती है खुद कांटों भरी सेज पर मगर, सोती है खुद कांटों भरी सेज पर मगर, मखमल के बिस्तर पे हमें सुलाती है माँ।
0: क्या बात है,
3: मखमल के बिस्तर पे हमें सुलाती है माँ,
2: सुलाती है माँ,
3: और जीवन की विपत्तियों की कड़ी धूप में,
0: क्या
3: विपत्तियां, परेशानियां जो जीवन की, जिंदगी की आती है हमारे सामने, कि जीवन की विपत्तियों की कड़ी धूप में संतोष का ठंडा साया बनकर बन जाती है माँ।
0: क्या बात है,
3: संतोष का ठंडा साया बन जाती है माँ, और बताकर अच्छे बुरे का फर्क बचपन से ही, बताकर अच्छे बुरे का फर्क बचपन से ही दुनिया में जीना हमको सिखाती है माँ।
0: क्या बात है,
3: दुनिया में जीना हमको सिखाती है माँ। बचपन से ही माँ जो है बताती है बेटा देखो ये करते हैं, ये ऐसे ये नहीं करते, ये
0: गलत
3: बात है, सब
2: प्रथम गुरु है।
3: हाँ बिल्कुल, तो बचपन से ही हमें जो है हर चीज की अच्छाई बुराई माँ समझाती है।
0: बहुत बेहतरीन,
3: तो अगला मैं रखता हूँ आपके सामने
0: जी।
3: आती है जब मुश्किलें उसके बच्चों पर,
0: क्या बात है,
3: आती है जब मुश्किलें उसके बच्चों पर चट्टान सी सामने खड़ी हो जाती है माँ।
0: क्या बात है,
3: चट्टान सी सामने खड़ी हो जाती है माँ।
2: ईश्वर ने ये सामर्थ्य माँ को दी है,
0: सच बात है,
3: बिल्कुल हकीकत है। और पालती है 9 महीने अपनी कोख में हमें, पालती है 9 महीने अपनी कोख में हमें, तभी तो भगवान का रूप कहलाती है माँ।
0: क्या बात है,
3: तभी तो भगवान का रूप कहलाता है माँ। पर ये अंतिम है जो बड़ा थोड़ा दुख भरा है, दर्द भरा है
0: जी,
3: ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये उनके लिए है जिनके जीवन में इस चीज की कमी है, यानी के और माँ की कमी का दुख पूछे कोई उनसे, माँ की कमी का दुख पूछे कोई उनसे, जिनकी दुनिया से जल्दी चली जाती है माँ, जिनकी दुनिया से जल्दी चली जाती है माँ। ये कमी तो खैर उन्हीं लोगों से पूछी जा सकती है जिनकी जीवन में माँ
2: बहुत बड़ी बात है वास्तव में। और आपने जो है एक अलग तरफ मोड़ दी है दिशा,
0: सच में
2: हमारे श्रोतागण ये बात महसूस कर रहे होंगे। और वाकई जो आपने एक सब्जेक्ट लिया माँ, ये दूसरी चीज ये कि जो शब्दावली आपकी वो कितनी सदी हुई, कितनी अच्छी, हिंदी उर्दू दोनों का संगम, और वो एहसास जो आप बताना चाह रहे थे मुझे पूरा यकीन है कि हमारे श्रोताओं तक बिल्कुल पहुंच रहे होंगे।
0: बिल्कुल, उसके जो भाव थे उसमें जो एक मतलब खुशी भी थी, तकलीफ भी थी, दोनों चीजें आपने बयां कर दी और लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि वही बात के जो महफिल है, मैं कहना चाहूंगा कि ये रूहानी हो गई है।
0: क्या बात है
2: कि नहीं है,
0: क्योंकि
2: रूह से रूह तक जाती है तो फिर वास्तव में बात रूहानी हो ही जाती है।
3: बिल्कुल।
2: तो आनंद जी, मैं जैसे कि अभी भैया ने माँ के बारे में बातचीत की
0: जी,
2: तो मैं कहता हूँ कि माँ पिता ये वो अनमोल रुतवा है, ठीक है ना, जिसका दर्जा ईश्वर के समतुल्य बल्कि उससे भी ऊपर पहुंच जाता है।
0: बिल्कुल।
2: तो जब जिक्र माँ का हुआ है तो मैं एक रचना के एक दो बंद
3: बिल्कुल
2: जो पिता को समर्पित है, मैं इसे कहकर के राशिद भाई बात को
3: जी
2: एक समानता के बीच लाने की कोशिश करता हूँ।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: आप तो ऐसे देखें कि छिपा पता क्यों पिता में, अगर मात्रा हटा दें तो पता हो जाता है, सब पिता है।
3: बिल्कुल।
2: छिपा पता क्यों
3: पिता में
2: हुआ कभी ये भान,
0: सही बात,
2: छिपा पता क्यों पिता में हुआ कभी ये भान, उनसे ही अस्तित्व है, उनसे ही पहचान, उनसे ही अस्तित्व है, उनसे ही पहचान, सिर पर छांव पिता की, कच्ची दीवारों पे छप्पर,
3: क्या कहें,
2: सिर पर छांव पिता की, कच्ची दीवारों पे छप्पर, पद क्या क्या कहते हैं पिता के बारे में,
0: जी।
2: आंधी बारिश खुद पर झेले, हवा थपेड़े रोके, जर

0: छप्पर
1: बहुत हो,
0: सिर पर छांव पिता की, कच्ची दीवारों पे छप्पर। और इस अंतरे में माता और पिता दोनों के साथ
1: दोनों का समावेश
0: चलते हैं।
1: क्या बात है।

0: छप्पर सिर पर छाँव पिता की, कच्ची दीवारों पे छप्पर।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
2: बहुत खूबसूरत। तो, मनु जी आनंद आ गया। बहुत खूबसूरत जो है, आपने एक नई तरफ जो है चीजों को मोड़ दिया आपने, बहुत बेहतरीन।
0: नहीं, मुझे महसूस हुआ कि माँ जैसी अजीम शख्सियत के साथ पिता जैसे अंबर का जो आशीर्वाद है वो जब पहुंचे तो ये जो हमारा सुनना है, हमारा पढ़ना है, ये सब सार्थक हो जाए और एक सकारात्मक संदेश हमारे श्रोताओं को भी मिले, जिससे कि आनंद के साथ साथ एक जो मैसेज है, हालांकि ये कवि धर्म है कि कोई भी बात है, अगर कोई भी रचना है हमारी, तो वो समाज को एक ऐसा संदेश दे जिससे उसके सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि हो।
1: बिल्कुल,
0: तो ये खुदा को पसंद है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: बहुत बढ़िया मनु जी, बहुत आनंद आया इसी बात पे। एक बहुत ही बढ़िया
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: गाना मैं पिता के लिए प्ले करना चाहूंगा। एक बहुत अच्छी फिल्म थी आमिर खान साहब की, कयामत से कयामत तक, उसमें गाना है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो यही गाना, अब भाई इतनी सारी बातें हो रही है, मदर के ऊपर हमने सुना, अब हम फादर के ऊपर सुन रहे हैं, तो प्रोग्राम में चार चांद लग गए। इस गाने के बाद हम आएंगे और फिर अपने साथियों से इजाजत लेंगे। श्रोताओं आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है

0: खूबसूरत नगमों और बातों से सजाए प्रोग्राम और इस महफिल को खूबसूरत बना रहे हैं मनु जी, राशिद जी हमारे बीच में एफ एम मुरादाबाद 89.6 के साथ अपना समय साझा कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत जो है माहौल इन्होंने बना दिया है। मैं इनके बारे में क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं आ रहे, लेकिन फिलहाल ऐसी चीजें जब हम सुनते हैं और उन्हें समझते हैं तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है और एक अलग दिशा मिलती है। देखिए गाने बातें खूब सारी चीजें चल रही है, सोशल मीडिया है, तमाम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं मतलब एक अलग माहौल बन जाता है। वो वाली चीज है जो आप लोग वार्तालाप कर रहे हैं हमारे साथ, हम आपके साथ, ये एक अलग पड़ाव है, मतलब एक अलग मोड़ है जहाँ पर अगर हम सुने तो बस सुनते ही रहें।
1: बिल्कुल
0: ऐसा सिनारियो हो रहा है। और मैं तो जब से सर से जुड़ा हूँ तो मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है। पहले मैं सोचता था क्या होता है ये साहित्य, ये रचना शब्दावली क्या होती है, ये सब मतलब कुछ पता ही नहीं था मुझे, सिर्फ सुनता था क्योंकि मैं रेडियो पे मैंने बहुत सुना है, लेकिन अब जब करीब से जानने का मौका मिला है तो चीजें समझ में आ रही है।
2: ये जरा नवाजी है आपकी आनंद भाई, दो हमारे बुजुर्ग शायरों के चीजें सुने के पास आओ
0: जी
2: तो शायद हमें समझ लोगे।
0: अरे वाह,
2: पास आओ तो शायद हमें समझ लोगे
0: जी,
2: ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं।
0: अरे वाह,
1: बिल्कुल
2: तो अब आपका साथ हमें मिला है और हमें हमें जो श्रोताओं का साथ मिला है तो जाहिर सी बात है कि हमें भी बहुत कुछ सीखने मिला और आप भी सीख रहे हैं जैसे कि आप बता रहे हैं, हालांकि सब जानते हैं।
0: नहीं सर ऐसा नहीं है, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जब कुछ नई चीजें जानने को सीखने को मिलती है तो फिर और मजा आता है चीजों को करने में। हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, क्रिएटिविटी की फील्ड में काम करते हैं राशिद भाई, तो हर दिन कुछ नया चाहिए,
1: हर दिन नया
0: है ना, तो जब तक नए लोगों से नहीं मिलेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। और हर दिन जब हम नए लोगों से रूबरू होते हैं तो कुछ नया सीखते हैं।
1: और यही देखिए जिंदगी का फलसफा है,
0: बिल्कुल
1: कि जो है हर दिन कुछ हम नया करें, हर दिन नया करें, क्योंकि यह जीवन हमें सिर्फ एक बार मिला है, तो हम कोशिश ये करें कि हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, कुछ क्रिएटिविटी के साथ करें और कुछ ऐसा करें कि जिससे समाज का भी भला हो।
0: बिल्कुल,
1: समाज को जो है अच्छी बातें पता चलें। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो है कुछ ऐसा लिखें जो लोगों को जिससे कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले। हमेशा मनोज जी, हम जो है और भी साहित्यकार हैं मुरादाबाद के, हम सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि समाज में कहीं ना कहीं हमारी जो लेखनी है उसके अंदर समाज का हित छुपा हो, समाज का कोई ना कोई भला हो।
2: ये बिल्कुल सही बात कही राशिद भाई, लेकिन जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो आनंद जी के कंधों पर ये वजन कुछ ज्यादा है क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी रियल ऑन एयर रहती है और इनका इनके मुंह से निकला एक शब्द वो पूरे वातावरण में फैलकर हमारे पूरे मुरादाबाद के श्रोताओं को और एफएम के श्रोताओं को
0: ये
2: इनके कंधों पर ज्यादा बोझ,
1: बहुत
2: ज्यादा बोझ है,
1: क्योंकि इस अच्छी चीजों को सजाकर ये सजाकर श्रोताओं तक जब पेश करते हैं ये असली रोल है, ये असली चीज है, श्रोताओं तक वो चीज इस तरीके से पहुंचे कि उनके दिमाग में बैठती जाए वो बात, उस वो कैरेक्टर ये प्ले करते हैं, वो किरदार ये निभाते हैं।
2: और आजकल का वो दौर जब की डिनाइस सिस्टम चल रहा है और बच्चे अपने माता पिता के बारे में भाई
1: जी
2: शब्द लगाते क्यों कैसे, ऐसी कंडीशन में उसे इस कलेवर में लपेट कर कि उनको भी वो चीज टच करे, पेरेंट्स को भी वो टच करे, जो ये गैप है जो इसका एक पुल बनाया जाता है, तो ये आनंद भाई का अपना जो एक तरीका है, जो इनका ये टैलेंट है, इसके सामने कौन बैठेगा।
0: अरे मनु जी ऐसा नहीं है, बस हमारी भी कोशिश होती है, प्रयास होता है कि अपने अगर हमें एक नई शुरुआत करने का मौका मिला है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो उसे सही दिशा में लेके जाएं और उसके जरिए से सही लोगों तक सही चीजें डिलीवर करें, है ना। जब तक हम एक मैसेज स्प्रेड नहीं करेंगे और सही से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे तब तक मजा नहीं आएगा। अगर एक पावर है, एक आपके पास मंच है, तो उसका सही इस्तेमाल किया जाए और सही टैलेंट मौका मिले और सही बात रखने का एक सही तरीका भी होना चाहिए।
2: बिल्कुल सही बात है,
0: तो बस
2: नहीं, आपका जो सोच है, आपका जो सोचना स्वस्थ है
0: जी,
2: तो ये जाहिर सी बात है कि जो हमारे श्रोतागण है इनको स्वस्थ ही बनाएगा, क्योंकि सीट पर बंदा कौन बैठा है, उसकी मनोस्थिति क्या है राशिद भाई
1: जी,
2: ये सबसे बड़ा दारोमदार होता है,
1: मैटर करता है बहुत,
2: कि हम अपना क्या संदेश किस तरह से पहुंचाने वाले हैं, तो ये जो जिस सीट पर व्यक्ति बैठा होता है उसकी जो अपनी इंटेंशन होती है वही चीज है। जैसे कि मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं इस जगह को एक उदाहरण के साथ देना चाहूँ तो जैसे जहाज पर जो जहाज चलाने वाला कैप्टन होता है ना, वो सारी दिशा उन सारे के सारे जो पैसेंजर्स हैं उन सबकी दिशा तय कर देता है कि उसे कहां और किस तरह से लेके चलना
1: है।
2: तो यही सीट का प्रभाव है। आनंद जी मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं कि आप इतने बड़े काम पर, इतनी बड़ी सीट पर हैं जिसका दारोमदार ये है कि हम पूरा शहर उसे इन्फ्लुएंस होता है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो इन्फ्लुएंस जो है सकारात्मक है।
0: बिल्कुल सर, हमारी भी कोशिश होती है कि अभी हमारी शुरुआत है, हम तो अभी जेन ज़ी है, अभी स्टार्टिंग है हमारी तो लाइफ की, तो जितना हो सके अच्छी चीजें करें और अपने श्रोताओं को, मेरी तरह और भी तमाम लोग हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, बट वो ये किसी का पहुंचता है किसी का नहीं पहुंच पाता है, किसी का ऐसा होता है कि समय पर स्पॉटलाइट में आ जाता है कोई बंदा, कोई देर से आता है ना, बट मेरा मानना ये है कि जब भी मौका मिले बस अच्छा करते जाओ, सिर्फ अच्छा करो, आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, है ना, जिस इंटेंशन से आप बात करोगे रिवर्ट भी वैसे ही मिलेगा, तो बस सिंपल सा मौका है। बाकी मनु जी थैंक यू, राशिद भाई आपको भी थैंक यू। चलते चलते आप लोग क्या अपनी तरफ से बोलना चाहोगे, क्या मैसेज दोगे?
1: देखिए मैं जो आपका रेडियो एफएम मुरादाबाद है,
0: जी जी,
1: पहले के जमाने से और अब तक बहुत सारी चीजें आई और बहुत सारी चीजें गई, बदली, काफी चीजें बदली, लेकिन मैं जहां तक ये समझता हूँ कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो पहले भी था और आज भी है, आज भी एफएम मुरादाबाद के नाम से रेडियो है और लाखों लोग इसको

0: सुन रहे हैं कि हम मुरादाबाद में और वैसे भी
1: बिल्कुल सही बात
0: वैसे है। भी चल रहा है देश के अंदर, तो रेडियो की महत्ता कम नहीं हुई है।
1: महत्ता की बात है सर, मैं समझता हूँ कि जो विजुलाइजेशन है उसमें बंदा अपना काम करते हुए उसमें उसको बाधा मिल सकती है, लेकिन जो ये केवल सुनने के लिए है तो इस चीज से वो उनके ना तो काम पर वो फर्क पड़ता है बल्कि और सकारात्मक तरीके से उन्हें और उसका एक एनर्जी बूस्टअप मिलता है।
0: बिल्कुल, और मेरा ऐसा मानना है कि देखने से ज्यादा सुनना जो है ना, सुनना वो बहुत ज्यादा दिमाग पर असर करता है देखने से ज्यादा, ये मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि व्यक्ति काम करते करते भी चीजों को सुन रहा है तो माइंड में उसके जा रही है, दिमाग में चीजें आ रही हैं और कहीं ना कहीं वो सोचता है।
1: बिल्कुल, हाथ अपना काम कर रहे हैं और सुनने के बाद दिमाग अपना
0: काम कर रहा है, तो देखने से ज्यादा भी मैं सुनने पर फोकस जो है अगर रहे इंसान का,
1: ये मल्टीटास्किंग में हो गया।
0: जी जी,
1: अगर देखना है तो सिर्फ देखेगा वो।
0: जी जी जी,
1: और यहाँ है कि सुन रहा है तो सुन भी रहा है और उसका काम भी लगातार अनवरत बिना बाधा के चल रहा है,
0: बाधा
1: एक बहुत बड़ी बात है,
0: ये बहुत अच्छी बात है। तो ये रेडियो की जो महत्ता है वो आज भी बनी हुई है और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आनंद जी को कि मुरादाबाद के हमारे जो सम्मानित शहरवासी हैं उनको भी जो है रेडियो से रूबरू वो करा रहे हैं और हर तरीके से उनको उनका मनोरंजन भी कर रहे हैं संगीत के साथ में और अच्छी अच्छी जानकारी
1: पूरा
0: अच्छी अच्छी जानकारी। हाँ बिल्कुल,
2: बहुत जरूरी है राशिद भाई। अब देखिए, अगर हमारे पास एक मंच है और आप जैसे अच्छे कलाकार हैं तो उनको भी एक मौका मिलना चाहिए, है ना। तो हम बस वही कोशिश करते हैं कि सिर्फ रेडियो पे गाने जानकारियों के अलावा जो लोकल टैलेंट है, जो लोकल अच्छे लोग हैं, आजकल इतने मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, उनके पास बस प्लेटफॉर्म नहीं है।
0: जी जी,
2: बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं मनु भाई, उन्हें एक मौके की तलाश है और अगर हमारे पास वो मौका है तो शायद उससे उनका टैलेंट और उजागर हो और हम भी कुछ अच्छा कर पाए और उनके मन को भी खुशी हो, टैलेंट रख पाए, बस वो चीज है। और रेडियो तो इतनी अच्छी पावर है, हमें नहीं पता इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं ये हमें नहीं पता हमें कौन सी पर्सनालिटी रेडियो पे सुन रहा होगा।
0: बिल्कुल
2: नो नेवर की हमें विधायक जी सुन रहे हो, हमें नहीं पता हमें कोई पुलिस ऑफिसर सुन रहे हो, और हो भी सकता है सुन भी रहा हो और सुन भी रहा, क्योंकि ये एक रेडियो, क्योंकि हमें नहीं पता किस वक्त कौन श्रोता ट्यून इन कर ले। आई डोंट नो।
1: नहीं, अच्छा दूसरी चीज एक और है कि इंटेंशनली अगर कोई हमें सुनता है तो उसका प्रभाव अलग और हम किसी को जबरदस्ती सुनाना चाहते हैं तो उस दोनों बातों में बहुत अलग। तो ऐसी कंडीशन में जब एक रिलैक्स मूड से कोई भी व्यक्ति, वही जैसे कि आपकी सीट पर आपका जो दायित्व है वो वेरी करता है, तो जिन जिन कानों तक ये बात पहुंच रही होगी अपने अपने स्तर पर वो उस चीज के लिए जो भी डिसीजन लेना चाहेंगे
0: बिल्कुल
1: स्वतंत्र हैं, वो कर सकते हैं।
0: कहीं ना कहीं विचार जब लोगों तक पहुंचते हैं, अच्छे विचार जब लोगों तक पहुंचते हैं तो वो सोचते हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग उसमें से उसको फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं।
2: जरूर, बेशक बहुत जरूरी है अच्छी चीजें फॉलो करना। राशिद भाई, मनु भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
0: धन्यवाद,
2: आप आए, आपने इस महफिल को इतना खूबसूरत बनाया और बाकी का जो पिटारा है वो संभाल के रखते हैं, फिर बुलाएंगे आपको, परेशान करते रहेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और बाकी हम चाहेंगे आप लोग भी अपना साथ ऐसे निभाते रहे हमारे स्टेशन के साथ, और ये जो मंच है एफएम मुरादाबाद का, ये जो स्टेज है वो आप जैसे कलाकारों के लिए हमेशा खुला, आपका जब मन करे आप आ सकते हैं, आपका एक परिवार है एफएम रेडियो।
1: शुक्रिया। बस इसके अलावा और क्या कह सकते हैं,
2: बस थैंक यू।
1: इसमें हम सोचते हैं कि सारी बातें आप तक,
2: बस बहुत बढ़िया। और बाकी दोस्तों मैं भी अब जो है इजाजत लेना चाहूंगा, समय की थोड़ी सी जो है कमी है, क्योंकि वो है ना कि समय के साथ नहीं चलोगे तो फिर लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कंधों से कंधा मिलाकर चलना है तो पहले समय के साथ चलिए, समय वो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको लाइफ में आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। सिर्फ एक मिनट रहती है, अगर ट्रेन जाती है तो बड़ा पछतावा होता है, काश एक मिनट पहले पहुंच जाता है ना। तो वो चीज है, बस समय के साथ चलिए और ये जो घड़ी की सुइयां है ना बहुत कुछ जिंदगी में बदलती है। फिलहाल अभी मैं यहाँ से निकलना चाहूंगा, समय बहुत कम है, टिक टिक करके मुझे इशारा कर रही है घड़ी की सुइयां कि बेटा निकलो बाहर, बहुत बातें हो गई हैं। तो कुछ अच्छे गीत आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए और ऐसे ही धाकड़ लोगों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 हमारे साथ। अगर आप भी कुछ अच्छा शेर व शायरी करते हैं, अगर आपके अंदर कोई अच्छा टैलेंट है तो उसे बेशक आप हमारे मुरादाबाद रेडियो तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें एक मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पे 9837896896 9837889689 पर हमें मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और अपना टैलेंट, मुरादाबाद में कहां से हैं आप, हमारी टीम जल्दी आपसे संपर्क करेगी और हो सकता है अगला नंबर आपका हो मुरादाबाद स्टूडियो में। बाकी ऐसे ही सुनते रहिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छे गानों के लिए आपके शहर का अपना लोकल रेडियो, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और मोड़ पर इसी चैनल पर, तब तक के लिए कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, बाय बाय, नमस्कार।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
4: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
3: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार के आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहां हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों चालक दल के

0: प्रदर्शन किया है।
1: आज 2026 में डीआरडीओ ने मिसाइल से लेकर रडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता।
0: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि एक ऐतिहासिक समझौता है।
2: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
3: किशाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रूपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रूपये से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली एमडीआर लगेगा, जबकि 75,000 रूपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए एमडीआर की सीमा 300 रूपये प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का यह शुल्क यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 43,81,00,000,00,000 तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर 26,86,00,00,000 पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉ सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सके और किसानों को लाभ पहुंचा सके। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक DM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

गणपति बप्पा मोरिया, सब हो गई है। दिल तक अखिल संग।

0: शाम का वक्त है साहब, मूड फ्रेश है और रेडियो पर है आपका अपना दोस्त अखिल। जी हाँ, आप सही कहा, बिल्कुल सही सुन रहे हैं साहब। आपका अपना ही शो दिल से दिल तक अखिल संग, जहाँ बातें होती हैं, दिल की हंसी होती है खुलकर और एंटरटेनमेंट होता है बिल्कुल एकदम फुल ऑन। चाहे आप घर पर हैं, चाय की दुकान पर हैं, या फिर स्टेयरिंग व्हील पकड़ के घूम रहे हैं, अपनी डेस्टिनेशन को ढूंढ रहे हैं इधर से उधर, हाँ भाई कहाँ पे मोड़नी है गाड़ी और कहाँ लेना है राइट टर्न, तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हम ही होंगे आज, और खूब सारी होंगी दिल की बातें। तो चलिए अपने पहले लिसनर को बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या कर रहे हैं वो भी। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका और क्या कर रहे हैं इस समय?
1: और आपका कार्यक्रम लाइव होने कार्यक्रम में जुड़ा हूँ, और सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी गणेश पूजा की जय जय हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस समय क्या कर रहे हैं इंद्रजीत जी?
1: मैं सर एसी केयर में सर्विस करता हूँ सर, आज मेरा थोड़ा सा पीएमई था हॉस्पिटल में, थोड़ा सा परीक्षण था, वो तो भेजा जाता है टेस्ट के लिए।
0: ओके,
1: भेजा था सर, और एसी अपना ड्यूटी की तरफ से भेजा गया था और वहाँ आया, और कई केंद्र में फोन किया सर, प्रसारण भी सुना आपका कार्यक्रम में, लाइव में फोनिंग कार्यक्रम में जुड़ा हूँ।
0: क्या बात है।
1: और दिशा मूर्ति के मनोरंजन साथ में पसंद की गीत भी बता रहा हूँ, फिल्म का नाम है हमसे बढ़कर कौन, और गीत की मुझे देवा और देवा घर पति देवा तुमसे बढ़कर कौन, गायक मोहम्मद रफी चैलेंज के आशा पे। और सबसे पहले गीत आपको कहने निर्देशित आपको पूरे भारत राष्ट्र पता को रेडियो मुरादाबाद में जुड़े सभी लोगों को, आपके प्रमोशन के रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को,
0: ओके साहब, धन्यवाद आपका आज हमसे जुड़ने के लिए, और जरूर ये आपकी जो फरमाइश है पूरी की जाएगी, ये गाना जरूर प्ले किया जाएगा, धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई बात हो या कोई बात दिल से भगवान जी तक ही पहुंचानी हो, आपके अपने पास एक ही नंबर है 9837896896,

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और कहते हैं ना, जब भी आप गाड़ी लेकर निकलो तो साफ सीधे उसी दिशा में निकलो जहाँ पे पहुँचना हो। ऐसा ना हो कि बीच में लगी आई भूख, बोले साहब मेरी फेवरेट जगह है और मेरा फेवरेट ढाबा है रास्ते में, तो पहले कुछ थोड़ा चटपटा कर लेते हैं। नहीं जी नहीं, पहले पहुँचो घर और किसी को साथ में लेके जाओ साहब, ऐसे थोड़ी अकेले अकेले सारा क्रेडिट ले लेना है। सफर छोटा हो या लंबा, रास्ते याद रह जाते हैं, कुछ हैं जिंदगी में और कुछ दिल में बस जाते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज खूब सारी बातें करेंगे आपकी ड्राइविंग की। हाँ, अगर ड्राइविंग का शौक है ना, तो कहते हैं अंदर ही अंदर बस सामने गाड़ी दिखनी चाहिए, फटाफट भाई साहब दरवाजा खोलो और निकल लो। तो आज का एक सवाल है आप सभी से, अगर आप ड्राइविंग करते वक्त किस टाइप के ड्राइवर बन जाते हैं? पहला, गाना एकदम फुल ऑन चलता है धड़क धड़क धड़क करके, या फिर दूसरा, हर सिग्नल पे पौ पौ पौ पौ पौ। और हाँ, अगर पौ पौ पौ पौ नहीं भी चलता है तो तीसरा ऑप्शन है भाई साहब, गूगल मैप से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है भाई साहब, होगा गूगल मैप मत डालो, मुझे सारी गलियाँ पता है। तो इस तरह का अगर ड्राइवर है तो ज़रूर हमें 9837896896 पे कॉल करें और मैसेज करें। और कोई भी ऐसी बात अगर आपके साथ हुई हो कि भाई साहब कभी कभी गूगल मैप्स के सोचा जी गूगल मैप से नहीं जाएंगे और खुद ही पहुंचना था मगर पहुंचे गड़बड़ और पीछे बन गया खूब सारा आपका कॉमेडी। करेंगे खूब सारी बातें। एक शायरी आपके लिए भी, रास्ते बदलते रहे मंजिल बदलती रही, कभी स्पीड कम हुई कभी जिंदगी संभलती रही, सफर का असली मजा तब आता है दोस्तों जब स्टीयरिंग हाथ में और स्माइल चेहरे पे रहे। तो अपने लिसनर से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कह रहे हैं वो। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका और कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ सर, अखिल भाई को नमस्कार, मैं संजय बोल रहा
0: हूँ। नमस्कार संजय जी। संजय जी कैसे हैं आप? आपकी आवाज थोड़ी सी आज दर्द भरी सी लग रही, क्या बात?
1: नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी एक बार कॉल की तो आपने कॉल उठाया नहीं, दोबारा में लग गया तो इसलिए थोड़ी भारी हो गई।
0: आ गई साहब आपकी स्माइल वापस आ गई स्माइल। और क्या कर रहे हैं इस समय संजय जी आप?
1: इस समय बस लेटा हूँ, लेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ भूख कब लगे खाना खाऊं।
0: हम तो सोचे थे कभी आप ये कहो, हम बाद लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आए और बरस के चले जाए।
1: नहीं नहीं नहीं, वो तो सर मौसम के हिसाब से होता है, अभी तो वही सोच रहा हूँ ना,
0: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। कभी ऐसा हुआ है आप गाड़ी में सफर कर रहे हो और अचानक वही गाना प्ले हो गया जो आप चाह रहे थे या गुनगुना रहे थे, ऐसा कुछ हुआ है कभी संजय जी आपके साथ?
1: गाड़ी में तो नहीं हुआ था, मैं एक बार डेटा बस में था पंजाब में।
0: हाँ जी,
1: हमने अपने एक रूम में टीवी लगा रखा था तो लड़के लड़के हम आप लोग सलाह कर रहे थे कि ऐसी मूवी पत्थर के सामने मूवी देखने की बात, पत्थर मूवी सिनेमा का देखने तो बहुत दिन हो गए थे। और लेकिन उसी दिन हमारे टीवी चैनल में पत्थर कोई पत्थर के साथ मूवी
0: आ गई। मतलब कोई आसपास कोई था जो सुन रहा था आपकी बात है, उसने एकदम फटाफट ट्यूनिंग कर दिया आपके उसमें टीवी पे पिक्चर भी आ गई।
1: नहीं नहीं, हम जंगल में थे बिल्कुल, वहाँ जंगल में मंगल हो रहा था, वहाँ कौन सुनने आला।
0: तो क्या पता आप तो कहीं आपने टीवी को तो पत्थर नहीं दिखा दिया भाई साहब, अगर तूने आज पत्थर के सनम नहीं दिखाई तो ये पत्थर तेरे नाम।
1: आपने मतलब ऐसी वारदात पूछी तो सफर में तो नहीं, लेकिन हमारे साथ ऐसा वहां पे हुआ।
0: चलिए बहुत ही बढ़िया साहब, बहुत ही बढ़िया। और संजय जी, और कोई ऐसी फरमाइश आज कोई दिल से निकला हुआ गाना जो आप सुनना चाह रहे
1: हैं? गाना है फिल्म मूवी पुरानी है जो कलिया उसका सॉन्ग है,
0: तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, क्या बात है, क्या बात है। मैं तो सोचा था एक आध लाइन आप गुनगुनाई देते लता मंगेशकर। चलिए क्यों नहीं क्यों नहीं, तो ये भी फरमाइश पूरी की जाएगी। और कोई डेडिकेट, किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे ये गाना? सही है सही है साहब। चलिए साहब आप भी गुनगुनाइए और हम भी गुनगुनाते हैं ये गाना, और ऐसे ही आप कॉल लगाते रहें और अच्छा लगेगा। धन्यवाद धन्यवाद। श्रोता हमारे साथ जुड़े थे संजय जी, और आज बिल्कुल एकदम हंसी मजाक के मूड में कह रहे हैं, दिल से निकली आवाज़, और अपना एक किस्सा भी बताया उन्होंने कि हाँ कभी ऐसा हुआ उनके साथ कि जैसे ही उन्होंने कुछ सोचा और वो एकदम अचानक कहते ना यार आज ये गाना प्ले होना चाहिए था, मैं गाड़ी चला रहा हूँ बहुत देर से मगर ये गाना प्ले नहीं हो रहा। मगर उनके साथ ऐसा हुआ कि कोई मूवी देखना चाह रहे थे, कमरे में थे, और फिर थोड़ी देर बाद वही मूवी उनके स्क्रीन पे लग गई। तो साफ हो जाता है कभी कि आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर हमें बताएं 9837896896। चलिए तब तक करते हैं उनकी फरमाइश को एंजॉय और सुनते हैं गाना तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई।

0: promo.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
5: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, और खूब सारी बातें हो रही हैं आपके अपने ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे, जहां आप और हम कर रहे हैं दिल से दिल की बातें। तो चलिए साहब, अब तो स्टेरिंग पे से चलते हैं सीधे सीधे थोड़े से स्पोर्ट्स की तरफ। अगर आप भी निकल रहे हैं सोनकपुर स्टेडियम के आसपास से, तो पूरा पूरा मन करता होगा जी कभी कभी यहाँ भी आके हम एक आध क्रिकेट मैच खेल लें। हाँ हाँ, ज़रूर खेले होंगे आप भी मैच। और आज इंडिया और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सेकेंड T20 खेला जा रहा है साहब। और पहला T20 तो आपको पता ही है, हम लोगों ने 7 विकेट के रहते जीत लिया है। तो साहब, क्रिकेट फैंस के लिए आज की शाम भी बिल्कुल परफेक्ट है, और रेडियो पर पूरा एक्साइटमेंट चलेगा आपके साथ। इधर वोमन एशिया कप का भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमने वोमन एशिया कप अपने नाम कर लिया है और श्रीलंका को 72 रनों से हराया। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, 72 रनों से मात दिए। हमारी वोमेन क्रिकेटर्स ने भी एक बार फिर बता दिया, टैलेंट हो, कॉन्फिडेंस हो और टीम वर्क हो तो ट्रॉफी जी दूर नहीं है। वो बात आपको सबको पता ही होगी, ट्रॉफी ली क्यों नहीं है उन लोगों से, मगर ट्रॉफी बिल्कुल अपने पास है साहब। तो चलिए करते हैं अपने नए लिसनर से बात और पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं रिहान जी आप?
1: नमस्कार अखिल भाई, क्या हाल है?
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया रिहान जी, और इस समय क्या कर रहे हैं आप?
1: बस जैसे मैंने सीम कोट करवाई, जैसे बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है बीआई की सीम में, जियो में बिल्कुल बिल्कुल बिगाड़ चल रहा सर।
0: क्या पता आपने मोबाइल का कान अब साफ किया हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बीआई में कोट करवा ली सिम, जियो को बिल्कुल बिगाड़ चल रहा था।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं साहब, आप अब जियो तक आपकी आवाज पहुंच गई है, क्या पता वो भी वहां से कहते हैं भाई साहब आप खूब जियो खूब जियो।
1: बिल्कुल, और क्या।
0: और क्या कर रहे हैं रियान जी?
1: बस प्रोग्राम सुन रहे थे बस, और क्या कर रहे थे। मंगल आज अखिल भाई आए थे, आज बात कर ले, कई हफ्ते हो गए, 8 दिन हो गए बात कर हुए।
0: 8 दिन हो गए हैं बात कर हुए
1: जी।
0: चलिए साहब, तो कोई शायरी सुना दीजिए अब इसी बात पे।
1: लंबी है मंजिल पास से किनारा, दोस्त किनारा एसएमएस हमारा, भूल गए नंबर और नाम हमारा, दूसरा मिल गया आपको कोई प्यारा।
0: क्या बात है, आपने एक तीर से दो निशाने कर दिए रिहान जी, जहां तक मैसेज पहुंचना था वहां भी मैसेज पहुंच गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज,
0: सही सही कह रहे हैं। तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कभी आप गाड़ी में बैठे हो और ठपैक से वो वाला पसंद वाला जो आपका कहता ना अंदर से आवाज निकल रही थी यार ये गाना सुनना है आज, और वही गाना प्ले हो गया?
1: अरे सर वही तो गलती हो गई हमारी, एक किसी ने भी हमें धोखा दे दिया, आप बीच पर अटक गए।
0: कहां, कौन से वाले समुंदर के बीच पे?
1: ना, हम गांव जा रहे थे, हम रामपुर को,
0: रामपुर जा रहे थे, वहां तो कोई बीच नहीं पड़ता।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मोटरसाइकिल रोक गया था, रोक गया था, हम कम से कम 5 किलोमीटर दूर पैदल चले खुद, फिर टेम्पो आया, टेम्पो बैठे सीधे रामपुर पहुंचे।
0: अच्छा, तो इस बीच गाना क्यों नहीं बजा आपका?
1: पता नहीं क्यों गाना नहीं बजा था, फिर मन कला, फिर कोई ना कोई फिर वो आया, वही रिहान भाई तुम यहाँ कैसा मन गया, आए गए यार क्या कर यार, फिर 2-3 किलोमीटर फिर टेम्पो मिल ही गया, टेम्पो बैठ गया।
0: टेम्पो में बैठ गए
1: जी,
0: तो टेम्पो चला और टेम्पो में गाना भी चला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उनके उनके दो टीके लगे हुए थे, वही आराम से गाना बजा रहे थे, बढ़िया
0: गम भरे गाने। तो फिर कहीं जाना और कहीं था, और कहीं और तो नहीं पहुंच गए, टेम्पो में बैठ गए आप रिहान जी?
1: ना, नाम तो रामपुर के जाना था, रामपुर गया था।
0: तो 5 रुपए का ही टिकट लिया था ना आपने?
1: ना, 40 रुपए का ले रहे, 40 रुपए का टिकट ले रहे आप।
0: अरे सा, तो चलिए कोई नहीं, अपनी फरमाइश का गाना बताइए, कोई बात नहीं, 40 रुपए आज आपके वसूल कर दिए जाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए मुरादाबाद का कैसा मौसम है अपने यहाँ?
0: मुरादाबाद का मौसम है कहीं धूप कहीं छाओ, जहाँ पुल के पार बारिश है और पुल से पहले कोई बारिश नहीं है साहब।
1: बात सही है, और क्या।
0: तो रिहान जी, कोई शायरी तो आपने अब सुनाई दी है, तो गाने की फरमाइश और बता दीजिए, कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहेंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बेदर्दी का सारा मिला।
0: अच्छा, ये वाला गाना उस टेम्पो में नहीं बजा था उस समय?
1: गाना ये बजा नहीं था उनका।
0: तो कोई नहीं, ये फरमाइश यहाँ पूरी कर दी जाएगी आपको, और एक आध लाइन भी गा दीजिए अब आप।
1: गाना गा लें एक लाइन गा दीजिए,
0: एक लाइन ही गाना, वरना जो गाड़ी इस समय चला रहे हैं ना कहीं साइड में रोक के उतर ना जाए गाड़ी से।
1: अच्छा जिंदगी तुम हो, पास है जिंदगी जिसने दिया है धोखा, मगर हम फंस गए बीच में।
0: चलिए साहब, आपने बहुत ही बढ़िया गाना गाया है ये। इसके मुझे तो लगता है लिरिक्स भी आप ही ने लिखे होंगे, तो उससे
1: नहीं
0: ज़्यादा करते हैं एंजॉय ये बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। और बहुत बढ़िया रिहान जी, ऐसे ही
1: बताते
0: मुस्कुराते
1: रहिए,
0: रहें और ऐसे ही
1: बताते रहिए,
0: गुनगुनाते रहें। तो श्रोता हमारे साथ जुड़े थे रिहान जी। रिहान जी बता रहे थे एक बार वो जा रहे थे रामपुर, उन्हें कोई सवारी नहीं मिली, 5 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद टेम्पो मिला और उसमें भी उसने दर्द भरे गाने चलाए। तो क्यों साहब क्यों नहीं, अब आपकी पसंद का भी गाना प्ले कर देते हैं। और 9837896896 पर अगर आपकी भी कोई फरमाइश है, अगर हाँ, थोड़ा सा दिल दर्द कर रहा है, तो ज़रूर कॉल करें और बताएं, आपकी फरमाइश पूरी होगी साहब।

0: महबूब मेरे, मुकेश जी और लता मंगेशकर की आवाज में आप पत्थर के सनम मूवी से गाना सुन रहे हैं और इसकी फरमाइश की है दलजीत कोहली जी, रीना कोहली जी, सरगम कोहली जी, देव कोहली जी, माधव कोहली जी, कपूर कंपनी मुरादाबाद से और विराट कोहली टीम इंडिया से। तो हाँ जी हाँ, ये जो फरमाइश थी हमारे कोहली परिवार से थी और खूब सारी मस्त। और आपकी भी कोई फरमाइश है या कोई भी दिल की बात है तो ज़रूर जो है ना बता दीजिए, क्योंकि जितना आप देर करेंगे ना उतना टाइम निकलता जाएगा, क्योंकि इस समय हो रहे हैं 9:42। आज कई लोगों का जन्मदिवस है और आपके खास का भी है, तो उन सभी को हैप्पी बर्थडे टीम एफएम मुरादाबाद की तरफ से। तो चलिए करते हैं अपने नए लिसनर से बात, पूछते हैं साहब इतनी देर तक थे लाइन पे तो कैसा लग रहा था उन्हें। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या कर रहे हैं आप?
1: हेलो सर, सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: हमारे को भी, अच्छा आपने एकदम छोड़ दिया अपना मोहब्बत भरा नमस्कार, हमारी तरफ से भी सर मोहब्बत भरा नमस्कार।
1: जी सर नमस्कार, कैसे हो सर आप?
0: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, इस समय स्टूडियो में बैठा हूँ, आप बताइए कैसे हैं और इस समय क्या कर रहे हैं?
1: सर इस टाइम तो मैं खाना खाकर छत के ऊपर बैठा था, प्रोग्राम सुन रहा था और मौसम भी काफी सुहाना हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है सर, दिन में गर्मी है और रात में थोड़ा चेंज मौसम हो रहा है। सभी सुनने वाले से कहना चाहता हूँ इस मौसम में अपना ख्याल रखें सर।
0: मतलब खुद तो आप छत पे मौसम का आनंद ले रहे हैं और सबसे कह रहे हैं ख्याल रखें, क्या बात है क्या बात है, बहुत ही बढ़िया है सर जी।
1: मतलब औरों की फिक्र ज्यादा रहती है ना, अपने लिए दिया तो क्या जिया।
0: बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, आप औरों की फिक्र के चक्कर में छत पे चढ़ गए हैं।
1: जी जी बिल्कुल सर।
0: कोई शायरी सुनाएंगे औरों के लिए या अपने लिए कोई शायरी सुनाना चाहेंगे आप?
1: बिल्कुल सर, कहते हैं किसी ने कहा था किसी से न कहना, किसी ने कहा था किसी से न कहना, और लगी चोट दिल पे तो खामोश रहना।
0: क्या बात है क्या बात है, आज लगता है आपने ईंट पत्थर ज्यादा ढो लिए हैं तो चोटें लग रही है। मौसम बहुत ही बढ़िया है, और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी आप गाड़ी में सफर कर रहे हो या कहीं ऐसा सफर कर रहे हो और अचानक कोई गाना जो आपके मन में हो और वो सामने एकदम सुनने को मिल जाए, कभी हुआ आपके साथ ऐसा?
1: सर बहुत गाना सुनता हूँ मैं, जैसे मैं कहीं सफर करता हूँ और मेरे ही मन पसंद का गाना मिल जाता है, मैं रुक भी जाता हूँ सर।
0: सुनने के लिए या सफर में रुक जाते हैं?
1: मतलब गाना सुनने के लिए मैं ना ठहर जाता हूँ 10-5 मिनट, जब मेरे दिल का खास गाना होता है, मतलब बजता है रास्ते में, काफी ध्यान से सुनता हूँ सर।
0: तो ढाबे पे उस
1: जिस दुकान में, तो उसके पास में जरूर जाता हूँ।
0: हाँ तो उससे एक चाय एक्स्ट्रा पी लेते होंगे फिर वहाँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं रेडियो देखता हूँ ना कहीं पे रखा हुआ, तो मैं पास में जरूर जाता हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: हम तो सभी से कहेंगे जितने भी रास्ते में हम ढाबे और रेस्टोरेंट वाले, हम तो कहेंगे साहब एक एक रेडियो रखिए, क्योंकि रेडियो लिसनर्स ही ऐसे दीवाने हैं कि जहाँ देखा उन्होंने रेडियो वो जरूर आपके पास
1: मिलते हैं ना। ये
0: बिल्कुल सही कहा,
1: मतलब किसी किसी बेहतर भाग्य से मोबाइल फोन पे सुन रहे हैं ना।
0: हाँ मोबाइल पे ऐप डाउन
1: हो जाती है सर, कहीं पे रेडियो मिल जाता तो रखो।
0: बिल्कुल सही, आप भी एकदम 1980s, आपने भी अपना फोटो खिंचा के वायरल किया है क्या?
1: पूरी बात करता हूँ कि आप कौन कौन सा शो सुनते हो, क्या हमें जानते हो, क्या तो कहते हैं जानते हैं सर, ऐसे ही मतलब।
0: चलिए तो आप जो है अभी सभी लोग, आजकल ट्रेंड चल रहा था कि 1980s के अपने फोटो डाल के वायरल कर रहे थे, तो क्या आपने भी किया कोई ऐसा फोटो अपना?
1: अच्छे नहीं
0: हूँ अच्छा था, इतने अच्छे हम नहीं है 2026 में।
1: जी सर बिल्कुल
0: बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, क्या फरमाइश है आपकी?
1: सर मैं आज गाना सुनूंगा मूवी के नाम है औलाद के दुश्मन, और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तू मेरा दीवाना है मैं तेरी दीवानी हूँ,
0: धन्यवाद धन्यवाद। मतलब गाना भी मुझे औलाद के दुश्मन से मूवी से डेडिकेट किया है, मगर गाना अच्छा है, गाना अच्छा है, जरूर जरूर इसे धन्यवाद आपने इतना अच्छा डेडिकेट किया, मैं भी आपको एक गाना चलते हुए जरूर डेडिकेट करूंगा ईश्वर जी।
1: थैंक यू सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी नमस्कार। तो ईश्वर जी जुड़े थे आज, कह रहे हैं कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, छत पे मजे ले रहे हैं और हम सभी से कह रहे हैं कि भाई साहब आप सब लोग अपना ध्यान रखें, बहुत ही बढ़िया। इशरत जी ने एकदम बात पते की कही है कि ध्यान तो रखना है, क्योंकि मैं भी जब से स्टूडियो में आया हूँ ना तब से छींक ही रहा हूँ साहब, तो थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो चलिए जब तक ईश्वर जी की फरमाइश को एंजॉय करते हैं, आप भी कॉल मिलाएं 9837896896 पे और करें थोड़ी सी दिल की बातें, क्योंकि घड़ी जो है ना एकदम तेज रफ्तार से चल रही है और 10 कब बज जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा सर।

0: ये मौसम का जादू है मितवा। हाँ जी बिल्कुल, मौसम ही ऐसा हो रहा है इस समय कि कब क्या जादू हो जाए और क्या घटना घट जाए पता ही नहीं चलती है। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, जहाँ बातें हो रही हैं दिल से दिल की और आपके पसंदीदा गानों की। बात करते हैं अपने नए लिसनर से, पूछते हैं क्या कर रहे हैं वो। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: हेलो सर, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। और इस समय क्या कर रहे हैं आप, क्या नाम है आपका, सभी हमारे श्रोताओं को बताइए। अंसारी साहब, इस समय क्या कर रहे हैं आप?
1: छत पे लेटे
0: हैं। सब आज छत पर ही लेटे हैं, कोई छत पे बैठा नहीं है।
1: सर असल में क्या, हमारे यहाँ पे 12 बजे रात को लाइट आती है, तो

0: yapacağım. Hep de kulemi de zaten. Şimdi şimdi hava kalmanın dilini. Or efendim moral var çünkü ne lattı para beyti.
1: क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद आ जाती है लाइट।
0: उसके बाद लाइट आई, फिर रूम में चला गए, फिर मोबाइल भी रख दिया, फिर सोया।
1: और अगर बीच में लाइट चली जाए तो आपको पता चल जाता और फिर छत पे आ जाते हैं, ऐसा भी होता है?
0: फिर खुद में आए थे, मतलब रूम में से बाहर को आए थे।
1: चलिए चलिए, तो आज कोई शायरी सुनाना चाहेंगे सभी श्रोताओं को? आपको शायरी का शौक है नहीं, पहले ये बताइए।
0: शायरी का शौक सुनेंगे।
1: तो चलिए एक शायरी हम आपके लिए ही सुना देते हैं। मुस्कुराहट बांटने से कम नहीं होती, खुशियां देने से ख़त्म नहीं होती। आप किसी के चेहरे की वजह बन जाओ, इससे खूबसूरत ज़िंदगी में बात ही नहीं होती।
0: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया माशा, बहुत अच्छी शायरी करते हो सर आप, बहुत अच्छा लगता है आपका शो।
1: धन्यवाद साहब, धन्यवाद। कभी कभी गूगल देवता भी जिंदाबाद हो जाते हैं, मगर उसके लिए भी धन्यवाद। तो कौन सी फरमाइश, आप कौन सा गाना जो है सुनना चाहेंगे आप?
0: मूवी का नाम अंदाज अपना अपना, और गीत के बोले ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी।
1: क्या बात है, क्या बात है। हाँ मतलब रात भी है, दूरी भी है, ऊपर से बिजली भी नहीं है।
0: हाँ
1: तो साहब ये गाना तो आपके लिए बिल्कुल सही बैठता है।
0: वही तो, पर तो, सुनना हमारे पास में मेरा चल रहा है ना, गाड़ी चोट का मेरा चल रहा है तो वहाँ पर लाइट बहुत आती है, यहाँ पर कम आ रही है।
1: हाँ तो कोई बात नहीं, आप भी साहब मेले में जाइए, घूम के आइए, दो तीन झूले झूल के आइए। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तो किसे डेडिकेट करना चाहेंगे गाना? किसको? ओके ओके, चलिए उनको डेडिकेट करते हैं और ये गाना भी सुनते हैं। बहुत ही अच्छा लगा सलीम साहब आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। तो श्रोता हमारे साथ जुड़े थे सलीम साहब। अनारकली का तो पता नहीं, मगर आपने बिल्कुल एकदम बढ़िया बात कही है कि जब तक लाइट नहीं है साहब, हम तो छत पे ठहलेंगे। अगर आप भी छत पे ठहलने जा रहे हैं तो बहुत संभल के जाइएगा, क्योंकि अगर बादल बरस गए ना आपके पास तो वापस भाग के आना पड़ेगा। और चलने से पहले आज हम खूब जो हमारे पास मैसेज आए हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स के, उनके मैसेजेस पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो हमारे पास जो मैसेज है अभी सबसे पहले वो है, सबको हैप्पी बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक। और दूसरी, मैम का बर्थडे था और कैसे हैं अखिल सर, बहुत अच्छा करें ज़्यादा, आपका थैंक यू। अरे सर, मेरी प्रदीप जी का, मोहम्मद रेहान भाई का। तो साहब हमें तो थोड़ा समझ में आ गया आपका मैसेज, और आपने जो भी लिखा हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरा मैसेज है हमारे पास, हेलो अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है जी, दिल से दिल तक, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आपकी आवाज़ और बोलने का अंदाज़ बहुत प्यारा है। ये लाइन हमें आपकी पूरी याद हो गई है, धन्यवाद धन्यवाद। ललिता कश्यप जी, नवीन नगर MDA मुरादाबाद। MDA लिखा नहीं, मगर हमने कह दिया हाँ जी आप MDA में ही हैं। सर सॉन्ग बिंदास सुना रहे हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड। हाँ जी ओल्ड इज़ गोल्ड तो है ही, ओल्ड का तो और गोल्ड का दोनों का इस समय जमाना चल रहा है साहब। तो गणपति बप्पा मोरिया, खुशियों की हो बौछार, अखिल सर के जीवन में रहे खुशियों की बहार, बप्पा हर कदम पर आपका साथ निभाए, सफलता और सम्मान से आपको आपका जीवन सजाएं। जी ज़रूर ज़रूर, जय हो गणपति बप्पा मोरिया। और बप्पा आए हैं लेकर खुशियों की सौगात, अखिल सर के साथ रहें गणपति का हाथ, दूर हो सारी चिंताएं, मिट जाए हर परेशानी, बप्पा भर दे जीवन में खुशियों की कहानी, गणपति पप्पा मोरिया। हाँ जी गणपति पप्पा मोरिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी शायरी लिखी है और सच में इतना चला, जहाँ जाएं इस समय पंडाल लगे हुए हैं और शाम जो है ना बिल्कुल गणपति पप्पा मोरिया की लहरों में ऐसी घूम रही है। नवीन नगर में भी मानसोवर स्कूल के पास एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन हो रहा है, तो आप ललिता जी जाइएगा और ज़रूर बिल्कुल गणपति मन मग हो जाइएगा। तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, उससे पहले करते हैं सलीम साहब, हाँ हाँ सलीम साहब की फरमाइश हो प्ले। और आपकी भी कोई कॉल हो तो अब आज नहीं कल करिएगा, क्योंकि आज का समय हो गया पूरा।

0: हमें एक घंटा दोस्तों पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। खैर मुझे तो पता चलता मगर आप लोगों को पता नहीं चला होगा। ड्राइविंग की मस्ती हुई, खिलाड़ियों की बातें हुई, स्पोर्ट्स की खूब सारी चीज़ें हमने आपस में बताई एक दूसरे को, कहाँ हमने कौन सा कब जीता है नहीं। और हाँ, आप जाने से पहले क्लोजिंग शायरी आप लोगों के लिए। सफ़र चलता रहे, रास्ते में मिलते रहें, चेहरे पर यूं ही मुस्कान खिलती रहे, कल फिर मिलेंगे एक नए अंदाज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और दिल को हमेशा खुश रखिए। मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आपने आज की होगी पूरी मस्ती और सुन रहे थे दिल से दिल तक अखिल संग। तो गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट ज़रूर पहने साहब, फ़ोन साइड में रखें और म्यूज़िक का वॉल्यूम इतना रखें कि हॉर्न भी सुनाई दे, अपना नहीं तो एटलीस्ट पीछे वाले का तो ज़रूर सुनाई दे। और इशरत जी, आपके लिए जो गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं वो आज नहीं अब कल करेंगे, क्योंकि आज की जो फरमाइशें हैं ना बहुत सारी हो गई हैं। तो चलिए इस गाने से लेते हैं अलविदा। और
1: ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी,
0: ये मौसम और ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी। हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप भी अपनी दूरियों को मिटाएं और मिलके खुशी खुशी
1: दीवाना लिए चाय चिकोले
0: इस गाने पे एंजॉय करें। बिल्कुल सही साहब, सलमान साहब और आमिर साहब तो कर चुके हैं अपने अपना अंदाज अपना अपना, तो अपना भी अंदाज दिखाइए और मस्ती भरे रहिए, खूब खुश रहे। बाय बाय।

हमारे श्रोताओं का एक मैसेज हमारे पास रह गया था और उनका भी मैसेज जरूर जाते जाते पढ़ना है। अखिल सर, क्या हाल है आपका? आपका शो सुन रहा हूँ और हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बातें करने का अंदाज और शो को पेश करने का तरीका वाकई बहुत पसंद आता है। तो आज मेरा दिल भी किया कि आपको एक मैसेज करूँ और अपनी पसंद का एक प्यारा सा गाना

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है।

0: किया ला ला ला ला ला हाथ तेरा मांगा साथ तेरा मांगा सबको रिजेक्ट किया
1: थैंक यू हनी थैंक यू
0: हमको लेली नहीं मांगता हमको मैरी नहीं मांगता हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता
1: तो कौन मांगता
0: ए जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं जूली

0: हमको मेरे नहीं मांगता, हमको लेले नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉली का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: Sunny day.
2: It is a sunny day.
1: Oh, sunny shades day, yaar.
2: Yaar, sorry.
1: और फिर मिला है तुलसी?
2: कितने है ब्रो, मेरी तुलसी कुमारी को अता पता है ही नहीं यार।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
5: अमीरों की शादी है तो फंक्शनों की कमी नहीं होगी। वेलकम टू देसी सन डाउनर विथ रंग और पा

0: प्राथमिक विद्यालयों का संवरता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
1: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
0: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
1: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े। समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
0: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।